किरण नमस्ते सत्रीकाल अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन। डेफिनेटली इट इज खूबसूरत आउटसाइड, फुल डे मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून और इवनिंग में भी काफी अच्छा रहने वाला है। 15 डिग्रीज आज का वैसे मैक्सिमम टेम्परेचर बता रहा था, लेकिन इट मोर फील्स लाइक अराउंड 18। यस 5:16 पे आज का होगा सनसेट, यानी कि अब धीरे धीरे दिन जो है फिर से बैक टू नॉर्मल, आई मीन धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं, उनकी जो लेंथ है वो बढ़ने वाली हर दिन। मैं डेफिनेटली आई एम एंजॉइंग यू नो रीडिंग आउट द कि हर दिन एक एक मिनट बढ़ता जा रहा है, तो मुझे अलग ही मजा आ रहा है। बट यस, आप बने रहिए अंटिल 3, मैं यहाँ पे हूँ 12 से लेके। ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें करेंगे यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे ऑफर्स मैं देने वाला हूँ जहाँ पे आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम या फिर ड्रॉ में शामिल होने के मौके, बिकॉज काफी लेजेंडरी सिंगर्स आ रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू न्यूजीलैंड आप सभी के बीच परफॉर्म करने। सो यस, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, और आप बस सुनते रहिए बिकॉज यहाँ पे मैं ऑफर देने वाला हूँ बहुत सारे ऐसे मौके जहाँ पे आप ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत सारे डबल पासेस। सो कहीं मत जाइए, शुरुआत करेंगे होम सिक रेमेडीज से। डू लेट मी नो अगर ऐसा कुछ होम सिक रेमेडीज के बारे में कुछ हो तो। 5599 इज द नंबर।

Welcome back. Homesick remedies के लिए आज actually वैसे मैसेज किसने भेजे नहीं है, maybe हो सकता है nothing more special, but एक बात मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ. कभी कभी होमसिक होना सिर्फ अपने देश को याद करना नहीं होता, बल्कि अपनी जिंदगी के वो छोटे छोटे पल याद आते हैं जो कभी बहुत आम लगते थे. माँ के हाथ का खाना, सुबह की चाय की खुशबू, गली में बच्चों की आवाज, मंदिर की घंटी हो या फिर मस्जिद का अजान, शाम को बिना प्लानिंग के दोस्तों से मिलना, ये सब यादें दिल को एक अलग ही सुकून देती थी. हम सब जो ऑकलैंड में न्यूजीलैंड में रहते हैं, चाहे हम इंडिया से हो, फिजी से, पाकिस्तान या फिर साउथ एशिया के किसी और कोने से, एक बात जरूर कॉमन है, हम सब अपने साथ अपनी मिट्टी की खुशबू लेकर आए हैं. और शायद होम सिकनेस का सबसे खूबसूरत इलाज ये नहीं कि हम उस एहसास से भागें, बल्कि उसे अपनाएं. कभी अपनी फेवरेट फैमिली रेसिपी बना लीजिए, किसी अपने को फोन पर बुला लीजिए, या बस अपनी पुरानी फेवरेट प्लेलिस्ट चला दीजिए. धीरे धीरे समझ आता है कि घर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानी है, उन यादों और उन रिश्तों का नाम है जो हम अपने दिल में लेकर चलते हैं. और आज हम भी हमें यानी कि बताएंगे कौन सी खुशबू, एक गाना या एक याद है जो आपको पल भर में अपने घर ले जाती है. आप मुझे 5599 भी बता सकते हैं. एनी पर्टिकुलर सॉन्ग विच यू फील लाइक दिस इज द सॉन्ग जो काफ़ी नॉस्टैल्जिक है, काफ़ी रिलेट करता है मेरे पुराने ख्याल को ताज़ा करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा खाना जो आप खाते हैं उससे ताज़ा हो जाती यादें, या फिर कुछ और. फील फ्री एंड डू लेट मी नो ऑन 5599. आई वुड लव टू हियर सम ब्यूटीफुल मैसेजेस, बात करेंगे उसके बारे में. बट यस, ऑफिस शाउट आउट के लिए भी आप मुझे मैसेज भेजिए. एग्जैक्टली आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, किन किन लोगों के साथ खा रहे हैं, और बस 5599 से नंबर. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का. 80s के रेट्रो गाने.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: For a limited time, ventilate four or more rooms in your home and you'll get one vent for free. That's right, one vent for free when you purchase a DVS home ventilation system. T's and C's apply.
2: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ,
4: अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
7: Are you ready for some extra money? If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. Look out for information from Entrust in your letterbox or email inbox. Check your payment details are correct and let us know of any changes as soon as possible. If we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in late September. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
8: As a baby, I was burnt in hot water.
9: At five, I got burnt when I got too close to a gas heater.
10: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
11: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
12: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले माइटिटन मेगा बॉटनी में फ्री किड्स एक्टिविटीज क्लासिक सॉसेज सिजल लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिवअवेज प्लस फोर टाइम्स एयर पॉइंट्स टू वाइड टीज एंड सीज एंड एक्सक्लूशंस अप्लाई दिस सैटरडे एट माइटिटन मेगा बॉटनी
13: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
14: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
13: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
15: Lunchbox with Ketan.
16: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse bade ladka nahi milega tujhe.
17: Office shout out.
18: Office shout out ke segment mein aapka बिल्कुल स्वागत है बिल्कुल स्वागत है. यहाँ पे हम मैसेजेस भी पढ़ेंगे जो मुझे भेजे हैं हमारे लिसनर्स ने प्यारे प्यारे लिसनर्स ने. सो यस सबसे पहले तो मैसेज आया मुझे. Hi Ketan, this is Jia. I feel nostalgic about watching cartoons like Shin-chan after school on rainy days in India. A precious song from that time is Aa Jao Meri Tamanna. Oh ho ho ho ho. Yeah, this is actually one of my favorite song as well. Aa Jao. Yaar mere ko na gaane ka bol raha tha main chup nahi hota hu main gaana ga hi lunga. बट थैंक यू सो मच यार ये काफ़ी नॉस्टैल्जिक पता नहीं आपकी आपका जो सोच रहा मैं बस यही कि सिंचैन नहीं देखता था मैं मुझे दूसरा कार्टून पसंद था बट द मेन पॉइंट इज़ कि कार्टून्स देखना मुझे भी इनफैक्ट मुझे आज भी पसंद है चाहे लोग कुछ भी बोल दें चाहे कार्टून हो या फिर गेम्स खेलने हो ये मेरी आदत आज भी है एंड आई फील सो रिलैक्स व्हेन आई वॉच समथिंग लाइक दिस एंड मैं बस वेट कर रहा हूँ कब यहाँ जो मेरा लड़का है वो थोड़ा सा बड़ा हो एंड स्टार्ट आस्किंग फॉर डाटा डाटा प्ले सम दैट सॉन्ग तो आई वुड लाइक मतलब मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब वो थोड़ा समझदार एज इन वो समझने लगे चीज़ें और मैं उसको सारी जो मेरी बचपन की कहानियाँ थी जैसे हैरी पॉटर्स हो गए या फिर यू नो टॉम एंड जेरी आई नो हो सकता है उसको शायद ये इंटरेस्टिंग ना लगे आज के टाइम पे क्योंकि इतना अलग वैरायटी आ चुकी है आजकल बट डेफिनेटली मैं ट्राई तो करूँगा बट यहाँ पर मुझे बताइए यहाँ पर मैंने देखा है काफ़ी लोग ना अपने बच्चों को हैरी पॉटर नहीं दिखाते हैं इज देयर एनी पर्टिकुलर रीज़न मुझे तो बहुत पसंद है यार लाइक आई लव वॉचिंग मतलब कोई कोई पेरेंट्स हैं यहाँ पे जो ऑब्वियसली नहीं दिखाता है, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम देम एज वेल. बट थैंक यू सो मच जिया फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग मैसेज एंड रिमाइंडिंग मी माई टाइम एज वेल. बट यस, ऑफिस शाउट आउट के लिए भी ये रहे मैसेजेस. इन्होंने लिखा है, करण का मैसेज आया, कहते हैं स्किप्ड टेक अवे टुडे, डैड्स होममेड चिकन करी विंस एवरी टाइम. पापाकुरा से इन्होंने मैसेज किया है. थैंक यू सो मच करण, दैट्स सो अमेजिंग यार. हाँ यार, मतलब आई थिंक होम से ग्रेविटी में जितने मुझे मैसेज मिले, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग कि डैड ने कुछ बनाया. यूजली मॉम या फिर खुद या फिर यू नो बाहर से मंगवाते, ये चीज सुनी मैंने. बट ग्लैड टू सी यार डैड इज ऑल्सो इन द लूप. मीरा कहती हैं, वर्क फ्रॉम होम टुडे सो लंच वाज नॉट मैगी एंड चाय, सिंपल एंड परफेक्ट. ओह सॉरी, लंच वाज हॉट मैगी, नॉट यस माय बैड. सो लंच वाज हॉट मैगी एंड चाय, सिंपल एंड परफेक्ट. यार दैट इज एक्चुअली गुड, वेरी गुड. बट काफी लोगों ने मुझे बोला है कि चाय एंड मैगी इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, इज दैट ट्रू? मतलब कोई है यहाँ पे जो मुझे बता सकता है, फील फ्री यार बताइए मुझे 5599 पे टेक्स्ट करके, दैट मैगी और चाय का जो कॉम्बिनेशन होपफुली ये हेल्दी हो. 5599 इज द नंबर.
13: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। यहाँ पे आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की भी बात कर लेते हैं। ग्लैड टू सी सो मेनी मैसेजेस वी आर रिसीविंग राइट नाउ रिगार्डिंग द टॉपिक्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर। न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में आज 30 जून 1939, आज ये 30वां महीना है, राइट? 30वां इन द सेंस 30th है, नॉट 31st। हाँ, 30th है, यानी कि आज आखिरी दिन है इस महीने का। वाओ, वी आर ऑफिशियली एंटरिंग इनटू द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। भाई ये साल भी क्या तेजी से गया है। डोंट यू थिंक यार, आजकल का टाइम ना इतना तेजी से भाग रहा है, पता नहीं चल रहा है। लाइक यू नो, लिटरली अभी मेरे को ये लग रहा था कि अभी तो मैंने अपने इन लॉज के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, अभी कुछ ही महीने पहले यू नो आई हैड यू नो काफ़ी कुछ बातें हुई थी, एंड देन नाउ इट्स ऑलमोस्ट ठंड भी शुरू हुई थी, मिडवे है जुलाई में, थोड़ी ठंड ज़्यादा लगेगी, और करते करते 6 महीने बीत भी चुके हैं साल के, अभी 6 महीने ही और बचे और ये साल भी फिर चला जाएगा। बट सो फार आपका जो ईयर है वो कैसा जा रहा है? पानी पिया था तो एकदम वो हिचके आ गई थी, बट ये सो फार आपका जो फर्स्ट हाफ था वो कैसा जा रहा है, लाइक हाउ, नॉट जा रहा है बट कैसा रहा, आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू बाय कॉल एज वेल। आप मुझे कॉल भी करिए 0800 4866 पे। वॉज इट प्रोडक्टिव और नॉट प्रोडक्टिव, यू कैन डेफिनेटली शेयर विद अस ऑन बाय कॉल। आप कॉल करिए मुझे और बताइए। बट यस, हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में आज के दिन 1939 की ये बात है, जब न्यूजीलैंड की एक आइकॉनिक मैगजीन जो है उसके बारे में ही है, न्यूजीलैंड लिसनर का पहला एडिशन पब्लिश हुआ था। शुरुआत में इसका पर्पस जो था सिर्फ रेडियो प्रोग्राम स्केड्यूल बताना, लेकिन धीरे धीरे ये देश की सबसे पॉपुलर वीकली मैगजीन भी बन गई और इसमें करंट अफेयर्स भी शुरू आए थे, एंड एंटरटेनमेंट से लेकर लिटरेचर, क्रॉसवर्ड्स और फेमस कीवी राइटर्स की स्टोरीज भी पब्लिश होती थी। उसके बाद 1982 में इसकी सर्कुलेशन अपने पीक पर पहुंच गई थी और आज भी

0: Welcome back. You are listening. आप सुन रहे हैं मुझे हम रेडियो से यानी कि 104.2 FM के जरिए जहां पे बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने चलते हैं. अभी आपने सुना है हम तो हैं कैपेचिनो यूपी बिहार. बहुत ही बढ़िया. इसमें काफी बड़े बड़े सिंगर्स इसमें पार्टिसिपेट किया था. बट यस, अभी थोड़ी देर मैंने पहले ना सवाल किया था आपसे कि चाय और मैगी का जो कॉम्बिनेशन, इज दैट गुड और नॉट. तो रिस्पॉन्स आए हैं, यहाँ पे भी मैसेजेस पढ़ लेता हूँ उनके. रवि भाई कहते हैं एब्सोल्युटली हॉट मसाला मैगी एंड अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग चाय ऑन अ रेनी ऑकलैंड इवनिंग, दैट्स प्योर कम्फर्ट फूड फॉर मी. दैट इज सो ट्रू. बट माई मोर क्वेश्चन वॉज लाइक इज इट गुड फॉर हेल्थ और नॉट. प्रिया कहती है आई नो पीपल थिंक इट्स वियर्ड बट आई हैव बीन हैविंग मैगी विद चाय सिंस स्कूल डेज. इट्स जस्ट ब्रिंग बैक चाइल्डहुड मेमोरीज एवरी नाउ एंड देन. थैंक यू प्रिया फॉर बताने के लिए. उसके बाद देव ने कहा सॉरी बट दैट्स अ नो फ्रॉम मी. मैगी विद अ कोल्ड कोक इज फाइन बट चाय विद नूडल जस्ट डजेंट वर्क. इन्होंने थोड़ा हटके जवाब दिया. बट ये तो और एक स्टेप आगे, कोल्ड कोक को. अंजलि कहती है 100% यस, स्पेशली व्हेन इट्स रेनिंग आउटसाइड, बेस्ट कॉम्बो एवर. करण कहते हैं मैगी एंड चाय गॉट मी थ्रू माय यूनिवर्सिटी डेज, चीप फिलिंग एंड कंफर्टिंग. पर ये तो मेरा भी टाइम था बट मैं इतनी ज़्यादा नहीं खाता था. लाइक यू नो आई यूज्ड टू ईट मे बी लाइक वंस अ वीक आई गेस. दैट्स एंड दैट इज ऑल्सो व्हेन आई रियली हैव नो ऑप्शन. मैं नूडल्स कम ही खाता हूँ, आजकल खा लेता हूँ. बट भरपूर यू नो खुशबू जो बनाती है तो वो बहुत ज़्यादा वेजीज डालती है, विच इज़ गुड ऑफकोर्स. तो यस, आप भी मुझे फीडबैक दे सकते हैं इफ एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन हियर.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे
2: हम.
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. Sif Rovapan.
1: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drugdriving.
2: Woh, indelible homes wali kahani sunao na.
3: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
4: And award goes to Indelible Homes.
3: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
5: Kahani of Indelible Homes.
6: Oh no, we'll be late.
7: We'll be alright. I'll call the AA.
8: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
9: Film, bilkul fake, or danger, ekdam real. India's first 2,000 crore fake film, Welcome to the Jungle, starring Akshay Kumar, Jackie Shroff, Arshad Wasi, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Disha Patani, Jacqueline Fernandez and many more.
10: Ek zabardast kahani hai.
11: Aur title kya hai film ka?
10: Welcome to the Jungle.
9: Welcome to the Jungle, now showing in cinemas. Distribution partner, Forum Films, rating TBC.
12: There are easy ways to save up to $500 on power bills this winter, like only heating the rooms you're actually using, by shutting doors and blocking sneaky gaps, or turning off appliances that aren't in use, especially the ones you might have forgotten were even on, or by checking if an off-peak plan is right for you, to make the most of when power's cheaper. For more winter saving advice, visit EECA, that's eeca.govt.nz.
13: Dad, I feel sick.
14: Yep, we've all been there, and so has Sea Legs. For over 55 years, Sea Legs has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or walker, pack your Sea Legs and enjoy the journey. Sea Legs is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness, avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
15: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Panmure in just 20 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
16: Lunchbox with Keithan.
17: Aisa bajaunga na ki tere kaanon mein roz meri aawaz goonjegi.
18: Hum. Chutney Shots.
19: चटनी शॉट के सेगमेंट में आपका स्वागत है। फटाफट से पढ़ लेते हैं अभी की खबर। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर से बड़ी खबर आई है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 9 घंटे वेट करने के बाद एक पेशेंट्स की डेथ की रिपोर्ट सामने आई है। इस पर हेल्थ मिनिस्टर ने रिस्पांस देते हुए कहा है कि पूरे इंसिडेंट की रिव्यू होगी और अगर कहीं सिस्टम फेल हुआ तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ड्रग ओवरडोज के को लेकर भी डिबेट तेज हो गई है। एक्सपर्ट्स और कैंपेनर डिमांड कर रहे हैं कि ओवरडोज इमरजेंसी में हेल्प मांगने वाले लोगों के लिए स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन होने चाहिए ताकि लोग बिना डर के इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर सकें। पॉलिटिक्स अपडेट। लेबर लीडर क्रिस हिपकिंस ने कहा है कि अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है तो वो MSD को करंट स्टाफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को स्क्रैप कर देंगे। उनका कहना है कि ये सिस्टम मॉरली बैंकरप्ट है। साइंस की दुनिया से एक एक्साइटिंग डिस्कवरी। एंटार्क्टिका में एक रेयर डायनासोर फॉसिल म्यूजियम के ड्रॉअर में ही छुपा हुआ है और रिसर्चर्स का मानना है कि ये प्री हिस्टोरिक लाइफ को समझने में एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी साबित हो सकती है। इंटरनेशनल अपडेट में अमेरिका और ईरान ने फिलहाल स्ट्राइक्स को पॉज कर दिया है लेकिन दोनों कंट्रीज अभी भी नेक्स्ट स्टेप को लेकर एक दूसरे से एग्री नहीं कर पाए हैं। स्पोर्ट्स से गुड न्यूज। इंजरीज के बावजूद ब्लैक कैप्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है। वहीं कीवी नास्कर स्टार शेन वेन गिस्बर्गन ने कहा है कि अब उनका फोकस ओवल ट्रैक्स पर अपनी परफॉर्मेंस और को इम्प्रूव करना होगा। और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से ब्रिटिश टीवी की लेजेंडरी एक्ट्रेस पेनेलोप किथ को 86 ईयर की उम्र में डेथ हो गई है। उन्हें आइकॉनिक सिटकॉम द गुड लाइफ के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

0: beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback.
2: Well, ये रहा मेरा सवाल अभी का. I'm very very excited. ये काफी obviously relate करेगा आपकी family से. Definitely करेगा. मेरा सवाल ही ऐसा ही है. And I would love to hear so many messages. जी हाँ, जितने messages आप भेज सकते हैं भेजिए. मुझे बताइए कि आपकी mom की ऐसी कौन सी dish है जो कोई भी restaurant beat नहीं कर सकता. जी हाँ, doesn't matter if it is in Auckland or if it is in any part of the world. कहीं पे भी हो मुझे मैसेज भेजिए, बताइए कि आपकी मॉम ऐसा क्या खाना बनाती है. आई एम प्रीटी श्योर वो सभी खाना अच्छा बनाती है, बट कोई ऐसी पर्टिकुलर डिश, वन डिश जो आपको सचमुच इतनी ज़्यादा पसंद है एंड यू नो कि कोई भी एंटायर वर्ल्ड में कोई भी रेस्टोरेंट उसको बीट नहीं कर सकता. 5599 से नंबर जहाँ पे आप मुझे मैसेजेस भेजिए. और एक और मैसेज आया है जो मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि चाय एंड मैगी इज इट गुड कॉम्बिनेशन फॉर हेल्थ और नॉट. तो उनका मैसेज आया है पोहे एंड चाय इज बेस्ट, नॉट द मैगी, बट यस उन्होंने पोहे और चाय के लिए बोला है. गौरव का ये मैसेज है, थैंक यू सो मच गौरव. बट यस मेरे लिसनर, जल्दी से फोन उठाइए, मुझे भेजिए कि व्हाट वन डिश योर मॉम कुक्स इज अमेजिंग एंड ऑफकोर्स नो रेस्टोरेंट कैन बीट दैट. 5599 इज द नंबर.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, 15 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 5 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। आज वैसे ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत रहेगा, देन 516 पे होगा आज का सनसेट।

0: लंच के मंच पे।
1: क्या हाल, नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। थोड़ी देर पहले सवाल किया था मैंने आपसे कि व्हाट इज दैट वन डिश जो आपकी मॉम बनाती है एंड डेफिनेटली यू कांट, लाइक कोई भी रेस्टोरेंट उसे बीट नहीं कर सकता। आप मुझे मैसेजेस भेजे हैं, कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेजेस आए हैं, आप अभी भी मुझे भेज सकते हैं 5599 पे अपने नाम के साथ कि आपकी मॉम ऐसा क्या बनाती है, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर एक डिश है जो सचमुच बेस्ट है और वो दुनिया के किसी भी कोने में घूम के आ जाओ आप कोई नहीं बना सकता। सो यस, अभी भी आपके पास टाइम है, भेज सकते हैं मुझे। बट यस, इस साल में काफ़ी कुछ बताना है आपको। हमारे बीच एक लेजेंडरी सिंगर आ रहे हैं, पी पॉप सिंगर, जी हाँ, करण ओजला। उनके लिए भी एक शो जो हो रहा है यहाँ पे, उसके लिए हमने हमारे लिसनर्स के लिए डबल पास जीतने का मौका यहाँ पे रखा है। तो आप बस कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आज के इस लंच बॉक्स शो में।
0: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। और यस, अभी आप जल्दी से मुझे लंच टाइम रेंट लाइन के लिए मैसेजेस भेजिए यहाँ पे 5599 पे, और बताइए मुझे कि व्हाट रेंट हैज बीन आपके इर्द गिर्द हुआ है आज के दिन, या फिर इन मे बी रिसेंट डेज आप मुझे बता सकते हैं। मेरे साथ तो कल फिर हुआ। मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा रेंट है ना ये ट्रैफिक और ये रोड पर ही होता है। मैं खुशबू को लेने उसके ऑफिस गया लेने, एंड देर वॉज ऑब्वियसली डायरेक्शन, मुझे पहले लगा शायद अंदर जाने का नहीं, ये सिर्फ एग्जिट है, बट देन आई हैव सीन वो दोनों एक ही जगह, इन भी आउट भी। सो आई वॉज अबाउट टू गेट इन, मैं बीच में रुक गया बिकॉज मेरे को लगा कि सामने वाली गाड़ी आ रही है, तो मैं रुक गया। एंड दैट लेडी लिटरली लुक्ड एट मी एंड लाइक शाउटेड, आई डोंट नो लुक, मतलब एक्सप्रेशन से तो वही लग रहा था कार में बैठी बैठी वो शाउट कर रही थी। एंड देन कि इधर क्यों आ रहे, यू क्यों, मैं कहा लुक एट द, मतलब मैंने अपने जहन में बोला, इशारा किया कि भाई ये मार्किंग देखो भाई। फिर वो कुछ नहीं बोली, मैंने उसको इशारा किया यू कम आउट, और वो ऐसे आए और मैं वो घूरते हुए बाहर गए जैसे मैंने कुछ वहाँ पे कारनामा कर दिया। फिर मैं बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार कहीं वो मेरे को उबर ड्राइवर तो नहीं समझ रही थी। आई डोंट नो, मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं उबर ड्राइवर की, बट मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि ये रिस्पेक्ट प्रॉपर देते नहीं है जो इस तरह के काम करते हैं। मतलब कोई ऐसे हार्म नहीं यार, इवन मैंने भी किया था, मैंने एक दो दिन काम किया था, बट ऑब्वियसली मैच नहीं हुआ तो उस वजह से मैं कर नहीं पाया, बैलेंस नहीं हो पा रही थी पर्सनल लाइफ और ये सब प्रोफेशनल लाइफ, उस वजह से मैंने किया नहीं है। बट दैट्स हाउ शी ट्रीटेड, आई फेल्ट रियली बैड कि यार ये क्या था, लाइक लिटरली अगर मैं हूँ तो भी यू कैन नॉट डू दैट वे, यू कांट जस्ट डू, आई डोंट नो, हो सकता है उसका कुछ और मीनिंग हो, ऐसा कुछ हो, बट इट वॉज एक्चुअली लुकिंग लाइक वाई यू कमिंग ऑन माई वे, समथिंग लाइक दैट। वो काफ़ी रूड साउंड किया मुझे। बट यस, ये थी मेरी कहानी, आप मुझे बताइए 5599 पे आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है इर्द गिर्द, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0800-004-866 पे, या फिर आप मुझे मैसेज भेजिए 5599 पे और बताइए कि कौन सी ऐसी बात हुई है जो सच में आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है अभी रिसेंटली, लेकिन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग। 5599 इज द नंबर, या फिर 0800-004-866 पे आप मुझे कॉल करिए। मीनवाइल, व्हाट इज दैट वन डिश माय मॉम कुक्स विच I can bet cannot, no one, like none of the restaurant can cook in the entire world. और उसके messages आए हैं यहाँ पे। सबसे पहले आया है दिव्या का, वो कहती है my mom makes delicious soft and crispy matri. दिव्या ने ये message किया है my mom makes the best crab curry yum yum. Shivon, इन्होंने message किया है। And एक और आया है my mom makes best भंडारे माई मम मेक्स बेस्ट भंडारे वाले आलू पूरी, ओ यम यम यम, आई लव इट, आई पर्सनली एन्जॉय अ लॉट, मुझे बहुत पसंद है। गौरव ने मैसेज किया, बट थैंक यू सो मच गौरव, दिव्या एंड शिवान फॉर योर लवली रिस्पॉन्स ओवर हियर। आप बने रहिए, भेजिए मुझे लंच बॉक्स, सॉरी लंच टाइम रेंड लाइन के मैसेज।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहां से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
5: कौन है?
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा, Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
8: अच्छा,
7: बताओ तुम्हारा फोकस, साडा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह,
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.in।
10: There are easy ways to save up to $500 on power bills this winter, like only heating the rooms you're actually using, by shutting doors and blocking sneaky gaps, or turning off appliances that aren't in use, especially the ones you might have forgotten were even on, or by checking if an off-peak plan is right for you, to make the most of when power's cheaper. For more winter saving advice, visit EECA, that's EECA.govt.nz.
3: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
11: Get fresh deals from the fresh food people at New World North Island. Get skinless chicken thigh cutlets $11.99 per kilo or new season avocado $1.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
12: It's the truth. You know it. Your girl group do everything together. There's even a name for it. Dogetherness. Oh, cute. So why don't you do something new? Something that really matters. Something like giving blood or plasma together. This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and one donation could save lots of lives. Get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Oh, and coffee is included. Give blood, give plasma, save lives.
13: As a baby, I was burnt in hot water.
14: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
15: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
16: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
1: Lunchbox with Kaitan.
17: Mujhe pasand hai ladka.
1: Hum. Lunchtime Rant Line.
0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग लंच बॉक्स. चलिए बात करते हैं लंच टाइम रेंट लाइन, बट उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू, आप जल्दी से रोएप डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज उसके थ्रू यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर अ लॉट मेनी थिंग्स, नॉट जस्ट लिसनिंग टू अस, बट वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है फ्री, एंड पॉडकास्ट भी सुनने को मिल जाएगा वहाँ पे फ्री, और बहुत सारे यू नो फीजी कीर्तन या फिर फीजी संग्रह आपको अगर सुनना है तो वो भी, भजन भी आप सुन सकते हैं फॉर फ्री. क्या बात है यार, बहुत सारा फ्री फ्री, और हम वहाँ पे यू नो कॉम्पिटिशन्स के भी अपडेट देते हैं फ्री, और आप हमें भी सुन सकते हैं फॉर फ्री. कितना कुछ फ्री है. वेल ऑब्वियसली फ्री बोले तो आपका डेटा तो यूज़ होगा ही, हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बट डेटा आपका यूज़ होगा. लेकिन उसकी भी मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूँ, दैट एक आप स्टोरी डालते हैं तो 20 सेकंड का, फॉर एग्जांपल लेट्स से 20 सेकंड का आपने एक स्टोरी डाली है, तो उसका जो डेटा यूज़ होगा वो इज़ इक्विवेलेंट टू लिसनिंग टू अस थ्रू रोआ ऐप. आप एक घंटे तक सुन सकते हैं, या यू कैन डेफिनेटली लिसन टू अस फॉर एन आवर बाय इन कंपेयर ऑफ द डेटा व्हाट योर 20 सेकंड्स ऑफ रील गोना यूज़. जी हाँ, तो उसके केस में ये चीज़ें तो या इट इज़ ऐसा नहीं है, डेटा तो डेफिनेटली आपका यूज़ हो रहा है, हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, बट डेटा जो यूज़ हो रहा है वो भी ना के बराबर ही है. लिटिल उससे ज़्यादा आप अनवांटेड रील या जो आपके एल्गोरिथम में एक्सीडेंटली आ चुकी है वो रील आप देखने में ज़्यादा डेटा आप यूज़ करवा देते होंगे. बट एनीवेज, ये रहे मैसेज लंच टाइम रेंट लाइन के लिए. राइट, केतन भाई, नेहा फ्रॉम फ्लैट बुश, किधर गया, राइट गिरा. व्हाई डू पीपल लीव डर्टी डिशेस इन द ऑफिस सिंक ऑल डे. यार ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा इसका जवाब. आई डोंट नो इफ यहाँ पे कोई है जो देना चाहे, प्लीज फील फ्री टू डू इट. मुझे तो पता नहीं है क्यों ऐसा रखते हैं, जैसे मुझे जवाब मिलेगा मैं आपको बताता हूँ. रिया, बट थैंक यू सो मच मुझे मैसेज भेजने के लिए. ऑकलैंड ट्रैफिक टेस्ट माई पेशेंस एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एज वेल. ये भी आप लिखिए, मॉर्निंग और इवनिंग में भी वो चीज़ होती है, बट मॉर्निंग में ये कि इतना रश वाला काम होता है, इवनिंग में तो पता है चलो अभी सिर्फ ड्राइव ही करना है. सो यस आई अंडरस्टैंड, बट यस विकास भाई, थैंक यू सो मच फॉर मैसेज. अनीता कहती है फीजी इंडियन मॉम्स थिंक वन मोर रोटी विल सॉल्व एवरीथिंग. दैट इज मुझे लगता है ये प्यार है यार, ये मतलब आई नो आपका हो चुका है, बट एक और खा ले, चल एक और. ये तो यार मेरे को लगता है सबकी ही मम्मी करती है, नॉट जस्ट फीजी मम्स, एंड इन अ फैक्ट आई फील लाइक यहाँ के लोग भी करते ही होंगे. बताएंगे सो मच फॉर ऑल द लवली मैसेजेस. एंजॉय करिए एक बहुत ही बढ़िया गाना, मशुका बाय कॉकटेल 2 मूवी का गाना.
1: लंच के मंच पे Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेलकम बैक. चलिए कुछ पॉडकास्ट की बात भी कर लेते हैं बिकॉज अलग अलग तरह की पॉडकास्ट हम डालते रहते हैं और अभी एक रिसेंटली हमने जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था दैट इज़ ऑल अबाउट AI. मैं पता नहीं आप कितना सीरियस ले रहे हैं इस AI चीज़ को बट आई एम एक्चुअली टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली एंड आई एम एक्चुअली हैव यू नो स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत पता है बट ऑब्वियसली अपने आप को अपग्रेड करने के लिए We definitely have to get some courses और वहीं मैं अभी सर्च कर रहा हूँ कि कौन सा मैं कोर्स करूँ जो मेरे हित के लिए सही रहेगा. बढ़िया, मैं बात कर रहा हूँ पॉडकास्ट AI स्पेशलिस्ट दर्शित पांड्या जो यहाँ पे आए थे और सैंडी और रुजबे के साथ बैठ के उन्होंने अच्छे से बात की है. इसका ऑडियो रिलीज हो चुका है. आप मुझे ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए टेक्स्ट के थ्रू ताकि आपको ये लिंक मिल जाए जहाँ से आपको ये सीखने को मिलेगा दैट जॉब सिक्योरिटी कितनी इफेक्ट हो सकती है इस AI से. सेकंड इज प्राइवेसी कंसर्न को लेके अपॉर्चुनिटीज कितनी बिल्ड हो रही है, स्किल्स आपको क्या चाहिएंगे फ्यूचर के लिए और ऑफ कोर्स जो भी आपके सवाल जहन में आते हैं बट आप पूछ नहीं पाते हैं ऐसा कुछ चीज़ें तो वो भी आप कर सकते हैं. प्लस ऑफ कोर्स नॉट जस्ट ChatGPT बट देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म एज वेल जहां से आप सीख सकते हैं. वेल ऑफ कोर्स अगर आप एक्साइटेड हैं तो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट आपको सुनना चाहिए. आप ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि लिंक डायरेक्टली आपके फ़ोन पे आ जाए. एंड टुगेदर विद द सेम थिंग अगर आपको बिट्स एंड पीसेस भी अगर सुनने हैं विजय एंड पूजा की कॉन्वर्जेशन काफ़ी फनी और एंटरटेनिंग होती है तो उसे भी सुनने के लिए आप हमें BF लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि उसकी भी लिंक आप तक पहुँच जाए.

0: मॉर्निंग्स विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
5: फेस इट, you're good in groups, so why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
6: Hi there, sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
7: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
8: Here for all things Brinta. Sniffles on the sofa.

0: Frosty footy games.
1: Oh, riff.
0: Cozy evenings with hot soup.
1: Mmm.
0: And roasts with crispy to a tea veggies. Whatever your plans this winter, see you at Foursquare. What'll it be today?
2: Lunchbox with Ketan.
3: Iske peeche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
2: Iske peeche. Lunch ke munch pe.
4: Welcome back. You are listening to Lunchbox. मैं थोड़ी देर में आप सभी के लिए एक कॉम्पिटिशन लेके आने वाला जो कि होगा करण ओजला का. जी हाँ, वो उनका शो होने वाला है यहाँ पे बहुत ही जल्द. उसके बारे में बात होगी और मैं आपको मौका देने वाला हूँ जहाँ पे आप जीत सकते हैं बहुत ही बढ़िया डबल पास. वेल यस, कैसे? मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा कुछ ही पलों में, नॉट नाउ, मे बी थोड़ी देर में. और आपको वो गाने का जो टोन है, जो भी मैं हो सकता है उस गाने का कहीं पे बीच में कहीं से भी चला सकता हूँ, और आपको बस वो सुन के यू जस्ट नीड टू गेस एंड एज सून एज पॉसिबल आप मुझे उसका जवाब भेज देंगे. दैट वुड बी ग्रेट. सो यप, आप रेडी रहिए उस चीज़ का, कभी भी मैं आपको बता सकता हूँ. बट यस, एट द सेम टाइम बॉलीवुड की बात कर लेते हैं. अभी रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से जो रिपोर्ट आई है रिगार्डिंग कॉकटेल 2 के कलेक्शंस की, वो हो चुके 143 का कलेक्शन पहुंच चुका है, विच इज़ सो ग्रेट यार. मूवी यानी कि डेफिनेटली इज़ डूइंग सो ग्रेट. और अभी हाल फिलहाल आपको बॉलीवुड की एक और खबर बता देता हूँ, दैट फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर अब सिनेनाओ के फाउंडिंग टीम के प्रिंसिपल एडवाइजर बन चुके हैं. कंपनी इंडिया में 1350 यानी कि 1350 करोड़ के फिल्म आईपी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड कर रही है, जिसका एम है फिल्म और कंटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट एसेट बनाना. सिद्धार्थ रॉय कपूर अपने सालों की एक्सपीरियंस के साथ कंटेंट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट्स, इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर स्ट्रेटजी गाइडेंस देंगे. और उनका मानना है कि इंडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है और इसका इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट जो है मॉडल वो इंडस्ट्री को एक नए डायरेक्शन में लेके जाएगा, विच इज़ लुकिंग सो ग्रेट यार, अमेजिंग अमेजिंग. बट चलिए थोड़ी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं. कुछ फिल्में रिलीज हुई हैं. वेलकम टू द जंगल इज एक्चुअली डूइंग ग्रेट अगेन. वाओ, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट, बट क्योंकि यार ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं, आपको टीजर कैसा लगा, ट्रेलर कैसा लगा आप मुझे बताना. वैसे इनका जो कलेक्शन है वो 71.52 का हो चुका है अभी तक इंडिया में. नेट कलेक्शन ऑफकोर्स करोड़ में है वहाँ के रेट का. वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन अभी तक मेरे पास आया नहीं है, सो आई कैन नॉट टेल यू. नव्य चक्र जो कि 0.03 कलेक्शन कर चुका है. तेरा मेरा नाता 0.03. सुपर गर्ल, सॉरी तो इंग्लिश वाली है, कॉकटेल 2 जैसा कि मैंने बताया 143 पहुँच चुका है. समर्पित 0.02 एंड हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट 17.73 के साथ पेंडिंग पे उनका वर्डिक्ट जा रहा है. सो अभी तो हम वेट ही करेंगे कि इनका जो प्रेडिक्शन है वो आगे जाके क्या होने वाला है. बट यस, 3rd जुलाई इस फ्राइडे को, मोस्ट प्रॉबली फ्राइडे ही है ना 3rd जुलाई को, यस 3rd जुलाई को होने वाली है रिलीज अल्फा. जी हाँ, शर्वरी और आलिया भट्ट जिसमें बॉबी देओल भी हैं. धमाल 4 भी हैं आ रही है रिलीज ऑन 10th of July. बटवारा 1947 13 अगस्त को रिलीज होने वाला है. और मातृभूमि जो कि सलमान खान की फिल्म है वो है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन रिलीज होने वाली है.

0: रखूं जेगी।
1: क्या रहा नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स और यहाँ पे हम बात करेंगे और बहुत सारी बातों की। वेल यस, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स करण ओजला के सॉन्ग की मैं हिंट देने वाला हूँ इस आर में, जहाँ पे आप सुनेंगे और मुझे गेस करके फटाफट से भेजेंगे मैसेजेस। के ए लिखिएगा और 5599 पे भेज देना, बिकॉज ग्लोबल सेंसेशन करण ओजला अपने पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर को लेके आ रहे हैं ऑकलैंड एक मैसिव शो के साथ, चार टॉपिंग हेड्स और काफी एंथम्स भी लेके। सो यस, उसके बारे में एक गाना मैं प्ले करने वाला हूँ थोड़ी देर में, उसे आप सुनिएगा और फट से मुझे के ए लिख के 5599 पे राइट आंसर के साथ आप मुझे भेजेंगे। अगर वो नहीं भेजा तो इट गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू फिगर आउट। बट यस, आप और भी चीजें सुनिए, एक बहुत ही बढ़िया एक खुलासा भी हम करने वाले हैं ईस्टर 2027 के लिए। जी हाँ, आपको बस बने रहना है 2 जुलाई को ड्राइव शो के में, ड्राइव शो में 5 बजे एक बहुत ही बढ़िया खुलासा होने वाला है, बिकॉज आप इमेजिन कर सकते हैं दैट सनराइज व्यूज हो, एक बहुत ही बढ़िया एडवेंचर हो जो आप ऑब्वियसली बेसब्री से इंतजार करते हैं उस मौके का, न्यू फ्रेंडशिप, रोड ट्रिप प्लेलिस्ट और बहुत सारा खाना और साथ में ऑफ कोर्स एंडलेस लाफ एंड मेमोरीज, ये स्टोरी आपकी भी हो सकती है। तो इसे सुनने के लिए आप ट्यून इन रहिए, 2 जुलाई को 5 बजे ड्राइव शो में बताने वाले हैं इसका खुलासा एक्चुअली होने वाला है।
0: बचाओ क्या

Welcome back. You are listening to Lunchbox. But yes, it's time for me to reveal the song. Song bole to Karan Ojla ka ye gana hai jo main aapke samne pesh karne wala hu. Maine dekhi abhi background music jo hai wo to maine kam kar di hai. To aapko basically kya karna hai? Ye gana sunna hai. Main kahin pe bhi chala sakta hu is gaane ko. और आपको सुनते ही मुझे 5599 पे KA लिख के भेज देना है आपके सही आंसर के साथ. अगर वो नहीं करोगे तो आप ड्रॉ में शामिल नहीं हो सकते. वैसे जैसे ही आप सही जवाब भेजेंगे मुझे KA लिख के इनिशियल से करण ओजला का, तो आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे जो आपको जीत के देगा. जीत सकते हैं डबल पास फॉर द शो विच इज हैपनिंग ऑन 25th ऑफ ऑगस्ट स्पार्क एरिना. जी हाँ,

वेल गाना आपने सुन लिया है तो जल्दी से मुझे KA लिख के 5599 पे भेज दीजिए कि ये गाने का टाइटल क्या है। गाने का टाइटल आप मुझे भेज दीजिए और आप ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। वैसे इस शो के बारे में या फिर टिकट के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं hum.roa.nz या फिर livenation.co.nz पे भी जाके आप हमें हमारे इस टिकट इस शो के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हल्का सा प्ले कर देता हूँ जस्ट इन केस।

0: केतन
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Streaming on Rover.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: फिल्म बिल्कुल फेक और डेंजर एकदम रियल. इंडिया फर्स्ट 2,000 crore फेक फिल्म वेलकम टू द जंगल स्टारिंग अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, अर्शद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस एंड मेनी मोर.
1: एक जबरदस्त कहानी है.
2: और टाइटल क्या है फिल्म का?
1: वेलकम टू द जंगल.
0: वेलकम टू द जंगल नाउ शोइंग इन सिनेमास. डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म. रेटिंग TBC.

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: या रिप्ले।
3: चलिए लेटेस्ट खबर पे भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। हेस्टिंग्स से एक काफी पॉजिटिव खबर सामने आई है। एक ज्वेलरी स्टोर पर सुबह लगभग 4 बजे रैम रेड हुआ था, जहां जो चोर थे उन्होंने गाड़ी से शॉप का जो फ्रंट डोर था उसे टक्कर से तोड़ दिया। लेकिन स्ट्रॉन्गली सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से वो एक भी ज्वेलरी आइटम चुरा नहीं पाए। यानी कि उनकी जो सिस्टम सिक्योरिटी थी वो इतनी ज़्यादा सही थी दैट वो ये चीज़ में मतलब चोरी करने में असफल रहे। वैसे स्टोर ओनर ने बताया कि ऑफेंडर ने हाई वैल्यू ज्वेलरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन डिस्प्ले बॉक्सेस खाली निकले और अलार्म तुरंत एक्टिवेट हो गया। हालांकि शॉप को 15,000 से 25,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स की नुकसान भी हुआ है। लेकिन ओनर का कहना है कि सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ, विच इज दे आर वेरी हैप्पी। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है और एक स्टोलन ग्रे सिल्वर माजदा CX-5 की तलाश कर रही है। सो इफ यू नो एनीवेयर, अगर हेस्टिंग्स में आपको ये कोई खबर आती कहाँ है, कैसी है, किसकी है, तो डू हेल्प द पुलिस सो दैट वो जड़ तक पहुंच सके। वैसे कैसे हो सैंडी?
4: बढ़िया है केतन, तुम कैसे हो?
3: मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ।
4: टाइम देखो कैसे है, 2:22 2:22 हुए हैं।
3: ये शुभ होता है या अशुभ होता है?
4: अब देखो माना जाए तो सब शुभ है,
3: डिपेंड करता है किसके साथ क्या बीत रही है।
4: अगर टाइम खराब चल रहा है तो सब कुछ अशुभ ही है।
3: बट आपने कोइंसिडेंस देखा, मैंने जो न्यूज पढ़ी है और उससे पहले जस्ट हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे।
4: ओ यस,
3: है ना, मतलब आज के टाइम पे सिक्योरिटी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए,
4: नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज जब सिक्योरिटी, हम इवन कंप्यूटर्स की बात करते हैं, वहाँ पे भी अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं एंड बैकएंड में कई बार आपका अगर कंप्यूटर बहुत स्लो जा रहा है, आपका मोबाइल बहुत स्लो जा रहा है और आपको बार बार सिक्योरिटी थ्रेट्स वहाँ पे आ रहे हैं, दैट मीन्स कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग,
3: राइट?
4: सो या अगर कोई रिकमेंड करे कि भाई समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, इसको ये कर दो,
3: बट ये कैसे पता तो पड़ेगा कि समथिंग इज
4: करना चाहिए?
3: क्योंकि देखो आप सिस्टम चलाते हो,
4: ओवर द फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूँ, छोटा इश्यू बताती हूँ कि यहाँ से पता चला कि मेरे कंप्यूटर में समथिंग इज रॉन्ग।
3: हाँ
4: नहीं, वो इश्यू नहीं, तुम्हारी एक्सटर्नल ड्राइव से कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही क्या हो रहा था कि मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड फोल्डर में भी कोई फाइल मैं रख नहीं पा रही थी। मतलब कुछ नई फाइल अगर मुझे डाउनलोड करनी है तो आई हैव टू क्लियर माय डाउनलोड फोल्डर,
3: राइट,
4: कोई भी फाइल। एंड फॉर एग्जाम्पल 7 GB की फाइल भी मुझे डाउनलोड करनी है तो आई हैड टू क्लियर माई डाउनलोड फाइल, मेरे को डेस्कटॉप क्लियर करना पड़ रहा है, एवरीथिंग। मेरे को स्टोरेज स्पेस की प्रॉब्लम आ रही थी, हालांकि कुछ भी नहीं है, खाली है, लेकिन फिर भी स्टोरेज स्पेस की प्रॉब्लम आ रही थी। मीन्स कि बैकएंड में बहुत कुछ चल रहा है, टेम्पररी फाइल्स जो है वो वहाँ पे बहुत लोडेड होके रखी हुई है। तो जब ऐसा कोई इशू आता है वो तो ऑफकोर्स जब IT के पास गई तो उन्होंने मेरे को पूरा बताया कि क्या क्या हो रहा है, एंड देन इट गॉट सेटल्ड। तो कई बार ऐसी चीज़ें जो होती है ना, दिस इज़ अ साइन कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विद योर PC या फिर फ़ोन ले लो। फ़ोन कई लोग कितना एकदम क्लियर कर देते हैं, फिर भी उनको नई चीज़ें वहाँ पर स्टोर करने के लिए इशू आता है, स्टोरेज स्पेस नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि बैकएंड पे समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, सो मे बी गेट इट चेक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल क्या है ना, ये हैकर्स वो सब चीज़ें स्कैम्स वगैरह इतने ज़्यादा हाईटेक हो चुके हैं कि हमें भी समझ में नहीं आता है कि वायरस कहाँ से किस फाइल के थ्रू ही आ जाएगा।
3: ट्रू ट्रू, मतलब ये चीज तो क्लियर है,
4: कितना होता है ना, धीरे धीरे काम करता है।
3: ये चीज तो क्लियर हो गई कि वायरस जो है सिर्फ आपके डेटा लीक नहीं करेगा, बट इट इज एक्चुअली टेकिंग योर स्पेस एज वेल।
4: स्पेस स्लो पॉइजन की तरह आपका स्लो स्लो लेके वो मेमोरी खा रहा है। So yeah, this was the gyan of the day.
3: So IT Sandy ki, Sandy Baba ki, jai. But I'm pretty sure yahan pe kafi logon ne isko as a learning process ho. Sabhi struggle kar rahe hain with the space ka issue aur ye sab. Doesn't matter what phone they are using, but ye cheez hoti rehti hai.
4: Yeah.
3: But thank you so much yaar, ye gyan dene ke liye. I'm pretty sure ye IPS mein exam aayega.
4: Aaj mila gyan to maine aage baanta.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

मैच दोनों ने एक एक गोल किए हैं, 3-4 ट्राई हुए हैं दोनों के बीच में। बट यस, नीदरलैंड वर्सेस मोरक्को अभी भी कुछ मिनट बाकी, 29 मिनट्स बाकी हैं, लेट्स सी, अप्रॉक्स 29 मिनट्स बाकी है, तो देखते हैं अभी क्या करिश्मा होता है इनके बीच। वैसे कल के मैच बता देता हूँ, कोटे डिवियर 9 के बीच में मैच है कल, उसके बाद फ्रांस वर्सेस स्वीडन करीबन सुबह के 9 बजे मैच है, उसके बाद मैक्सिको वर्सेस इक्वेडोर के बीच में भी 1 बजे मैच है कल, तो यस वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दूसरी तरफ देखें क्रिकेट की अगर बात करें तो खुशखबरी तो नहीं है, ऑफ कोर्स इंडिया, अगर आप इंडियन फैंस हैं तो इंडिया तो हो चुकी वर्ल्ड कप से बाहर, लेकिन उसी टाइम उसी दिन ये भी अनाउंस हो गया दैट इंडिया हैज़ ऑफिशियली क्वालिफाइड फॉर LA 2028 ओलंपिक्स, यानी कि एक एक्साइटिंग अपडेट है ये। LA 2028 ओलंपिक्स में वुमेन्स क्रिकेट के लिए पहली 4 टीमें हो चुकी है क्वालिफाई, और ये टीम है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन। ये क्वालिफिकेशन ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के परफॉर्मेंस और रीजनल रैंकिंग के बेसिस पर मिली है। ओलंपिक्स में टोटल 6 वुमेन टीम हिस्सा लेंगी, बाकी 2 जगह जो है वो करीबन 2027 में होने वाले ICC ओलंपिक्स क्वालिफायर से होगा। क्रिकेट का ओलंपिक्स में वापस आना पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए एक काफ़ी हिस्टोरिक मोमेंट माना जा रहा है, और इंडियन वुमेन्स टीम के फैंस के लिए ये बहुत ही प्राउड न्यूज़ है। क्या लगता है वो बाकी की 2 टीम क्या होगी? यार न्यूजीलैंड आ जाए यार, मज़ा आ जाएगा, न्यूजीलैंड भी हो तो यार ओलंपिक में होनी चाहिए, राइट?

0: वेलकम बैक। चलिए एक और कंपटीशन लेके आया हूँ आपके लिए, एक फिर से डबल पास जीतने का। कृष्णा, अभिषेक, राजू ठाकुर लाइव आ रहे हैं यहाँ पे पहली बार न्यूजीलैंड में परफॉर्म करने। द ग्रेट कॉमेडी नाइट, कृष्णा, अभिषेक, राजू ठाकुर लाइव कमिंग टू ऑकलैंड। जी हाँ, वीआईपी सीट्स हो चुकी हैं, हाउस फुल सोल्ड आउट हो चुकी है। सो यस, अभी भी कुछ सीट्स बची हैं, जल्दी से जाइए bookmyevent.co.nz पे और टिकट खरीद लीजिए। विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है 18 जुलाई को। आफ्टर पे ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल है। बट यस, ट्रीविजन इवेंट्स की तरफ से ये आया है शो, और आप सभी के लिए, हमारे लिसनर के लिए, हम की तरफ से ये कॉम्पिटिशन है। वेन अ डबल पास, कैसे, एक सवाल करने वाला हूँ यहाँ पे, जिसका जवाब आपको मुझे भेजना है जल्दी से, और मैं यहाँ पे लिखूंगा जो भी लकी विनर होगा उसका नाम, वो हो जाएगा ड्रॉ में शामिल, और उससे इंतजार करना है कि अगर क्या वो जीतेगा नहीं, यानी कि उसका जो एक्चुअल विजेता होगा कि कौन डबल पास जीता है, उसके लिए आपको बस कंटिन्यू रखना है और जवाब मुझे भेजना है 5599 पे। वेल, ये रहा सवाल, कृष्णा अभिषेक की गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ का नाम क्या है, जल्दी से मुझे 5599 पे भेज दीजिए। कृष्णा अभिषेक की गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ, मुझे पता नहीं वो शादी हो चुकी है नहीं हुई है, पता नहीं, या लिविन में रह रहे हैं, बट यस, उनकी, उसका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, जल्दी से मुझे 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो जाएं और आप जीत सकें एक डबल पास। 5599 इज द नंबर। लंच बॉक्स विद केतन,
1: मुझे पसंद है लड़का। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
2: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
3: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
5: Indelible Homes, your building expert.
6: Ride dirty, keep clean with Dirtworks Bike Cleaner. Their powerful, eco-friendly formula removes even the toughest of mud while being gentle on the environment. Whether you've had a rough ride or an exhilarating one, Dirtworks makes sure your bike is always ready for action. Works on mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Get dirty on the trails and let them handle the cleanup. Keep it slick, keep it green and keep your ride pristine. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's Works with an X.
7: This dry July, do something good for yourself and for others. Go alcohol-free for 31 days and raise funds for Kiwis affected by cancer. Do good, feel good. Go dry this July. Sign up now at dryjuly.co.nz.
8: Non-stop Bollywood.
9: Hum.
8: Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
10: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
8: इसके पीछे
9: हम
8: टेक टॉक।
0: टिकटॉक की बात करें, बट उससे पहले आपको बता देता हूँ, ऑकलैंड गेट रेडी फॉर एन इवनिंग ऑफ लाफ्टर एंड एंटरटेनमेंट। गुज्जू भाई, जी हाँ, उनका एक्सचेंज ऑफर स्टारिंग द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंधेरिया, वेल, उनका बहुत ही बढ़िया कॉमेडी शो आने वाला है यहाँ पे बहुत ही जल्द। अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर में ऐसे फंसते हैं कि वहाँ से उसकी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी आते हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा सिचुएशन जहाँ पे आपको हंसोगे, एंड एक से बढ़कर एक डायलॉग्स हैं, एक से बढ़कर एक, यू नो, उनकी एक्टिंग इज माइंड ब्लोइंग, और सबसे खास बात गुजराती ह्यूमर भी बहुत बहुत बढ़िया वहाँ पे है। सो यस, सिद्धार्थ रंधेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया शो। आप 3 जुलाई को पहुंच जाइए, यानी कि बस 3 दिन ही बाकी है। 7:30 बजे के बाद विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर, premierticket.co.nz पे जाके आप टिकट खरीद सकते हैं। और टिकटॉक पे तो यही है कि यार फाइनली 13 साल बाद एक गेम लॉन्च होने वाला है इस साल के एंड में, और अभी से प्री बुकिंग होनी शुरू हो गई है। एनी गेसेस, मैं कौन सी गेम की बात कर रहा हूँ? आई नो इट इज़ लाइक आई एम एक्चुअली बिग फैन ऑफ दैट गेम, पूरा ओपन वर्ल्ड वाला गेम है, और उसकी बिक्री आई एम टेलिंग यू रिकॉर्ड तोड़ेगी। द ओनली क्वेश्चन इज, जो लोग PC पे गेम खेलना पसंद करते हैं वो उस गेम को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं? आई एम नॉट श्योर इफ आई एम अलाउड टू टेक द नेम ऑफ दैट गेम और नॉट, बट या आई एम टॉकिंग अबाउट GTA। जी हाँ, GTA 6 की मैं बात कर रहा हूँ, और उस गेम का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब आएगा। फाइनली इस साल के एंड में रिलीज होने वाला है। द ओनली थिंग इज, आई डोंट वॉन्ट टू बाय कंसोल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गेम। मैं थोड़ा वेट करूँगा, होपफुली उस पर भी आ जाए, क्या बोलते हैं, PC पे भी आ जाए तो मज़ा आ जाए। बट यस, हाउ एक्साइटेड आर यू? आप भी मुझे बताइए 5599 पे। बट यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मैं निकलता हूँ। सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली विद द कॉफी ब्रेक, एंड आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: There are easy ways to save up to $500 on power bills this winter, like only heating the rooms you're actually using, by shutting doors and blocking sneaky gaps, or turning off appliances that aren't in use, especially the ones you might have forgotten were even on, or by checking if an off-peak plan is right for you to make the most of when power's cheaper. For more winter saving advice, visit EECA, that's EECA.govt.nz.
2: As a baby, I was burnt in hot water.
3: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
4: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
5: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
6: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
7: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. The Health Minister says he's asked to be kept closely informed following a death at Waikato Hospital's ED. The person presented last night and was triaged on arrival but was later found unconscious and couldn't be resuscitated. A rapid clinical review is being carried out to establish exactly what happened. The red meat industry is celebrating a second consecutive monthly high in exports. They rose 44% on the same time last year. Meat Industry Association's Nick Beebe points to biodiversity as a key driver.
8: Our exporters have a really long and successful track record of being able to divert product into other markets.
7: A Christchurch man has been jailed for more than 13 years for child exploitation crimes. 34-year-old Glenn Alwyn Connor of Linwood admitted guilt to 43 charges, including 19 counts of possessing 14,000 objectionable publications. The creator behind Hokitika's iconic Driftwood sign intends to restore it. The West Coast landmark was recently torn down. Don Neal says it's only the second or third time in 25 years.
9: The person who did it is kind of just seeking a bit of publicity, I think, so I'm just not going to help them with that. But other than that, it'll be rebuilt probably closer to summertime.
7: To rugby with Shift 4, Damien McKenzie is trying to put his Super Rugby disappointment in the past ahead of the opening All Blacks test of the year. The Chiefs' first five says being an older player now has helped him better process the loss to the Hurricanes.
10: You've got to be able to move on pretty quickly from that disappointment. It can be hard, but you know, we've got a good group of players here. We've got an exciting week this week to come up against a good French side.
7: And at the FIFA World Cup, a short time ago, the Netherlands led Morocco 1-0 nearing full-time in their round of 32 match.
6: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
11: मौसम के हालचाल मेन सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 14.6 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 5 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. इट इज गुड डे, सनी ब्राइट, लेकिन ओवरनाइट काफी चिली वेदर रहेगा. सनसेट आज का 5:16 पर.
6: द बीट ऑफ बॉलीवुड
12: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं
6: है. कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
11: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कैसे हैं आप? कॉफ़ी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. पहले 6 महीने इस साल के ओवर एंड आउट हो रहे हैं, मतलब हो ही चुके, ऑलमोस्ट हो चुके हैं. टुडे इज 30th of June, यानी कि 6 महीने गए. कल से जुलाई शुरू हो चुका है. सो कैसे आपका ये 6 महीने का सफ़र गया है? अगर एक वर्ड में आपको बोलना हो, 6 months ऑफ 2026, आपके आधा साल हो चुका है. आधा साल आपका कैसा गया है गाइस? शेयर कीजिए एक वर्ड में 5599 पर या फिर कॉल करके यहाँ पे. वैसे आपके साथ शेयर भी करेंगे कि 1 जुलाई से जो चेंजेस आने वाले हैं, अगर आपने मिस आउट किया है तो ये चेंजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगी. 1 जुलाई से यहाँ पर जो चेंजेस, न्यूजीलैंड में जो चेंजेस आने वाले हैं, व्हाट्सएप पे भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे. एंड और क्या क्या हो रहा है आसपास, कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिलने वाला है. फिलहाल फीफा इज गोइंग क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग मैचेस हो रहे हैं. आज जर्मनी की हार हो गई, इमेजिन. सो जर्मनी एंड पैराग्वे, इनके बीच में वैसे वन ऑल था, उसके बाद पेनल्टीज में जर्मनी की हार हुई. सो दैट वॉज इंटरेस्टिंग वन. ब्राज़ील की सुबह जीत हुई. ब्राज़ील और जापान का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे ब्राज़ील की 2-1 के साथ जीत हुई थी. एंड अभी जो मैच है नीदरलैंड्स एंड मोरक्को के बीच में, 1-1 है वैसे. एंड लेट्स सी इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, तो आपके साथ यहाँ पे ज़रूर शेयर करेंगे. आपकी फेवरेट टीम क्या है, किस टीम को फिलहाल आप सपोर्ट कर रहे हैं, चेयर अप कर रहे हैं, भेजिए लिख के 5599 पर.
13: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz. Go!

0: बजकर 14 मिनट हुए है. गुड आफ्टरनून, यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुजबे. हाय सैंडी, गुड आफ्टरनून.
1: गुड आफ्टरनून रुजबे, कैसे हो तुम?
0: आज आप पोपट लग रहे हो.
1: मैं पोपट लग रही हूँ?
0: हाँ.
1: क्योंकि ग्रीन कलर में मैं क्या ये यार उसमें
0: अरे क्यों
1: कुछ नहीं.
0: Is it considered bullying
1: to say that? No, na? अच्छा. Popot is, वो हम तो बोलते हैं इसका popot हो गया.
0: हाँ हाँ. ऐसा. Popot is like parrot.
1: मुझे ऐसा पहले लगा कि क्या ही popot हो गया मेरा.
0: नहीं.
1: But मैंने तुमसे ये पूछना था रुजबे.
0: पूछो ना.
1: तुमने मेरे को बोला था ना कि तुम इस साल में तुम कुछ अचीव करना चाहते हो. जब हमने क्या किया था, बैकयार्ड बीट्स किया था हमने.
0: हाँ,
1: लोकल आर्टिस्ट का हमने प्रमोशन किया था.
0: बैकयार्ड बीट्स. हाँ.
1: यू शेयर्ड समथिंग विद मी कि दिस ईयर you want to achieve something, you are working on something,
0: yeah.
1: and maybe next local artist mein dab tumhara naam hoga. Because tumhe saal to lagega wo cheez learn karne mein. It's not overnight thing, right?
0: Yes, right. That's right.
1: To wo batana chahu ki abhi ki abhi secret hai.
0: Nahi, obviously abhi kyu aapke man mein aa rahi hai sari cheeze?
1: Aisa mere man mein aisa aaya.
0: Maine to ek pura show socha hai. Theek hai.
1: तो गाइज मैं बोलूं क्या?
0: नहीं
1: शेयर करूंगा.
0: नहीं, नहीं, नहीं, okay. तो थोड़ा सा
1: सस्पेंस रहने दो.
0: सस्पेंस नहीं है भाई, कुछ करना पड़ेगा ना जिंदगी में. पहले सिर्फ बातें करता हूँ मैं, मतलब माना मैं कि यहाँ पे मेरा हाँ, काम है सिर्फ बातें करना.
1: तो मेरा रीजन था पूछने का इसलिए बिकॉज हाँ, आज है 30 जून.
0: अच्छा,
1: आधा साल चला गया है.
0: लेकिन वो बैकयार्ड बीट्स तो अभी मई में हुआ ना सैंडी.
1: वो तो मई में हुआ, बट आई एम सेइंग कि आधा साल वैसे चला गया है. हाफ ईयर इज गॉन, यू ओनली हैव हाफ ईयर लेफ्ट. या
0: या या.
1: Or maybe less than that.
0: क्यों less than that?
1: Because अगर तुम दिसंबर में you know New Year में कुछ ऐसा यहाँ पे करना चाहते हो जो तुम्हारा talent उसको लेके तो या that's मैं उस वजह मैं creative ऐसा सोच रही थी.
0: नहीं नहीं दिसंबर में कुछ नहीं करना
1: चाहता. पता
0: नहीं तुमने क्या सोचा. नहीं नहीं मैं दिसंबर में कुछ नहीं करना चाहता हूँ. मैंने सोचा है वो करूँगा मैं अगले साल. अभी मैं क्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ. आई एम वर्किंग ऑन माय क्राफ्ट राइट नाउ. इट्स टाइम फॉर मी टू अपग्रेड माय सेल्फ एंड दैट्स व्हाट आई एम फोकस्ड ऑन. सो मेरा अक्सर मेरा कैसे चलता है मालूम है क्या? तो मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम प्लानिंग में और वो फर्स्ट स्टेप लेने में जाता है. एक बार वो फर्स्ट स्टेप ले लिया ना, उसके बाद मेरा बहुत फास्ट निकलता है.
1: ओके,
0: सो माय मैक्सिमम टाइम इज डन नाउ बिकॉज़ मेरा फर्स्ट स्टेप ले लिया.
1: तो तुमने ले लिए?
0: फर्स्ट स्टेप ले लिया मैंने अभी. अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में आई हैव टू कंप्लीट द जर्नी व्हिच आई थिंक आई वुड.
1: 6 महीने तो प्लानिंग में लिए ना तुमने?
0: 6 महीने प्लानिंग में और फर्स्ट स्टेप लेने में.
1: अच्छा, फर्स्ट स्टेप ले लिया तुमने?
0: फर्स्ट स्टेप ले लिया मैंने. या या.
1: ओके, दैट्स गुड टू नो. वो नहीं मुझे पता था, मुझे लगा कि अभी सिर्फ प्लानिंग की हुई है.
0: नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट स्टेप क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने फर्स्ट स्टेप नहीं कुछ स्टेप्स ले लिए है ऑलरेडी. बट नाउ आई नीड टू जस्ट बक अप and okay. continue the momentum.
1: Yeah, because the problem expectations hai tumse because abhi market bahut tight ho gayi us talent ko leke.
0: Kaun si talent ki baat kar rahe ho aap?
1: Jo tumne bola tha tum talent achieve karne wale ho ye.
0: Backyard beats mein na?
1: Haan,
0: backyard
1: haan,
0: beats mein. Haan, to usme main jo talent dikhana cha raha hu uska already bahut competition hai.
1: Haan, bahut competition hai yaar.
0: Haan, lekin aap jis talent ki baat kar rahe ho wo usme nahi main ja raha hu. वो हाथ ऊपर कर लिया मैंने.
1: हाथ ऊपर कर लिया? क्यों?
0: कंपटीशन नहीं हैंडल होगा मेरे से.
1: क्यों ऐसा क्यों?
0: सैंडी यार आपस वाली बातें मत करो.
1: डू यू हैव एनी आइडिया मैं किस टैलेंट के बारे में बात कर रही हूं?
0: किसी को कोई आईडिया
1: नहीं है. प्लीज कोई गेस करो. बैकयार्ड बीच जब हमने लोकल आर्टिस्ट को यहां पे प्रमोट किया था एंड लेट मी टेल यू दिस इज नॉट सिंगिंग.
0: Why not singing?
1: This is not singing.
0: Okay.
1: So something related to that only. Music or related ही है. ऐसा कौन सा talent है जो रुजबे achieve करना चाहता है? Let's see कितने लोग रुजबे को जानते हैं.
0: Okay, let's see.
1: Yeah. 5599 पर message करके भेजो. ऐसा क्या talent है जो रुजबे learn करना चाहता है? And तुमने दूसरे talent के बारे में वो भी तुमने बोला था करने वाले हो ना, उसके लिए तुमने हाथ खड़े कर दिए.
0: कौन सा दूसरा?
1: तुमने बोला ना अभी उसमें कंपटीशन बहुत है, मेरे हाथ खड़े कर दिए. वो कौन सा था? वो तो बोल ही सकते हो.
0: वो जो आप सोच रहे हो वो मैं नहीं बोलूंगा. मेरे को नहीं पता आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो.
1: मुझे तो दो पता है, तुम्हें दो चीजें सीखनी थी. ठीक है,
0: मुझे सीखनी तो बहुत सारी चीजें सैंडी, लेकिन आप उसके ऊपर क्यों बात कर रहे हो?
1: बिकॉज़ इट्स हाफ ईयर गॉन.
0: अच्छा, हाफ ईयर गॉन. वेल, चेक हो रहा है मेरे ऊपर अभी.
1: इट्स अ चेक टाइम. सो दो चीजें म्यूजिक को लेके नहीं सीखना था कुछ भी. आई एम गुड, आई एम परफेक्ट रुजबे. Super perfect.
0: Your resolution for the year is to follow up with Ruzbe and make sure he's on track.
1: To follow up with everyone.
0: Okay, anyway, thodi aur baatein karenge aapke saath. Aap sun rahe Coffee Break.
2: Coffee Break with Sandy.
3: Usse koi personal sawal nahi poochte. Gussa ho jati hai aur sab bas kar dete hai sir.
4: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
8: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
9: Neighbourly News. Local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
10: As a baby, I was burnt in hot water.
11: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
12: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
13: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
14: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
15: Sorry about that.
14: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
15: Kogan Mobile, true Aussie value.
14: Terms and conditions apply.

0: भूमि त्रिवेदी की आवाज राम चाहे लीला, ये आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम्पलिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट। 3:30 बज चुके हैं दोपहर के और आज एक काइंड ऑफ विक्ट्री हुई कहीं ना कहीं, बिकॉज जो हेट स्पीचेस कर रहे थे, जो
1: जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के आड़ में हेट स्पीच कर रहे थे,
0: फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये सब, उनका गन लाइसेंस रिवोक हो गया है और गन्स भी बरामद कर दिए गए हैं।
1: टॉकिंग अबाउट ब्रेन तमाकी एक्चुअली में, सो एक्चुअली में मैंने सुबह ना ये लाइव वीडियो देखा था।
0: अच्छा,
1: आई डोंट नो कैसे मेरे टाइमलाइन में, आई एम नॉट फॉलोइंग हिम या एनीथिंग, मेरे टाइमलाइन में आया था।
0: हैशटैग यूज करेगा ना सही वाला
1: एक्चुअली में, तो मैंने क्लिक किया तो उस समय पर पुलिस उसके घर पे थी, तो उसको नहीं पता था कि उसका लाइसेंस रिवोक हो चुका है अपेरेंटली। एंड वो ये कह रहा था लाइव वीडियो में, मैंने जो सुना ही वो सेइंग कि पुलिस को दिखा रहा था कि उसका गैराज में एक बॉक्स पूरा भरा हुआ था गन्स के साथ, तो पुलिस वो सारी गन्स उठा रही थी एंड ही वो सेइंग कि देखो इंडियंस इमिग्रेंट्स
0: से मैं हंटिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ तो भी ना,
1: इन सब के कारण अब मेरी ये गन्स जो है लेके जा रहे हैं, तो यू नो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अब मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है, वो सब चीज़ें ही वो सेइंग ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ उसमें। एंड वो बार बार उसके लिए भी इंडियंस को ही ब्लेम कर रहा था। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि उसको सुबह अगर कॉन्स्टिपेशन होती होगी तो उसमें भी उसका ब्लेम यही जाता होगा कि इंडियंस की वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है,
0: इन लोगों ने स्ट्रेस बढ़ा दिया है,
1: इन लोगों ने मेरा स्ट्रेस बढ़ा दिया है हर एक चीज के लिए करता होगा ना वो, तो
0: ऐसे ही होता है। लेकिन यार दैट इज व्हाट दिस थिंग इज ना, कि कुछ भी अगर होता है तो हम अगर एक किसी को पकड़ लिया तो उसको ही ब्लेम करते हैं वो चीज के लिए।
1: होता है, दिस इज ह्यूमन नेचर।
0: लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जिंदगी में सब सही चल रहा है, ठीक है, और अगर कुछ गलत हुआ तो आप बोलोगे अरे बुरी नजर लग गई किसी की
1: बुरी नजर लग गई ये नहीं हम बोलेंगे, ओन अप हम बहुत कम करते हैं।
0: या
1: वी डू नॉट ओन अप, बट या वी ट्राई टू फाइंड द रीजंस।
0: काफी लोगों ने यहाँ पे मैसेज भेजा यार, अ लॉट ऑफ पीपल नो मी क्वाइट वेल नाउ, प्राची वेल डन यार।
1: तो हमने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था, इफ यू गाइस जस्ट जॉइंड अस, कि रुजबे ने एक कुछ अचीव करने के लिए, म्यूजिक को रिलेटेड कुछ अचीव करने का एक गोल बनाया है, एंड आपको क्या लगता है वो क्या हो सकता है? तो डिफरेंट आया है हमारे पास, एक आया है आंसर पॉडकास्ट कंपोजिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड इज आई थिंक रुजबे वांट्स टू लर्न हाउ टू प्ले इंस्ट्रूमेंट। थर्ड इज हाउ टू प्ले गिटार, प्राची ने भेजा है। सो या एक्चुअली मैं दो गोल बनाए थे, एक के ऊपर उसने हाथ खड़े कर लिए हैं, इसमें कॉम्पिटिशन बहुत है उससे नहीं हो पाएगा।
0: दो गोल क्या बनाए थे मैंने?
1: दो था ना, दूसरा भी तुमने करना था।
0: मैंने म्यूजिक रिलेटेड गोल बनाया था,
1: ये तो सीखने वाला तो था ही, दूसरा भी था जो तुमने बोला था कि मैं पूरा शो करूंगा उसके ऊपर, मैं वो करूंगा तुमने बोला था ये रुजबे,
0: बट मैंने उसको अभी इवॉल्व किया है थोड़ा।
1: हाँ।
0: मैंने एक अलग शो कॉन्सेप्ट सोचा है जो मैं जब भी करूंगा तो फर्स्ट मौका हमारे लिसनर्स को मिलेगा उसको विटनेस करने का।
1: तो कितना टाइम लोगे तुम?
0: कितना टाइम लूंगा मतलब
1: सीखने में,
0: वो सब

0: की दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Coffee break आपके लिए जा रही है 3:44 right now on the clock and 4 बजे के बाद drive show भी आपके लिए वैसे भी शुरू ही हो गया drive show.
1: Yeah, शुरू ही हो गया है. वैसे आज 6 बजे के बाद trend makers में आज special आप सुनने वाले हैं.
0: क्या है special आज का Sandy?
1: Well, this singer who is celebrating a birthday today. ये जो सिंगर है इसके बारे में मैं हिंट देती हूँ आपको.
0: अच्छा बताओ.
1: ठीक है, एंड यू गेस की किस सिंगर के बारे में बात कर रही हूँ. ये जो सिंगर है इसने अपना बैंड फॉर्म किया है और जब इसने
0: नाम डाला है क्या बैंड में
1: और जब इन्होंने अपना बैंड फॉर्म किया तो यू नो इनका जो बैंड है इज वाइडली फेमस फॉर मॉडर्न पॉप रॉक क्लासिकल गानों का इन्होंने रीमेक करना शुरू किया एंड पीपल जस्ट लव्ड इट. मतलब इनका उस समय पर जो YouTube चैनल इन्होंने ओपन अप किया और उसमें उन्होंने जो वीडियोस डाली एंड इस वीडियोस में इनका पूरे का पूरा बैंड रहता है तो मतलब कमाल की ही वीडियोस थी, कमाल के ही गाने इन्होंने गाए हैं कि पीपल जो थे चाहे वैलेंटाइंस का डे है या कोई भी डे है दे लव देयर सॉन्ग्स. एंड यू आर राइट, ये जो सिंगर है इसका जो नाम है उस नाम से इस बैंड का नाम है.
0: या एक ने गेस भी कर लिया यहाँ पे.
1: या बेसिकली 1 2 3 4 चार लोग हैं इसमें, इस बैंड में चार लोग हैं. वेरी पॉपुलर बैंड, आई विल से वेरी वेरी पॉपुलर बैंड. इमेजिन करो एक ऐसा बैंड जो कि
0: नया जॉनर चालू किया था.
1: नया ही जॉनर चालू किया. इन्होंने ओरिजिनल सॉन्ग्स भी गाए हैं लेकिन शुरुआत की इन्होंने रीमेक करके, गानों का रीमेक करके, क्लासिक गानों का रीमेक किया इन्होंने
0: और अलग ही अंदाज में,
1: अलग ही अंदाज में. और इमेजिन कीजिए वो गाने आज बैक टू बैक 6 से 7 के बीच में सुनने वाले हैं, क्या ही मजा आएगा.
0: बहुत ही मजा आएगा.
1: yeah.
0: आज तो धमाल ही होगा. वैसे हमने ऐसे बहुत मजे किए हैं क्योंकि हमने बहुत ही अलग अलग आर्टिस्ट को शाउट आउट दिया है, अलग अलग थीम्स को शाउट आउट दिया है और साइलेंटली हमने उनको अपलोड किया है बिना कोई ऐड का. जस्ट आर टॉक, या जस्ट आर टॉक एंड जस्ट द सॉन्ग्स, नो एड्स. आपको रोवा पे जाके मिल जाएगा.
1: या सो रोवा पे जाएगा, वहाँ पे अगर आप ट्रेंड मेकर सर्च करते हैं तो ये जो हम स्पेशल सेगमेंट्स आपके लिए लेके आते हैं ना 6 to 7 के बीच में, वहाँ पे आपको मिलेंगे विदाउट एनी एडवर्ट ओवर देयर. सो वो आप कभी भी वहाँ पे जाके सुन सकते हैं. बट राइट नाउ या ये जो बैंड है क्या नाम है इसका यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अगर आपको पता चला है. एक सिंगर के नाम के ऊपर ही पूरे के पूरे बैंड का नाम है.
0: हाँ तो यहाँ पे मैसेज करके हमें बताइए कौन सा है. देखो गौरव, मैं मानता हूँ कि सैंडी अगर कोई सिंगर की बात करे तो इट हैज़ टू बी अमाल या फिर अरमान मलिक.
1: ऐसा नहीं है यार.
0: बट ऐसा नहीं है.
1: ऐसा नहीं है. और अरमान मलिक का बैंड नहीं है. दिस सिंगर गॉट अ बैंड, ही गॉट फेमस फ्रॉम द बैंड ओनली. वो एज अ इंडिविजुअल सिंगर बाद में आना शुरू हुआ, पहले उसका बैंड फेमस हुआ.
0: जी
1: या तो वो आपको बताना है नाम 5599 पर.
0: सो हमने ऑलरेडी आई थिंक अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एपिसोड हमने ऑलरेडी डाल दिए
1: पॉडकास्ट के. और नहीं, किसके बात कर रहे हो? ट्रेंड मेकर्स के
0: और काफी लंबे लंबे एपिसोड्स हैं ये.
1: या बिकॉज गाने हैं ना उसमें
0: काफी, सब गाने एक तो. सो गो गिव इट अ लिसन. या वी हैव गॉट अ फ्यू पीपल हु हैव एक्चुअली गॉन एंड heard a few trend makers already without we even saying it. But हाँ, अलग अलग है. जैसे कि रोड ट्रिप पे अगर आप जा रहे हो तो रोड ट्रिप का एक अपना प्लेलिस्ट है.
1: Love at first sight के गाने आपको वहाँ पे मिलेंगे. बाकी आर्टिस्ट के गाने कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं. सो स्पेसिफिकली आर्टिस्ट के ऊपर भी गाने जो हमने किए हैं वो सब एपिसोड्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: गुड आफ्टरनून। वेदर का हाल आज काफी कमाल दिन रहा। ब्यूटीफुल डे इन आवर सुपर सिटी। सनसेट होगा 5:15 पे और महसूस आप कर रहे हैं अराउंड 14 डिग्रीज। ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 5 डिग्रीज टुनाइट।
2: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस। स्लीप इजी फॉर लेस एट बेड्स आर अस मनुगो एंड पुकीकोई। स्लीपी हेड स्लीप इजी क्वीन बेड्स फ्रॉम ओनली $7.99 ऑन सेल नाउ।
0: सुपर से ऊपर ब्रॉट टू यू बाय रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स लिमिटेड।
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
1: आप सुन रहे ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे। 4:03 हो चुके हैं एंड आज 30th of June, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल।
4: ओह इट इज, एंड एंड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ 2026।
1: ओह या, एंड ऑफ 6 मंथ्स। तो आज हम रिकैप करेंगे फॉर दिस ईयर। हाउ हैव द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2026 बीन फॉर यू? 0800 004866 is the number. You can give us a call. And what do you think? How's the first half of 2026 been? It started off very rough, I would say. काफी सारे wars और काफी सारा drama, tension.
4: Yeah, worldwide अगर देखा जाए.
1: Worldwide बोल रहा हूँ मैं। काफी stressful रहा first half.
4: Yeah, petrol prices. घर से काम शुरू होगा, work from home शुरू हो जाएगा फिर से क्या? And बीच में एक pandemic के बारे में भी news आई. क्या ये फ्लू शुरू होने वाला है क्या फिर से? मतलब ऐसी चीजों की न्यूज़ बहुत ज्यादा आई इस साल।
1: एक्चुअली मैं सैंडी, जैसे आपको खांसी हुई ना बहुत टाइम तक, बहुत लोगों को ऐसी हुई है। मेरे ऑफिस में अभी भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तीन चार हफ्ते से खांस रही है।
4: हाँ बहुत, ये अगर ये खांसी किसी को लग जाती
1: है तो उन तक मुझे लग रहा है।
4: लेकिन ये फ्लू मैंने बहुत सुना है, बहुत लोगों को हुआ। मेरा यहाँ पे ज्यादा जाहिर हुआ बिकॉज़ हम बात करते हैं ना यहाँ पे।
1: जी, दैट्स राइट। बट एनीवे, वी आर रिप्रेजेंटिंग योर वॉइस, सो दैट्स व्हाई इट्स गुड दैट यू नो यू हैड दैट।
4: ऐसा खांसी हुई ताकि जाहिर हो कि सबको हो रही है।
1: अगले साल भी आप ही करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है।
4: मुझे समझ में है क्यों हुई है खांसी, मेरी खांसी सुन सुन सुन के। एनीवे, जोक्स अपार्ट, आपके लिए ये साल कैसा रहा? सो फार 6 मंथ्स आपके लिए इस साल के कैसे रहे? बहुत जल्दी निकल गए, प्रोडक्टिव थे, नॉट सो प्रोडक्टिव थे, कैसे गए ये 6 महीने आपके?
1: 0800 004866 नंबर है, कॉल कीजिए यहाँ पे। अगर आपने 2026 के फर्स्ट हाफ तक हमें यहाँ पे कॉल नहीं किया है, मे बी दिस इज योर चांस टू गिव अस अ कॉल एंड टिक दैट ऑफ। भाई मैंने फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में तुमने कॉल भी लगाया है,
4: और साथ ही साथ वैसे फीफा का रिजल्ट भी बता ही देते हैं।
1: क्या क्रेजी मैच हो गया,
4: क्रेजी मैच हुआ आज। 2 मैचेस ऐसे रहे जहां पे पहले ड्रॉ हुआ और उसके बाद पेनल्टीज ने डिसाइड किया मैच का रिजल्ट। अभी मोरक्को की जीत हुई है नीदरलैंड से 3-2 के साथ, मतलब पेनल्टीज में 3-2 के साथ। अदरवाइज
1: ये काफी सरप्राइजिंग था ना, मुझे से लग रहा है नीदरलैंड्स वाज अ वेरी स्ट्रांग टीम ना,
4: इज एक्चुअली अ स्ट्रांग टीम। एंड उससे पहले जो जर्मनी पेरागुए के बीच में मैच था, जर्मनी इज क्वाइट अ स्ट्रांग टीम।
1: मेरे को एक सवाल है फॉर द फीफा लवर्स, मोरक्को का टीम था राइट, लेकिन उनका जो शॉर्ट फॉर्म था ना स्कोरिंग में, वो MAR लिखा था।
4: MAR, ओके,
1: हां तो MAR क्यों लिखा है, MOR क्यों नहीं लिखा है?
4: इंटरेस्टिंग, ये तुम बहुत सारी टीम्स के बारे में पढ़ोगे, यूरोपियन कंट्रीज का तुम बहुत पढ़ोगे, थोड़ा उल्टा सीधा सबका पढ़ोगे तुम ऐसा, जो हमारे समझ के बाहर होगा। कुछ कंट्रीज के नाम भी समझ के बाहर रहेंगे, फॉर एग्जांपल जो कल खेलने वाली है नॉर्वे के अगेंस्ट।
1: कोशिश करेंगे।
4: उसका नाम है कोटे डी लिवोरे।
1: आप ही सही बोल रहे हो, मैं बोलूंगा तो कुछ और ही साउंड करेगा।
4: So it is okay guys. Yeah. इसीलिए शॉर्ट फॉर्म लिखे होते, अब समझ में आया है शॉर्ट फॉर्म।
1: Literally think of the version of
4: तुम तो बहुत ही गलत बोलोगे इसको,
1: इसलिए मैं नहीं बोलूंगा ना।
4: तो तुम्हें ही बोलना होगा इसका स्कोर।
1: भाविया ने मैसेज भेजा है, हमने उनको पूछा कि क्या था, मतलब आपको भी पूछा क्या था फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? ईयर ऑफ ट्रांजिशन फॉर मी।
4: पिछले आवर में हमने पूछा था कि ट्रेंड मेकर्स में हमें कैसे सिंगर के ऊपर आज शो, बैंड के ऊपर एक्चुअली में शो करने वाले हैं। ये जो बैंड है इसे फॉर्म जिस सिंगर ने किया उसी के जिस सिंगर के नाम के ऊपर एक्चुअली इस बैंड का नाम है। विशाल ददलानी भी मैसेज आया, विशाल ददलानी को गौरव हमने कल सेलिब्रेट किया था। हम बात कर रहे थे सनमपुरी के बारे में, सनम बैंड.
1: सनम बैंड, यस, सनम द बैंड और सनमपुरी के बारे में बात कर रहे थे. काफी लोगों ने यहाँ पे सही गेस किया. थैंक यू सो मच.
4: आज सनम बैंड के गाने आप 6 to 7 के बीच में सुनने वाले हैं. थोड़ा सा सुनाना चाहोगे क्या तुम? नहीं सुनाना चाहोगे तो थोड़ी देर में तुम सुनाना चाहोगे कि कैसे गाने साउंड होगा.
1: नहीं पता
4: sound
1: है
4: कैसा
1: उनको
4: होगा?
1: साउंड पता है सैंडी. सनम के
4: मेहनत नहीं करनी है.
1: लिखे जो खत तुझे
4: yeah,
1: वो वाला ऐसा एक गाना
4: है. सब या
1: हाँ, फिर और क्या. मैं फालतू में काम मत करवाओ सैंडी.
4: तुम डालो ना
1: ऑप्टिमिज, मतलब क्या बोलते हैं अपना, ऐसा काम कराओ जो थोड़ा इफेक्टिव भी हो ना, कुछ यूज भी हो. जैसे कि है अपना दिल तो आवारा,
4: ये वाला भी है. और
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर. अच्छा वो बोलना है आपको.
4: अच्छा
1: हाँ, सबको मालूम है. और ऐसे फिर ऐसे टाइप के गाने हैं. समझ
4: तो
1: गया.
4: फुल सनम बैंड के गाने आज आप सुनने वाले हैं. सुपर्ब गाने हैं.
1: इससे तो बेटर ही साउंड करेंगे.
4: ऑफकोर्स 100% यार.
1: ऑलराइट लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस आवर विद मोहित चौहान.
5: हेलो बोलो. हेलो दादाजी.
6: हेलो.
5: अरे वाह, फोकस कर रहे हैं. वेरी गुड. क्या सीन है भाई, कुड़ी पसंद तो नहीं आ गई?

0: मीट ब्रदर्स आपके लिए अलॉन्ग विथ यो यो हनी सिंह एंड अनजान अंकित. आपके लिए था ये बॉस गाना. वैसे आज 4:17 एंड 30th of June वी आर सेलिब्रेटिंग द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर. एंड इसका मतलब ये है कि आज हम यूज कर रहे ये टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ वॉज द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड वॉट कुड यू डू बेटर. मतलब ऐसा अगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सोचना ना, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है जिंदगी में.
1: जो सेल्फ एनालिसिस रिफ्लेक्शन करता है वही आगे बढ़ता है. बट ओवर एनालिसिस नहीं बस करना चाहिए.
0: हाँ, ओवर एनालिसिस.
1: इट्स देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एनालिसिस एंड ओवर एनालिसिस.
0: अच्छा,
1: कई बार ओवर एनालिसिस के चक्कर में आपके प्लान्स धरे के धरे रह सकते हैं.
0: पैर धरे के धरे रह सकते हैं.
1: प्लान्स धरे के धरे रह सकते हैं.
0: या आई हैव एक्सपीरियंस दैट आल्सो. क्योंकि या कंप्लीटली
1: होता है ये 100% होता है. बिकॉज़ आप सोचते हो कि ये नहीं किया तो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो मतलब इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग. देन
0: आप ऐसा सोचते हो कि अगर मैंने ये किया तो फिर क्या ही होगा, तो ये होगा तो उससे क्या ही होगा, तो ये फिर उससे ही क्या होगा. लाइक यू नो, ऐसे करके आप फिर बोलते हो कि छोड़ करके फायदा ही नहीं है. क्योंकि उससे क्या ही होगा.
1: उससे क्या ही होगा, ये होता है. तो इसी से याद आया कि इतना नहीं सोचने का. March 2027 स्पेसिफिकली ये डेट आपको हम बता रहे हैं, ये मंथ आपको हम बता रहे हैं, March 2027. सनसेट्स जो अनरियल है ये हो सकते हैं आपकी लाइफ में, स्ट्रीट फूड हो सकता है आपकी लाइफ में, अ साउंड ट्रैक ऑफ वेव्स, लाफ्टर एंड लेट नाइट स्टोरीज आपकी लाइफ में हो सकता है, अ जर्नी जहाँ पे आपका डे ना एक मूवी सीन की तरह हो सकता है, न्यू फ्रेंडशिप्स हो सकती है. सो या ये सब कुछ आपके लिए हो सकता है ईस्टर 2027 में. स्टे ट्यून्ड ड्राइव शो में 2 जुलाई को. आज 30th हो चुकी है, कल का दिन बाकी है. परसों 2 जुलाई को 5 बजे आपको पता चलेगा कि ये क्या हो सकता है. कुड दिस ईस्टर 2027 बी योर एडवेंचरस ईस्टर? यू नेवर नो. 1 ट्रिप, 2 ट्रॉपिकल वर्ल्ड्स, एंडलेस मोमेंट्स.
0: क्या पता क्या बोल रही है ये यार, हिंट हिंट में पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ.
1: या ड्राइव शो 2 जुलाई 5 PM, सुनते रहेगा आपको पता चलेगा.
0: 5 PM On 2nd of July.
1: Yeah,
0: कुछ होने वाला है, कुछ पता चलने वाला है.
1: कुछ आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में एडवेंचर लेके आ सकते हैं कैसे.
0: Is it worth it to set a reminder, Sandy, for this?
1: Yeah.
0: Yeah.
1: 100% I will say.
0: Okay. So then set a reminder.
1: And don't just hear about it. Be part of it.
0: Oh.
1: क्या tagline ढूंढी है.
0: बहुत ही बढ़िया.
1: Anyway.
0: ठीक है, be a part of this then. थोड़ी देर में आपके साथ हम एक और चीज शेयर करने वाली
1: है. एक और चीज एक्चुअली में, एक मैंने ये भी पढ़ा है रुज़बे, व्हाट्सएप जो है ना अब यूजर नेम्स इंट्रोड्यूस कर रहा है.
0: ओह नो, डोंट, प्लीज डोंट.
1: अरे क्यों, इट्स गुड ना. अगर फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाना है जहाँ पे यू डोंट वांट टू शेयर योर फोन नंबर्स, यू कैन शेयर द यूजर नेम.
0: गुड पॉइंट.
1: सो व्हाट्सएप इज रोलिंग आउट अ मेजर प्राइवेसी अपडेट जहाँ पे यू कैन क्रिएट अ यूनिक यूजर नेम, सो यू डोंट हैव टू शेयर योर फोन नंबर टू कनेक्ट विद अदर्स.
0: बट द प्रॉब्लम विद दैट इज, आई टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम विद दैट इज, द प्रॉब्लम विद दैट इज दैट सडनली अब तुम उसको एनकरेज कर रहे हो. क्या वो जो होते हैं ना वो कीबोर्ड वॉरियर्स, व्हाट्सएप पे भी एनकरेज कर रहे हो अभी आप.
1: नहीं,
0: पहले क्या होता था, लोगों के नंबर होते थे तो थोड़ा ढंग से लोग मैसेज करते, रिप्लाई करते, जो भी करते, क्योंकि उनका नंबर एसोसिएटेड है वो चीज से. उसमें भी लोग फेक नंबर लेकर आके करते चीजें, वो अलग बात है. बट अभी क्या हो रहा है, अभी यूजर नेम ऐसी चीज हो गई है कि कोई कुछ भी यूजर नेम रख सकता है ना. तो उसमें वो एनोनिमसनेस आ जाती है ना, एनोनिमिटी आ जाती है.
1: वो तो आ ही जाती है, बट कुछ जगह पे ये यूज़फुल, अगर इसको तुम सही वे से यूज़ करो तो काफ़ी यूज़फुल है. फॉर एग्जांपल अगर हमें अपना ड्राइव शो का एक ग्रुप बनाना है लेकिन वहाँ पे प्राइवेसी डिटेल्स के कारण आपको अपने फ़ोन नंबर शेयर नहीं करने हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए इट्स अ नाइस थिंग. बट या आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट. वो तो काफ़ी जगह पे होता ही है, लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते हैं.
0: एक्चुअली मैंने एक कंटेंट क्रिएटर का एक देखा था मैंने, जिसने बोला था कि व्हाई डोंट वी डू दिस, व्हाई डोंट वी हैव लाइक बेसिकली आईडी वेरिफिकेशन फॉर सोशल मीडिया अकाउंट्स, बिकॉज दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट ना. फिर आपको पता चलेगा कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है. कौन क्या, मतलब आईडी वेरिफिकेशन फॉर सोशल मीडिया अकाउंट्स. तो जैसे आपको अगर इंस्टाग्राम पे अकाउंट चाहिए, आपको आपका आईडी डाल के पहले वो रजिस्टर करना पड़ेगा. यू कांट हैव अ फेक
1: दैट विल बी अ गुड जॉब. मतलब वो अगर हो जाता है तो मेरे को लगता है कि दुनिया की आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी. बिकॉज अभी काफी लोग जो है सेलिब्रिटी की पोस्ट देख लो यार, तुम सेलिब्रिटी की पोस्ट के नीचे कितने लोग होते हैं जो अपनी ऑथेंटिक आईडी से उनको ट्रॉल कर रहे होते हैं. मतलब मैनी पीपल जो ट्रॉलिंग के पार्ट जो होते हैं ना, जो ट्रॉल कर रहे होते हैं, मैनी पीपल दे लव दिस ट्रॉलिंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ,
0: वो फेक आईडी से करते हैं
1: लोगों के बारे में लिखना, तो वो फेक आईडी से बहुत बार करते हैं. काफी लोग करते हैं ये. सो मेरे को लगता है आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी.
0: या एनीवे ओनली इफ यू आर लीडर्स we would have solved the world problem. We wish.

0: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
1: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
0: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
0: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
4: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
5: Film bilkul fake aur danger ekdam real. India's first 2000 crore fake film Welcome to the Jungle, starring Akshay Kumar, Jackie Shroff, Arshad Wasi, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Disha Patani, Jacqueline Fernandez and many more.
6: Ek zabardast kahani hai.
7: Aur title kya hai film ka?
6: Welcome to the Jungle.
5: Welcome to the Jungle, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.

0: You're listening to Super Se Upar. 4 to 5 तक Super Se Upar हम लेकर आते हैं आपके लिए. उसके बाद Power Drive at 5. और आज याद रखना, आज Power Drive at 5 में हम आपका favorite segment खेलने वाले हैं.
1: Character guess.
0: Character guess. इसमें होता ये है, आज Sandy का turn है. सैंडी सोचेगी एक कैरेक्टर के बारे में और मुझे 5 हिंट देगी और मेरे पास 5 सवाल है. हम ये किसी भी ऑर्डर में खेल सकते हैं और जो सवाल मैं पूछूंगा वो येस और नो वाले सवाल होंगे, जिसका आंसर येस या नो होगा.
1: और रुजबे का साथ आप देंगे, आप मिलके रुजबे के साथ मिलके गेस करेंगे कि मैंने किस करेक्टर के बारे में सोच के रखा.
0: बिकॉज मैं अकेले तो गुड फॉर नथिंग हूँ, ये प्रूव हो गए हैं. तो आपका ही साथ लगेगा, आप ही मदद कर सकते हो, क्योंकि आज तक के सारे हमारे गेसेस हमारे लिसनर्स ने किए हैं.
1: या
0: एक भी गेस ऐसा नहीं है जो मैंने खुद से मेरे सोच के किया हो या आपने आपके सोच के किया हो.
1: एक्चुअली में यू आर राइट,
0: देयर इज ऑलवेज लिसनर्स ओनली,
1: ऑलवेज लिसनर्स
0: आउट. So you have to help us out.
1: Yeah. और साथ ही साथ अभी पार्टिसिपेट करने का वक्त भी आ चुका है. ट्राइविजन इवेंट्स आपके लिए कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव शो लेके आ रहे हैं, द ग्रेट कॉमेडी नाइट. सो ये ऑकलैंड में पहली बार आने वाले हैं 18 July को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. सो आफ्टर पे ऑप्शंस भी अवेलेबल है टू बुक योर टिकट्स फ्रॉम bookmyevent.co.nz. लेकिन अगर आपको टिकट यहाँ पे जीतनी है तो आपको क्या करना है, ड्राइव स्पेस आपको ये लिख के भेजना है कि आपको एक्चुअली में कृष्णा अभिषेक कपिल शर्मा के शो में आते हैं वहां पे उन्होंने कोई एक कैरेक्टर जो प्ले किया होगा.
0: कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर है,
1: कोई एक कैरेक्टर
0: जैसे कि मेरे को पता है. मैं बोलूं एक कैरेक्टर जो मुझे, वो जो जैकी श्रॉफ वाला कैरेक्टर भिड़ू वाला कैरेक्टर प्ले करता है,
1: वो बहुत अच्छा लगता है.
0: वो बहुत सही करता है, एक्चुअली काफी कैरेक्टर्स बहुत सही प्ले करता है.
1: या सो कृष्णा अभिषेक का कौन सा कैरेक्टर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है वो लिख के भेजना है 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ, और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा. इजी डबल पास आपके नाम हो सकता है आज ही,
0: आज के आज डबल पास,
1: आज के आज आपके नाम डबल पास हो सकता है.
0: फटाफट पार्ट लीजिए यार, मेरे को लगता है कि आज पार्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. कृष्णा अभिषेक का आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है, ड्राइव ने कौन क्या कीवर्ड क्या है,
1: ड्राइव कीवर्ड है,
0: ड्राइव कीवर्ड के साथ 5599 पे फटाफट भेज दीजिए.
2: थोड़ा सा हॉल बना दे.

0: एक सिलसिला था, वो कौन सी मूवीज थी इसकी, यू नो मर्डर टाइप, वो सारी जो मूवीज थी वो एक्चुअली में जन्नत,
1: ओ गॉड,
0: वो सिलसिला अभी रीस्टार्ट हो रहा है.
1: लेट्स वॉच दिस टीजर. मुकेश भट्ट प्रेजेंट्स अ विशेष भट्ट प्रोडक्शन.
2: कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती, उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है.
1: I love this song, man. I love your tune. From the makers of Jannat, Aashiqui 2, Gangster, Awarapan.
2: बहुत ही अजीब है, उसने मुझे छुआ.

0: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं
1: तो फिर
2: This looks amazing, yeah. This
3: it
2: looks
3: does
2: fabulous.
3: Looks amazing.
2: You're listening to Hum, yaar. Kya ye gana hai? Matlab kya ye pura movie hai?
3: Pura oh movie God. And the beautiful part is, guys, ki 2007 ki jo movie khatam hoti hai, wahan se ye movie shuru hoti hai 2026 ki. So, Ooh. Shivam is back.
2: 14th August ko ye cinema mein aane wali hai. And I am particularly very excited. Mere friends, bachpan ke dost sare reactivate ho gaye hai. Kyunki ye movie humne, meri yaade is movie ko lekar उस टाइम की है
3: उस टाइम की है और गाने भी मेरे को लगता है ये गाने बहुत लूप पे सुने हुए हैं
2: अरे बहुत
3: सो इट्स काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया फीलिंग जब इसका हमने ट्रेलर देखा है अवारापन टू वेरी एक्साइटेड
2: आई एम ग्लैड दैट द ओल्ड सॉन्ग्स हैव बीन केप्ट लाइक यू नो तो फिर आओ वो तो आइकॉनिक सॉन्ग्स
3: सिग्नेचर गाना है ना वो तो रखना ही था बट और भी वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स इसमें डेफिनेटली रहने वाले हैं एंड या सो शिवम इज बैक शिवम जो है यू नो 2007 में एक गैंगस्टर का रोल उसने किया था जहाँ पे वो अपने बॉस के साथ बाद में आशुतोष राणा के साथ वो बदला लेता है सो बिकॉज़ उसका
2: एंड में मर जाता है
3: एंड में हाँ
2: मतलब ऐसे दिखाया है वो टाइम पे
3: दिखाया लेकिन he's back
2: तो अगर मिहिर वीरानी कैन बी बैक देन व्हाई कांट
3: व्हाई नॉट शिवम
2: शिवम
3: Nice
2: you know,
3: यार.
2: This is so strange, Sandy. तो मैं आपको मेरे एक दोस्त की कहानी बता रहा था ना जो आवारापन उसको बहुत ही मतलब एकदम ही उसको अपनापन लगता था आवारापन देख के उसका नाम शिवांग था मतलब है
3: ओके
2: एंड शिवम के साथ वो बहुत रिलेट कर पाता था उस कैरेक्टर के साथ लाइक यू नो रिबेल और से गलत काम कर रहा है पता है गलत काम है लेकिन फिर भी कर रहा है बट दूसरों का भी अच्छा कर रहा है यू नो लाइक वेरी सिमिलर लाइक लाइंस वर वेरी सेम
3: ओके ओके
2: नॉट दैट ड्रामेटिक
3: एज
2: अ गैंगस्टर नहीं था वो बट ही लाइक यू नो दैट एंड देन ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बीइंग अ मॉन्क
3: ओ क्या बात कर रहा
2: सो
3: विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इसमें शिवम को क्या हुआ
2: इसमें पता नहीं शिवम क्या कर रहा है लेकिन मेरे दोस्त का जो शिवांग है उसका तो ट्रांसफॉर्मेशन एकदम मॉन्क वाला हुआ है
3: उसको बताना ये भेजना उसको ये टीजर ये टीजर आया है अभी तक
2: सब एक्टिवेट हो गए बोल रहे कि टाइम टू गेट आवर शिवम बैक
3: यस
2: बट लेट्स सी नाउ आई थिंक ही इज गॉन फार अहेड
3: या 100% एनीवे ये जो मूवी है अभी 14th अगस्त को रिलीज होने वाली है
2: जी 14th अगस्त को इट्स गोइंग टू बी मैसिव ये मतलब थोड़ा कंपटीशन क्योंकि और एक कोई मूवी 14th अगस्त को रिलीज हो रही है अल्फा तो भी हो रही है कोई तो एक बड़ी मूवी 14th अगस्त को रिलीज हो रही है
3: बटवारा कब आ रही है
2: बटवारा
3: आई थिंक बटवारा
2: बटवारा
3: डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस आई विल से
2: 100% या
3: आवारापन 2 विल हैव अ वेरी डिफरेंट ऑडियंस एज कंपेयर टू अदर मूवीज एंड यहां अमाल मलिक का म्यूजिक आने वाला है इसमें अमाल मलिक के गाने हैं
2: ऑफ कोर्स नो वंडर वी आर सो क्लोजली अटैच्ड टू दिस मूवी बट या आवारापन 14th अगस्त को होपफुली इट विल बी इन सिनेमास एंड आई थिंक दिस मूवी विल बी दैट सैंडी एंड आई विल वॉच फर्स्ट डे
3: 100%
2: फर्स्ट डे लास्ट शो और सेकंड लास्ट शो
3: जो भी अवेलेबल रहेगा टाइमिंग
2: ऑलराइट सो वी विल टॉक मोर अभी के लिए आपको एक गाना सुनाते हैं

0: पर ब्रॉट टू यू बाय रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स लिमिटेड.
1: हम एक्यूरेट ट्रैफिक.
2: लव दैट चिकन फ्रॉम पॉपाइज.
3: A low of 6 and mostly clear, and it's like all the drives out of town are having a competition to see which one has the worst traffic, because it's a shambles everywhere right now. On the northwestern, there's heavy patches to Lincoln Road. It's just under 55 minutes out of town to Massey. And on the southern at the moment, there's heavy patches to Drury. It's just under an hour 15 to Drury from town, and just over 50 to Manukau.
2: 3 crispy drumsticks and regular fries for just $9.90 at Popeye's Chicken this week.
4: There are easy ways to save up to $500 on power bills this winter, like only heating the rooms you're actually using, by shutting doors and blocking sneaky gaps, or turning off appliances that aren't in use, especially the ones you might have forgotten were even on. Or by checking if an off-peak plan is right for you, to make the most of when power's cheaper. For more winter saving advice, visit eeca.govt.nz.
5: Farmers Lingerie Week is now on, with 25% off women's lingerie, including Burley, Triumph, Fendon, Jockey, Bonds and more. Plus, earn double Farmers Club points on all lingerie brands. Farmers Lingerie Week is now on. Conditions and exclusions apply.
6: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी supermarket से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
8: Woolworths has savings in every aisle, like Huggies Bulk Pack Ultra Dry Nappies 30 to 54 pack, any two for $32, and 350ml Dove Shampoo or Conditioner, just $4.79 each. Woolworths Weekly Specials. Now that feels good. T's and C's apply.
0: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
9: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. David Seymour is firing back at an Auditor General's report on the school lunches program. It raises concerns about a lack of mechanisms for tracking value for money, wastage, and claims only half of lunches met nutrition standards when assessed in 2025. However, Minister Seymour says the report favours process over outcomes and acts as a rearview mirror around teething issues that have already been addressed. The red meat sector is booming after hitting a second consecutive monthly high. Exports jumped to $1.6 billion in May, 44% higher than last year. Meat Industry Association's Nick Beebe says the rise was across the board.
10: Beef in the US, the demand there has been quite exceptional, and sheep meat has other areas around the world which has also shown significant growth.
9: What's being described as a truckload of cannabis has been pulled from 17 West Auckland rentals. Police found more than 1,500 plants in the suburban bust, adding up to more than a ton. Christchurch Airport is marking 75 years since its first scheduled international flight departed. The DC-4 Skymaster left for Melbourne, taking 6.5 hours to cross the Tasman. Back then, it was a once-a-week service, carrying around 40 passengers. To sport, more sudden death drama at the FIFA World Cup. This from TVNZ Plus.
11: Saibari up against Verbruggen. It's Saibari! And history does repeat itself!
9: Morocco have eliminated the Netherlands, winning a penalty shootout 3-2 after the team were level 1-1 at the end of extra time. It follows Paraguay ousting Germany in the same fashion, while Brazil scored late to beat Japan 2-1. Football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari good brands me hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: Aaj ka overnight temperature 5 degree tak hone wala hai aur kal ka overnight 4 degree. Tomorrow is going to be the coldest night in the week.
14: Recent time mein
13: 4 degree tak ho sakta hai. Aaj hi mere ko lag raha hai ekdam ek kadake ki thand hone wali hai raat ko. Abhi ke liye feels like 13 degrees.
15: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
16: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rusby.
17: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge. Ow!
13: 5:02 हुए हैं एंड यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे. आज है 30 जून. हाय सैंडी, गुड इवनिंग.
14: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग. और आज एक गेम भी खेलने वाले हैं आपके साथ. मैंने अभी तक सोचा ही नहीं, मैं कुछ और ही काम करने में लगी थी.
13: ओह माय गॉड, कैरेक्टर गेस.
14: इट्स टू मच टू डू. या
13: वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट गेम्स है ये सैंडी,
14: कैरेक्टर गेस. हम दो गानों के बाद खेलने वाले हैं.
13: दो गानों के बाद?
14: हाँ, बिकॉज एक छोटे छोटे काम है ना साथ में रुस्बे करने होते हैं.
13: सोचना भी है ना आपको.
14: और सोचना भी है. सो कैरेक्टर गेस में क्या होगा ना गाइस, आज मैं एक कैरेक्टर के बारे में सोचूंगी. और
13: एक मिनट आप मत एक्सप्लेन करो, कोई किसी को बोलो ना एक्सप्लेन करने को, ताकि हमें पता भी चले ना कि कोई सुन रहा भी है क्या.
14: किसी ने आज तक अगर ये गेम खेली है कैरेक्टर गेस हमारे साथ, तो अगर आपको इस गेम को एक्सप्लेन करना है किसी और को, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे वो आज आप यहाँ पे शेयर कीजिए. सो 0800 हम पर कॉल करके
13: 0800-004-866 आपको कॉल करके शेयर करना पड़ेगा कि कैरेक्टर गेस में एक्चुअली में होता क्या है. चलो ठीक है, कॉल आ गया है. हेलो, कैसे हो आप?
18: बढ़िया, आप कैसे हो?
13: बहुत टाइम के बाद आपकी आवाज़ सुनी है.
18: आप कहाँ हमारा फोन उठाते हो आजकल?
13: आप फोन ही नहीं करते हो कि कैसे फोन उठाए हम?
18: आप तो बड़े लोग हो गए हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो. बड़े लोग बातें,
14: बड़ी बातें.
13: लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम अभी हुए हैं बड़े लोग?
14: रुस्बे तो पहले आपने मेरा फोन
18: उठाना छोड़ा
13: ना. नहीं यार, ऐसे थोड़ी पर इधर. आप जब भी कॉल कर, आप जब भी कॉल करते मैं आंसर करता हूं.
18: रावण के परिवार से हो? रावण पैदा होते ही बड़ा हो गया था ना. आप रावण के परिवार से?
14: सही है.
13: देखो रावण को भी कहीं कहीं पूछते हैं.
18: हाँ, मतलब मुझे बताया था किसी ने कि ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, और उसने पहला हवाई यंत्र बनाया था.
13: हाँ, ये सोच के आप मुझे रावण बोल रहे हो क्या, रावण के फैमिली से?
14: एक्चुअली ही वाज क्वाइट अ लर्नड पर्सन, काफी चीजें सीखी थी.
13: वो बहुत बड़े भक्त भी थे,
14: शिव जी के
13: भक्त है. और जब भी वो, मतलब जो पूरा कंसेप्ट है ना दिवाली बनाने का, मैंने कहीं तो भी ये सुना है कि इट्स एक्चुअली लाइक व्हेन लॉर्ड राम लाइक डिड दैट, ही वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े शिव भक्त को ये किया था, मतलब उनको करना पड़ा था वो. ऐसा कहते हैं, अभी पता नहीं है, मेरे को मत होल्ड करो इस सब के लिए.
14: ऐसी कहानियां सुनी है.
13: हाँ वो तो है, आशिक तो, आशिक से ज्यादा मेरे को लग रहा है अहंकार के कारण.
14: ऐसा ईगो जो ऐसी वॉर्स करवाती है ना आज के टाइम पे भी हो तब भी.
13: एनीवे परविंदर जी एक्सप्लेन कीजिए ना यार, ये क्या है कैरेक्टर गेस?
18: आप लोग हिंट्स दोगे, क्वेश्चन कर सकते हैं और हिंट्स भी होंगे, एंड देन वी हैव टू गेस के कौन सेलिब्रिटी है. और 5 हिंट्स देंगे आप लोग?
13: जी 5 हिंट देंगे और 5 सवाल पूछने का मौका मिलेगा.
18: हाँ, तो ऐसे हमें गेस करना है. कभी कभी मतलब मैं कहना चाहती थी कि ना ट्राई टू कीप इट इन इंडिया, मतलब इंडिया के हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बाहर का ना फिर मैं सोच ही नहीं पाती हूँ कि कौन हो सकता है.
13: बट यही तो है ना कि हम हमारा नॉलेज उसको एक्सपांड कर रहे हैं, हमको अलग अलग चीजों, अलग अलग जगहों की चीजें पता चलेगी.
18: अब मैं बुढ़िया हो गई, मुझे और एक्सपेंड नहीं करना है, हो गया बहुत.
13: ओके चलो ठीक है, तो अभी सैंडी को आज गेस करना, सैंडी को आज रखना है, सिलेक्ट करना है, सोचना है कैरेक्टर के बारे में. कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करता हूँ फनी डालने की.
18: आरज़ू बढ़ती जा रही है. अरे नहीं, आरज़ू बढ़ती जा रही है.
13: नहीं, मैं कोशिश करता हूँ फनी रखने की, बट पता नहीं आपको जोक ही नहीं समझ आ रहे हैं मेरे को लग रहा है.
18: फिर वो आपके लेवल के जोक होंगे ना बड़े लोग,
13: वो मुझे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, मेरे को थोड़ा भी ये करना पड़ेगा. एनीवे काफी लोगों ने गेस कर लिया कि आज सैंडी किसके बारे में सोचने वाली है.
14: ऑलरेडी गेस कर लिया है,
13: ऑलरेडी गेस कर लिया है. बट थैंक यू परविंदर आपके कॉल के लिए. थैंक्स यार,
14: बाय
18: बाय
13: भाई. तो
14: ये जिन्होंने बोला है ये तो बोल सकते हैं ना. बिकॉज ये तो मैं थक गई हूँ ऑनेस्टली. एक टाइप पे मैं इतना थक गई थी मैंने इस पर्सन के बारे में बात करना बंद कर दिया.
13: मेरे को पता है.
14: इट डज अफेक्ट यार बिकॉज आई एम वेरी वोकल अबाउट इट. सलमान खान इन्होंने लिखा है.
13: सलमान खान लिखा है
14: मतलब सीरियसली कि बिकॉज आई एम वेरी वोकल ना.
13: प्लीज यार
14: मेरा फेवरेट देखो अभी मेरा फेवरेट एक्टर कौन है. मेरा फेवरेट सिंगर कौन है. मेरा फेवरेट कंपोजर कौन है. मेरी फेवरेट डायरेक्टर कौन है. मेरी फेवरेट मूवी कौन है. सबको पता है ये.
13: सबको पता
14: मैं
13: है.
14: इतने साल से रेडियो में हूँ
13: तो वो नहीं हम वो नहीं गेस करे मतलब वो हाँ. नहीं सैंडी सोचेगी.
14: वो नहीं सोच सकती.
13: इतना इजी नहीं करती है सैंडी हमारे लिए.
14: या
13: एनीवे थोड़ी देर में आपके साथ खेलेंगे. अब कैरेक्टर गेस. अभी के लिए गाना सुन लेते हैं.
19: शादी कर सकते हैं.
20: क्वीन विक्टोरिया.
19: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप. तो वैसे ही लगेंगी. मलिका तिलफरेब.

0: रित पाठक की आवाज सुन रहे थे आप जलेबी बाई, और अब टाइम आ गया है आपके साथ हम खेलेंगे ये कैरेक्टर गेस। राइट, कैरेक्टर गेस का टाइम शुरू हो गया है। सैंडी, आर यू रेडी?
1: यस।
0: ओके, सो आज सैंडी हमें कैरेक्टर देने वाली है। इस कैरेक्टर ये कोई भी हो सकता है। इसके अराउंड सैंडी हमें 5 हिंट देगी इन एनी ऑर्डर, एंड देन वी हैव 5 क्वेश्चंस टू आस्क। और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो यस या नो वाले क्वेश्चंस होंगे, मतलब उसका आंसर आइदर यस हो सकता है या नो हो सकता है।
1: या सो हाँ या ना में बस आपको यहाँ पे जवाब देना होगा। सो मेरा सबसे पहले आपके लिए जो हिंट है ना इस पर्सन के बारे में वो ये है। ओके, मैं वो सोच रही हूँ कौन सा वाला पहले। तो
0: ये
1: थोड़ा ट्रिकी हो जाता है।
0: बट इन द मीनवाइल आई वांट यू टू प्लीज पार्टिसिपेट 0800-004-866। आपके पार्टिसिपेशन के बिना, आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना आई विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट।
1: सो पहला हिंट रेडी है? ठीक है, पहला हिंट ये है, दिस पर्सन सेज माय फैशन सेंस वाज नॉट राइट, कॉन्फिडेंस जस्ट राइट।
0: My fashion sense was not right.
1: Yeah, but confidence always on point. Was Ooh, always right.
0: My God, there are quite a few names that pop up in my head now. Fashion sense. Oh God, matlab ye.
1: My fashion sense was not right. Confidence just right, just on point.
0: अच्छा, तो सवाल पूछना,
1: लेके चलो
0: सवाल पूछना चाहिए।
1: इतना सही नहीं था लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ा सही था।
0: देखो सवाल पूछ सकते हैं कि
1: कॉल कीजिए
0: यहाँ पे
1: 0800-004-866। और ऐसे करेक्टर्स हम यहाँ पे लेके आते हैं जस्ट टू लेट यू नो, जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है, मैक्सिमम लोगों को जिसके बारे में पता होता है। तो हम कोशिश करते हैं ऐसे करेक्टर्स लेके आने के लिए।
0: पार्थ ने बोला है नवाजुद्दीन।
1: कोई भी हो सकता है।
0: मेरे मन में जब फैशन सेंस की बात होती है नॉट राइट और ये सब, बट कॉन्फिडेंस सही, मेरे को मेरे मन में एक ही आता है, रणवीर सिंह।
1: ओके,
0: दैट इज वन नेम दैट पॉप्स अप। के फैशन सेंस मे बी नॉट ऑन पॉइंट बट कॉन्फिडेंस इज ऑन पॉइंट। अनदर वन सच इज करण जौहर। बट नाउ आई एम गेटिंग टू मच इनटू बॉलीवुड। आई थिंक आई हैव टू वाइडन द स्कोप। देखो रणवीर, पूजा ने भी बोला रणवीर सिंह, देखा।
1: बट रणवीर सिंह ऑन द अदर हैंड, अगर आप सोचा हो एक और पर्सपेक्टिव रखूंगी कि कईयों के लिए उसका फैशन सेंस इज लाइक ऑन पॉइंट। जो वो कपड़े पहनता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी द वे रणवीर सिंह कैरी।
0: नोबडी थिंक्स दीपिका की साड़ी जब वो पहनता है वो ऑन पॉइंट होता है। प्लीज
1: पॉइंट है।
0: हाँ, सो 0800-004-866 गिव अस अ कॉल ओवर हियर एंड व्हाट डू यू थिंक शुड बी द फर्स्ट।
1: एक सवाल पूछ सकते हैं या फिर एक और मैं हिंट दे सकती हूँ आपको, क्या चाहिए आपको?
0: हाँ, क्या चाहिए ये भी बता सकते हो आप।
1: हिंट आपको चाहिए या फिर आपको सवाल पूछना है?
0: चलो एक हिंट दे दो सैंडी।
1: एक और हिंट दूं मैं। तो पहला था कि माय फैशन सेंस वाज नॉट राइट बट कॉन्फिडेंस जस्ट राइट। ठीक है, सेकंड हिंट इज I became famous without saying much.
0: I became famous without saying much.
1: Yeah.
0: Oh, I think I know who this is. Okay, so question time. Because अभी कोई पूछ रहा नहीं है तो मैं ही पूछूंगा question. Is this person? Is this person in Bollywood? Or related to Bollywood, basically?
1: No.
0: What?
1: Bollywood is out now.
0: It's not related to Bollywood also?
1: No.
0: Associated to Bollywood?
1: तुम्हारा सवाल जो था वो गया ना।
0: अरे बट मतलब उसका
1: पर्सन इज नॉट रिलेटेड टू बॉलीवुड। या
0: क्या बात कर रहे हो यार, ये मेरे लिए तो फुल टॉस हो गया फिर अभी ये।
1: सो अगेन नाउ गाइस, बॉलीवुड गया इससे बाहर।
0: ही पार्थ ने बहुत अच्छा बोला है।
1: माय फैशन सेंस वाज नॉट राइट, कॉन्फिडेंस जस्ट राइट। सेकंड इज आई बिकेम फेमस विदाउट सेइंग मच।
0: ओके दिस इज वेरी गुड। पार्थ ने जो भेजा है मेरे को उसके अराउंड एक और है।
1: तो कॉल करो कोई, एक्चुअली रुज़बे तुम रुको, कॉल करो कोई ना।
0: या, कोई कॉल,
1: क्योंकि अगर तुम कहीं पे पहुंच रहे हो बट यू वांट अदर्स आल्सो टू रीच अलोंग विद यू।
0: दैट्स राइट। तो 0800-004-866 वी नीड योर कॉल। या कोई कॉल करे और कोई बताए तो मजा आए ना.
1: या फिर कोई हिंट पूछो आप, कोई ऐसा सवाल पूछो आप.
0: हाय, आपका स्वागत है.
2: हाय रुस्बे.
0: हाय
1: पार्थ. या पार्थ,
0: बोलो पार्थ.
2: कॉमेडी का पूछ लो तो जो मैंने आंसर दिया है वो शायद
0: कॉमेडी से रिलेटेड है क्या, ये ऐसा पूछ सकते हैं. ये अच्छा सवाल है.
1: और पूछो, पूछो.
0: ये ऐसा कर रही है, मतलब ये इसका आंसर नो रहने वाला है.
2: देखो अगर लगता नहीं है कि
0: है. वही लग रहा नहीं है ना. है
1: ऐसा क्यों लग रहा है पार्थ?
2: जिस तरह से आपने बोला पूछो पूछो जल्दी से एक सवाल खत्म हो जाए ना.
0: हाँ वही तो. ये
1: क्या मतलब एक्टिंग कर रही हूँ ऐसे.
2: ये भी एक अलग हिंट मिल गया हमें.
0: एक और सजेशन लेते हैं पार्थ. एक मिनट. हाय आपका भी स्वागत है. हेलो.
1: वो गए.
0: अरे चले गए ये. यार ये तो बहुत गलत कर दिया हमारे साथ. एक काम करते, कुछ मैसेजेस सुनते
1: तब इतनी जल्दी.
0: अच्छा ठीक है, इनसे बात करते. हाय. हेलो, आपका स्वागत है. हाय.
3: हेलो, मेहुल बात कर रहा हूँ मैं. रुस्बे कैसे हो आप?
0: बहुत ही बढ़िया मेहुल, आप कैसे हो?
1: आप लगता है कि सिर्फ करेक्टर गेस के टाइम पे ही कॉल करते हो.
3: तो मुझे सवाल पूछना है ना.
0: हाँ बोलो पूछो.
3: तो
0: मेरे को पूछो.
3: ये पर्सन जो है किसी वियर्ड वियर्ड फैशन के लिए ट्रोल हुए.
0: वियर्ड फैशन के लिए ट्रोल हुए. आप किसके बारे में सोच रहे हो? आप मेरे साथ यहाँ पे खुल के बात कर सकते हो.
3: तो मैं आंसर दे सकता हूँ क्या?
0: हाँ हाँ, आप मेरे को
1: रुस्बे के साथ सब डिस्कस कर सकते
3: हो.
0: उर्फी जावेद बट बॉलीवुड से रिलेटेड नहीं बोल रही है वो. यार उर्फी जावेद बॉलीवुड से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, राइट ना? या ओके. तो उर्फी जावेद, मेरे को लग रहा है अपने को इंडिया के बाहर सोचना पड़ेगा.
3: ओके.
0: थोड़ा सा ग्लोबल.
3: चलो कोई नहीं, मेरा तो इतना नहीं है नॉलेज इसमें.
0: हाँ
1: कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं,
0: कोई नहीं, कोई तो होगा आज जो हमें थोड़ा नॉलेज इम्पार्ट करेगा. एनीवे,
1: सो फार यू नो दिस थिंग की ऑल गुड. थैंक यू. सो फार आपके पास ये हिंट्स है कि माय फैशन सेंस वाज नॉट राइट, कॉन्फिडेंस जस्ट राइट, ऑन पॉइंट. तुमने क्या पूछा, बॉलीवुड से रिलेटेड है कि नहीं? मैंने बोला नहीं, बॉलीवुड से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है.
0: और एक और हिंट आपने दिया था ना.
1: मैंने हिंट दिया, आई बिकेम फेमस विदाउट सेइंग मच.
0: ओके दैट्स वेरी कूल.
1: तो तीन चीजें सो फार आपको पता है.
0: और दो सवाल, एक सवाल और दो.
1: एक और सवाल पूछो ना तुम.
0: एक और सवाल पूछूं?
1: हाँ ये अभी एक ही सवाल पूछो ना.
0: पूछ लेता हूँ कि इज इट, इज दिस पर्सन रिलेटेड टू कॉमेडी?
1: दिस पर्सन इज यस रिलेटेड टू कॉमेडी. Now, थोड़ा सोचो और मैसेजेस सुनो.
0: ओके ओके, लेट्स हियर सम मैसेजेस. आई विल सी यू बैक. रोवा पे अगर आप हमें सुन रहे हैं, अगर अभी आपने ये सुना है तो कॉल कीजिए यहां पे 0800-004-866. गिव अस अ कॉल एंड टेल अस व्हाट यू आर थिंकिंग.
4: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी.
5: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे.
6: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं.
7: Accurate traffic.
8: Book your ski G trip today.
9: Mostly clear with a low of 6. Now on the southern, there has been a crash just after the State Highway 20 to State Highway 1 link heading southbound with the right lane blocked, so do expect delays there. Right now it's about a 15-minute drive out of town to Manukau on the southern, and pretty much everywhere else is still looking shambolic, especially the northwestern. It's just under 50 out of town to Massey.
8: To book your next ski G trip to Vancouver or Japan, go to FijiAirways.com.
10: If you're looking for premium comfort, head into Beds. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively at Bezeres, Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
11: Bunnings Trade is here to help get insulation jobs sorted. Save time and money with Earthwall Glasswool R7.0. It's quick and easy to install in a single layer, meeting H1 ceiling compliance. Call 0800 134 872 to arrange a quote and easy on-site delivery at Bunnings Trade.
12: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
13: TradeDepot.co.nz.
14: Global phenomenon returns.
15: You are the queen of dragons. You have absolute power within your grasp.
16: I'm going to kill my brother or die in the attempt.
14: Watch the series the world will be talking about.
17: There will be no doubt who the gods have chosen to rule.
15: This is the moment you become queen.
14: HBO Original House of the Dragon. Stream now only on HBO Max.
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800 233 111. Indelible Homes, your building expert.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आज character guest में बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल है यहाँ पे क्योंकि Sandy ने हमें अब तक के लिए दो hints दिए हैं और
4: दो
3: हमने
4: hint दिए हैं. मैंने बोला था पहला hint my fashion sense was not right but confidence just right. Second hint मेरा रहा कि I became famous without saying much.
3: और हमने सवाल पूछा कि क्या ये Bollywood से related है, उन्होंने बोला नहीं. और क्या ये comedy से related है, तो उन्होंने बोला हाँ.
4: So, third hint.
3: Now we have a few options available, but now we listen to the third hint. It's going to be very
4: Phir
3: important.
4: Aap narrow down karna, okay?
3: Yeah.
4: My third hint is, I fought a dictator by becoming him.
3: Kya?
4: I fought a dictator by becoming him.
3: Oh my God, I know this is kind of my favorite wala. Ek minute, hamare sath yahan pe Kevin jude. Kevin, aapko kya lag raha hai, abhi bhi wohi answer hai jo aap soch rahe the pehle ki koi aur ho sakta hai?
5: Hame to laga wohi hai.
4: Tum Google nahi kar sakte us pe.
3: Google nahi karna allowed hai.
4: Na Google kyun kar rahe ho tum?
3: Okay, sorry, Google nahi kar sakte.
4: Yeah,
3: okay. तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे पता चल गया कौन है, लेकिन मेरे को उसका नाम नहीं पता. मैं उसको अलग नाम से बुलाता हूँ. बट आप सोचो ना,
4: सुनो. हाँ, आई फॉट अ डिक्टेटर. इस पर्सन के बारे में है. आई फॉट अ डिक्टेटर बाय बिकमिंग हिम.
3: या मेरे को समझ में आ गया. ये हिंट बहुत क्लियर है मेरे लिए. मैं ये बार मेरे को लगता है मैं गेस कर सकता हूँ.
4: आर यू श्योर?
3: मुझे लग रहा है कि ये वो कैरेक्टर है. आपको वो पता है क्या, अल्लादीन वो बोराट वाला बंदा जो है ना, जिसने एक मूवी बनाई थी डिक्टेटर. मुझे लग रहा है ये वो बंदा है. केविन आप हो गए, आप चले गए. आपको याद है, आपको पता है ये मैं कौन सी मूवी की बात कर रहा हूँ?
5: हाँ बोराट.
3: हाँ, वो वाला जो बंदा है ना, वो एक्टर.
4: तो उसके ऊपर सारे हिंट सूट हो रहे हैं क्या?
3: वो कॉमेडी है, कॉमेडी करता है वो काफी.
4: आई बिकेम फेमस विदाउट सेइंग मच,
3: ये थोड़ा नहीं मैच हो रहा है उसमें.
4: तो यू हैव टू मैच एवरीथिंग ना उसमें.
3: यार कोई और कोई सोचने है, सोचना क्यों नहीं है?
4: देखो ओवर एक्साइटेड हो गया ये.
3: यार ये ज्यादा कंफ्यूज कर दिया यार अभी इसने.
4: तो कोई सवाल पूछो. तीन हिंट दिए मैंने ना.
3: कॉमेडी भी बोल दिया हमने. हाँ बोल दिया आपने.
4: कॉमेडी में मैंने हाँ बोला. या कॉमेडी 100%.
3: इनसे भी बात करके देखते हैं. हाय, आपका स्वागत है.
6: हाय रिज़बे. हाय
4: Sunday. Hi.
3: बोलिए क्या नाम है आपका?
6: I texted the answer. I think that's the correct one.
3: क्या text?
6: Look alike dictator.
3: क्या?
6: Can I answer it?
3: हाँ बोलो.
4: हाँ बोलिए.
6: Charlie Chaplin
3: ना.
4: मेरे को. और ऐसा क्यों आपको लग रहा है?
6: Look and Charlie Chaplin.
3: हाँ, looks like you know मूछ वैसी लगी थी ना. हाँ, और वैसा कुछ
4: इस रीजन से आपको लग रहा है
3: ये सही? आप सही बोल रहे हो.
6: His comedy was all mute comedy.
3: वही अभी अपन next question मेरे को लगता है mute वाले आप पूछते हैं.
6: बोला ना I become famous without saying much.
3: हाँ वो मैं agree करता हूँ. Point बोल रहे हो आप. एक मिनट इनसे भी बात कर लेते हैं. Hi, आपका भी स्वागत है.
7: Hello.
3: जी हाँ.
7: I think I know the answer.
3: Bola.
4: Sure, go for it.
7: Is it Rowan Atkinson?
3: मैंने भी वही सोचा था, रोवन एटकिंसन, मिस्टर बीन. बट प्रॉब्लम ये है कि वो उसने वो डिक्टेटर वाला क्या फंडा किया है उसने?
7: या वो मालूम
3: नहीं. वही वो अपने को नहीं समझ में आ रहा है. मेरे को लगता है मेरे पास I have a question now to ask.
4: Yeah, good.
3: So the question is, Sandy, मुझे लगता है आप बताओ आपको क्या लगता है ये question. मैं Sandy को नहीं, पहले आपसे बात कर रहा हूँ. आपका नाम क्या है? Sorry.
7: I'm Sandy too. That's why I said
3: you are also Sandy.
4: अरे वाह.
3: Okay. Over the phone.
4: Sandy calling Sandy.
3: Okay. So yeah. Sandy, आपको ये पूछ रहा हूँ मैं ये वाली Sandy को. फोन वाली सैंडी को कि मैं ऐसा पूछू कि ब्लैक एंड व्हाइट मूवी में इन्होंने काम किया है या ऐसा कुछ, ऐसा क्या लगता है, ऐसा कोई सवाल, समथिंग अराउंड दैट. या
4: गुड क्वेश्चन.
3: ये गुड बोला है. बताओ मैं नहीं पूछ रहा हूँ.
4: तुम लोग क्यों बज रहे हो?
3: सैंडी एक मिनट होल्ड करना. अरे चली गई वो.
4: इट्स वेरी गुड क्वेश्चन यार.
3: एक मिनट इनसे भी बात कर लेते हैं. हाय.
4: ट्रस्ट ही नहीं है.
8: Hi, Rusbe, how are you?
3: Very good. You see, I am in stress right now. So, not very good.
8: Yeah. Is the person Zelensky?
4: Is this person?
3: Zelensky.
8: Zelensky.
3: क्यों ऐसा ज़ेलेंस्की आपको मतलब ये कॉमेडी से क्या मतलब
8: he was a comedian
3: अच्छा
8: and he is a dictator
4: so the hint is जो मैंने बोला ना I fought a dictator by becoming him
3: यार मेरे को पता नहीं क्यों ये
4: अगर
3: वो
4: अगर आप चाहती हो मैं एक और हिंट दे सकती हूँ मैं तीन ही हिंट दिए ना मैंने पांच हिंट होते हैं
3: तो दो यार थोड़ा हिंट दो
4: है ना
3: हिंट दो.
4: एक और हिंट देती हूँ चलो ठीक है
3: एक मिनट होल्ड कर इनसे भी बात कर लेते हैं हाय
9: नमस्कार
3: क्या लगता है आपको क्या है
9: चार्ली चैपलिन
3: बोल रहे हो
4: क्यों ऐसा लग रहा है आपको
9: क्योंकि he acted as a हिटलर का डिक्टेटरशिप तरीके And you said that he is a comedian.
3: Yeah.
9: ને બીજું કે એ dumb acting કરતો હતો એટલે dumb not dumb એટલે મોના
3: મોગો
9: not
4: mute
9: he was a silent actor.
3: Yeah. Yeah you're right. મતલબ મેં કહેવા લાગતા
9: ચાર્લી ચેપ્લિન જ લાગે છે યાર
3: એક ઓર હિંટ last hint.
4: Okay.
9: હા અચ્છા last hint up.
4: ચોથા હિંટ આયે fourth hint is
3: fourth hint
4: I became a legend because people understood me in every language.
3: Yeah. This is correct.
9: It's sign language, ma. Yes, eno sign language nahi hoto, pan eno dumb language hoto. It means he was not speaking.
3: Yeah. It was all acting.
4: तुम्हारी
3: तो वो क्वेश्चन वही है कि ब्लैक एंड व्हाइट में इनको ज्यादा देखा है क्या मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में देखा है
4: यस
3: ऑलराइट ओके सो या आई थिंक द राइट आंसर इज देन मुझे ऐसा लग रहा है चार्ली चैपलिन पता नहीं क्यों इतना स्ट्रेस होता है भाई
4: इसे I know and I give you this thing कि चार्ली चैपलिन ने 1940 में एक मूवी की थी जिसका नाम था द ग्रेट डिक्टेटर ही प्लेड पैरोडी ऑफ हिटलर उसमें ही प्लेड अ सेकंड करेक्टर आल्सो एक हम्बल जूइश बाबर सो अपनी कॉमेडी के थ्रू उसने उस समय पर उस आइडियोलॉजी के ऊपर उसने मॉक किया था At that time, when many people were very afraid of Hitler, wo sab dard ka mahol, wo sab cheeze, he openly did this.
3: That's so cool.
4: So that's why he fought basically a dictator by becoming him.
3: Thank you so much, Arvind.
9: I thought first was Robin Williams.
4: Robin Williams, he's a great actor.
9: She started, but then she talked about dictatorship or whatever the dictator ka acting kiya. So Hitler mere ko hit kiya.
4: और भी मेरे पास बड़े अच्छे हिंट थे मेरे पास ना एक ये हिंट भी था कि वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस होमलेस जेंटलमैन एंड स्टिक की जरूरत नहीं थी लेकिन हमेशा स्टिक के साथ ये चला
3: दैट्स राइट दैट्स एक्चुअली वेरी गुड वेल डन यार सैंडी इनसे भी इनको भी थैंक यू बोल देते हैं थैंक यू आपका भी साथ के लिए केविन
10: या नो वरी

0: मैसेजेस आए हैं।
1: चार्ली चैप्लिन एक्चुअली में रुस्बे पहले
0: सबसे पहले गेस हो गया था, ये
1: सनी ने भेजा था ये,
0: हाँ सनी,
1: फिर रोनाल्ड ने भेजा ये, एंड देन बेन एफर्ट।
0: ऑसम, थैंक यू सो मच गाइस। हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड, गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम। ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: sleepy head sleep easy queen beds from only $7.99. On sale now.
1: Hum. Accurate traffic.
2: Book your Ski G trip today.
3: A low of 6 and mostly clear. And on the southern, there was a crash just after the State Highway 20 to State Highway 1 link heading southbound with the right lane still blocked, so do expect delays there. It's just over an hour 10 out of town to Drury on the southern. And pretty much every other drive around the city is a shocker as well. On the northwestern, it's about 45 minutes out of town to Massey.
2: To book your next Ski G trip to Vancouver or Japan, go to FijiAirways.com.
4: There are easy ways to save up to $500 on power bills this winter, like only heating the rooms you're actually using, by shutting doors and blocking sneaky gaps, or turning off appliances that aren't in use, especially the ones you might have forgotten were even on, or by checking if an off-peak plan is right for you to make the most of when power's cheaper. For more winter saving advice, visit EECA, that's EECA.govt.nz.
5: Here for all things Brinter. Sniffles on the sofa, frosty footy games, oh riff, cozy evenings with hot soup, and roasts with crispy to a tea veggies. Whatever your plans this winter, see you at Foursquare. What'll it be today?
6: Don't miss it. Get 2 months free when you sign up to NIB Everyday Health Cover for dental, physio, GP and more. Offer extended to 30 June 2026. Credit applies after paying for your first month. Eligibility criteria and T's and C's apply. Visit nib.co.nz to find out more.
7: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Bukit. Sleepy head sleep easy queen beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5,
8: brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized customized designs for your dream kitchen.
9: You're listening to Hum Playing Bollywood's biggest hits. Aapke liye yahan pe Power Drive at 5 hum lekar aate hain. और आज हमने कैरेक्टर गेस खेला और बहुत मज़ा आया उसमें. थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए. आपको एक इवेंट के बारे में बता देते हैं. गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर, द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंदेरिया यहाँ पे आने वाले हैं और अपना गुज्जू भाई प्रोडक्शंस लेकर आ रहे हैं यहाँ पे. तो फटाफट इसके टिकट्स आप बुक कर लीजिए, बिकॉज ये इसी वीकेंड हो रहा है, इसी फ्राइडे को होने वाला है 7:30 बजे एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर.
10: या एंड करण औजला के शो के लिए टिकट जीतने का मौका भी आज आपको यहाँ पे मिल रहा है. हम आपके लिए गाने का मिडल प्ले करेंगे रुजबे, और आपको बस गाने का टाइटल क्या है ये आपको गेस करना है.
9: यार ये बहुत से आप्पे वाले काम देते हो आप यार, वो थोड़े टाइम में प्ले करेंगे.
10: इसके बाद ये आप सुनिएगा गाना. इसके बाद आपके लिए एक गाना लेके आएंगे करण औजला का, मिडल ऑफ द सॉन्ग प्ले होगा और आपको टाइटल गेस करना होगा.
9: और 6 बजे के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि कौन जीता है आज डबल पास फॉर कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव कॉमेडी.
10: सो स्टे ट्यून्ड.

0: बहुत ही बढ़िया गाना, विशाल मिश्रा ने गाया है इस गाने को, आपने सुना है। अब आपको हम सुनाने वाले हैं एक और गाना जिसमें आपको गेस करना है इस गाने का नाम ना, और करण ओजला का
1: इस गाने का टाइटल आपको गेस करना है।
0: टाइटल क्या है exactly?
1: और क्या होता है ना कि गानों के कई बार टाइटल डिफरेंट वर्ड्स में लिखे होते हैं, लेकिन कई बार जैसे कि आपको कल समझाया कि वो बोला डिफरेंट वे से होता है, तो कोई भी आपका यहाँ पे आंसर जो गाने के टाइटल को जस्टिफाई करता है विल बी काउंटेड एज एन एंट्री।
0: अच्छा ठीक है, सो लेट्स प्ले दिस एंड हियर इट। करण ओजला का ये गाना है, और बताइए कौन सा गाना है, आपको सुन के क्या लग रहा है?

0: बस इतना ही है। बताओ कौन सा गाना।
1: अब आपको बता रहे हैं ये गाने का टाइटल क्या है। सो के ए इज द कीवर्ड, के ए कीवर्ड के साथ आपको आंसर लिख के यहाँ पे भेजना है 5599 पर। आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा जहाँ पे डबल पास आपके नाम हो सकता है। स्पार्क अरीना 25th अगस्त जो है पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके पहुंच रहे हैं यहाँ पे करण औजला
0: जी। और आज टिकट जीतने का मौका भी मिल रहा है आपको, फॉर मतलब मिल रहा था आपको। हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि कौन जीता है वो टिकट फॉर द कॉमेडी नाइट शो, जहाँ पे कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर आने वाले हैं हमारे सुपर सिटी में परफॉर्म करने के लिए। तो सैंडी 6 बजे के बाद उसका बताओगे आप?
1: या 6 बजे के बाद।
0: और आज 6 बजे के बाद कौन से गाने बजने वाले भाई?
1: वो सनम बैंड के,
0: सनम बैंड के गाने बजने वाले हैं।
1: बिकॉज़ सनम पुरी जो है फ्रॉम द सनम बैंड इज सेलिब्रेटिंग बर्थडे टुडे, सो सनम बैंड के आज बैक टू बैक क्लासिक हिट गाने जो है आपके लिए प्ले होने वाले हैं
0: जी। फटाफट आप भेजिए, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड काफी लोगों ने सही गेस किया है यहाँ पे के एक कीवर्ड के साथ आपने आपके आंसर्स भेजने। करण औजला का कौन सा गाना अभी हमने आपको सुनाया, 5599 पे आपके आंसर्स आपने भेजने हैं। वेल नाउ इज द टाइम के थोड़े आप इमरान हाशमी के गाने सुनना शुरू कर दोगे ड्राइव शो में, एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज आज ही हमने टीजर देखा है फॉर आवारापन 2। इमरान हाशमी इज बैक एंड इज बैक इन इज अवतार ऑफ शिवम, सो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर इट एंड आई होप यू आर ऑल्सो उतने ही एक्साइटेड जितने हम एक्साइटेड है। वैसे हम अगर आवारापन 2 देखने के लिए अगर आप भी इंटरेस्टेड है, हमारा अनफिल्टर्ड जो फेसबुक ग्रुप है क्रू, अनफिल्टर्ड क्रू फेसबुक ग्रुप है, उसको आप जाके ज्वाइन कीजिए बिकॉज वी आर गोइंग टू पुट अ पोल आउट देयर व्हाट वी आर प्लानिंग इज 14th अगस्त को ये रिलीज हो रही है मूवी।
1: ग्रुप में ऐसे जाने के लिए हम प्लान कर रहे हैं।
0: या वी शुड गो ऑल टुगेदर एंड वी शुड एंजॉय दिस मूवी टुगेदर। सो वुड यू बी कीन टू वॉच अ मूवी विद अस टुगेदर? एंड ऐसी वैसी मूवी नहीं, आवारापन 2।
1: या
0: हमें बताइए यहाँ पे। अगर आप फेसबुक नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो यहाँ पे 5599 पे आप मैसेज करके भी हमें बता सकते हो ड्राइव कीवर्ड के साथ। आवारापन 2 ऑन 14th अगस्त। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टुगेदर विद अस? रूपम इस्लाम की आवाज और ये बहुत ही धांसू गाना आपके लिए फ्रॉम द मूवी जन्नत।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: 6:02 हुए हैं. यू आर लिसनिंग टू ट्रेंड मेकर्स. आज ट्रेंड मेकर्स में हम आपके लिए एक आर्टिस्ट शाउट आउट लेकर आ रहे हैं. मतलब एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट के गाने आप सुनेंगे क्योंकि आज उस आर्टिस्ट का बर्थडे है. उससे पहले हम देखते हैं हमारे साथ और यहाँ पे कौन है शामिल.
5: हाय, गुड इवनिंग. आई एम हियर ओनली.
4: कैसे हो आप?
5: एकदम फर्स्ट क्लास. तुम कैसे हो? लॉन्ग
4: टाइम. यहाँ पे बैठती है और फिर ना कुछ साइलेंस में बैठी रहती है. बहुत काम करती है वो.
5: हाँ,
4: कोई काम कर रही है. मतलब
5: कोई काम कर रही थी.
4: एक नया वीडियो हमने बनाया है, मतलब सैंडी ने बनाया. होने वाला रिलीज की नहीं?
5: मैंने डाल दिया. वो
4: डाल भी दिया. वही कर रहे थे आप? मतलब
5: वही कर रही थी मैं.
4: इंस्टाग्राम पे जाएगा कि सिर्फ रोवा पे जाएगा?
5: सो इंस्टा पे भी है, रोवा पे भी है.
4: लेकिन रोवा पे जाके सुनिए, देखिए प्लीज.
5: या तो आप इन 5 मिनट्स, क्योंकि अपलोड होने में वहाँ पे टाइम लगता है, तो 5 मिनट के बाद आप रोवा पे जाइएगा एंड हम पे क्लिक कीजिए. स्क्रॉल डाउन वीडियोस आते हैं वहाँ.
4: बहुत मेहनत करनी पड़ रही है एक वीडियो देखने के लिए.
5: इतनी भी मेहनत नहीं है.
4: नहीं है क्या?
5: नहीं,
4: ठीक है.
5: वीडियो देखने के लिए इतनी सी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं. एंड वहाँ पे एक वीडियो मैंने पोस्ट की है, वो आप जाके जरूर चेक कीजिए. इंस्टा पे भी आप वैसे चेक कर सकते हैं, हम अंडरस्कोर FM पे जाके,
4: ठीक है.
5: बट रोवा पे सुनने के बड़े फायदे होते हैं ना. आप कहीं पे भी चले जाए, यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस.
4: दैट्स राइट. वेरी नाइस. ओके,
5: अभी आते हैं.
4: Why would they want to be connected to us though? But anyway,
5: why not?
4: They would want to. Yes, absolutely. क्योंकि हम देखो आज सनम को celebrate कर रहे हैं.
5: सनम पुरी.
4: सनम पुरी के साथ actually मैं सैंडी एक बहुत किस्सा हुआ. मैं अभी पढ़ रहा था. इनको college से drop out करना पड़ा.
5: एंड
4: नॉट बिकॉज दैट ही वॉन्टेड टू परस्यू म्यूजिक या ऐसा, उसके लिए नहीं. उनको ड्रॉप आउट इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके सीनियर्स उनको बहुत ज्यादा रैग करते थे. रैगिंग यूज्ड टू बी अ कॉन्सेप्ट इन इंडिया और ऑल अराउंड द वर्ल्ड वैसे, जहाँ पे सीनियर्स जूनियर्स को रैग करते हैं. उनका रैगिंग इतने हद तक चला गया कि ही फॉर हिज मेंटल पीस क्विट कॉलेज.
5: ओह नो.
4: एंड दिस इज समथिंग दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो, जहाँ पे काफी रैगिंग होती है या काफी बुलिंग नाम बोलते हैं.
5: वही मैं कहने वाली थी कि रैगिंग को आज के टाइम में बुलिंग भी बोला जाता है.
4: जी,
5: तब बुलिंग शायद इतना पॉपुलर वर्ड नहीं था.
4: बट हमारे टाइम पे रैगिंग यूज्ड टू बी अ थिंग. क्या भाई, रैग तो होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल मुन्ना भाई MBBS अगर आप जाके देखो
5: तो
4: उसमें भी रैगिंग लिखा है और ऐसे टाइप की रैगिंग होती थी.
5: वो कल्चर बना था ना पहले.
4: कल्चर था वो, फिर उसको बुलिंग का नाम दे दिया और फिर वो लुक डाउन अपॉन हो गया.
5: रैगिंग जब शुरू हुई तो इट स्टार्टेड ऑन अ नाइस नोट, एज इन की सीनियर्स जो है वो फ्रेशर्स का वेलकम थोड़ा अलग वे से कर रहे हैं, बट देन उनको बाद में वो पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी भी देते हैं. तो इट वॉज अ काइंड ऑफ दैट कॉन्सेप्ट पहले यूनिवर्सिटीज में.
4: सम पीपल पुश्ड इट टू फार.
5: एग्जैक्टली. तो कुछ एलिमेंट्स थे जो उन्होंने उसको अलग वे से यूज करना शुरू कर दिया, जिससे लोग बुली होना शुरू हो गए. सो ये हुआ था एक्चुअली में. बट या एनीवे, सो या सनम पुरी ड्रॉप्ड आउट, बट ही बिकेम अ रियली गुड सिंगर, इंडियन पॉप रॉक सिंगर, कंपोजर, म्यूजिशियन, जो कि अपने वोकलिस्ट फॉर द बैंड सनम के लिए जाने जाते हैं.
4: एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चली, तो सनम द बैंड, आज जो नाम देखते हैं हम बैंड का, वो एक्चुअली में पहले ये नहीं था. पहले इसका नाम था SQS प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद SQS सुपरस्टार्स. लेकिन जो उनका मैनेजर था वो टाइम पे बेन थॉमस, इसको बहुत प्रॉब्लम होते थे क्योंकि जब भी ये क्लाइंट्स को अप्रोच करते थे या कुछ होता था तो उनको ऐसा लगता था कि ये रियल एस्टेट कंपनी है कोई, SQS प्रोजेक्ट करके. एंड दैट्स व्हाई देन दे डिसाइडेड टू चेंज द नेम एंड देन नेम्ड इट सनम.
5: ओह वाओ.
4: बेस्ड ऑन द लीड सिंगर.
5: Wow, that's amazing. सो या आज आप सनम बैंड के बैक टू बैक हिट गाने जो उनके बहुत पॉपुलर हुए थे, बिकॉज यूट्यूब एक्चुअली हेल्प दिस बैंड. यूट्यूब में इनके कवर्स आने शुरू हुए जो कि पॉपुलर हुए थे.
4: और उसके अराउंड भी एक स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करूंगा बस थोड़ी देर में. अभी
5: कहानियां लेके आया
4: आज, बहुत कहानियां मेरे पास. तो काफी सारी चीजें आज आपको शेयर करूंगा आपके साथ अबाउट सनम. और मुझे पता है काफी लोगों को सनम बहुत पसंद है, मतलब द बैंड
5: काफी लोगों को पसंद है.
4: सो यू विल नो मोर अबाउट सनम टुडे. जस्ट स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू हम

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Trendmakers में आज सनम पुरी को हम shout out दे रहे हैं और उनके गाने आज यहाँ पे play कर रहे हैं।
1: सनम band के गाने हम यहाँ पे play कर रहे हैं, जो band उन्होंने form किया। सनम पुरी के साथ थे समर पुरी, then जो guitar पे थे वेंकी एंड केशव, जो कि drummers रहे। एंड ये इन्होंने एक्चुअली में स्टार्टेड थ्रू स्कूल एंड कॉलेज म्यूजिकल कनेक्शंस, इनका वहाँ पे रहा था, जो कि उन्होंने ऑफिशियली बाद में फॉर्म किया 2010s में।
0: या एंड एक और चीज़ मैं शेयर करने वाला था ना, वो था अबाउट क्या था वो कहानी, अबाउट
1: YouTube
0: की कहानी मैं शेयर करने वाला था। सो बेसिकली YouTube पे इन्होंने उस इंटेंशन से नहीं पोस्ट किया कि हम इसमें लाइक यू नो इन्फ्लुएंस करेंगे या
1: फॉलोअर्स हो जाएंगे
0: या पॉपुलर। उनका मेन आइडिया था यूट्यूब पे अपलोड करने का वो जमाने में, वाज बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट देयर पोर्टफोलियो, और वो अपने क्लाइंट्स को भेजे कि भाई ये हमारे सॉन्ग्स हैं, हम ऐसे परफॉर्म करते हैं, सो दैट दे कैन गेट क्लाइंट्स। बट लिटिल दैट दे रियलाइज कि एक कुछ महीनों के बाद उनके पास गूगल से $800 का चेक आ गया। And that's when they realized कि ओह ये यहाँ से तो पैसा भी बन रहा है। And then they started doing more songs on YouTube, and YouTube became kind of their source of income as well.
1: And YouTube से ही around the world वो actually में काफी popular हो गए। Andrews भी before getting into the another song, हमने last hour में actually में हमने बोला था कि हम एक winner का नाम भी announce करने वाले हैं, और ये जो winner है for the show Comedy Nights,
0: yes, Krishna Abhishek and Rajiv Thakur are coming in our super city, और वो विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में परफॉर्म करने वाले हैं।
1: या सो वेल, हमारे पास काफ़ी एंट्रीज आई। हमने पूछा था कि कृष्णा अभिषेक ने ऐसा कौन सा करेक्टर किया है जो आपको बहुत पसंद आया है, एंड हमारे पास फिलहाल विनर है। इस जो विनर है इनका नाम तो नहीं पता, लेकिन लास्ट को डिजिट्स पता है, इट इज़ 0192।
0: 0192, congratulations, आपने जीता है ये डबल पास, जो वैसे यूजुअली कोई खरीदना चाहे तो bookmyevent.co.nz पे जाके खरीद सकता है फॉर 18th ऑफ जुलाई एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। सो आपने ये जीता है, आपको हम कॉन्टैक्ट करेंगे और बताएंगे हाउ यू कैन क्लेम दिस पास। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हार मत मानिए, ऐसे क्या बोलते हैं वो पार्ट लेते
1: रहिएगा,
0: क्योंकि करण औजला का भी डबल पास है टू गिव अवे, वो भी बताएंगे आपको थोड़ी देर में।

0: ट्रेंड मेकर्स।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल। हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
4: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day. Because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
5: Bunnings Warehouse.
4: Lowest prices are just the beginning.
6: A lot of injuries happen on the weekend. So if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
7: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Papa Toy Toy, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Hape Road! In just 29 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
0: Of Bollywood.
8: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
9: Are you ready to go home?
10: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
11: ये चांद का रोशन चेहरा

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Trendmakers mein Sanam Puri ke gaane aaj aap sun rahe hai back to back. Aur Sanam the band ke gaane bhi sunenge aap.
1: And shout out to listeners jo hame Rova ke through is samay par sun rahe hain Rusbe, because humne jo video ke bare mein baat ki thi to Rova se sunke hi actually pe wahan pe Abhishek pahunche. Abhishek hamare Insta pe pahunche to check the video.
0: Kya baat hai?
1: Ye video aise aapko hamari Rova app pe bhi mil jayegi, because kya hai ki Rusbe ka bahut acha din ja raha tha to usko ek joke sunana bahut zaruri ho gaya tha. Yehi share kiya hai humne.
0: Yes, वो जोक का जाके आप वहाँ पे सुन सकते हैं. लेकिन हमने आज पहले लिंक में ना रैगिंग के बारे में बात की. Now how रैगिंग कैन डू समथिंग पॉजिटिव फॉर यू. आई एम नॉट सेइंग इट इज गुड, बट यू नो इट्स जस्ट अबाउट हाउ समबडी हैज टेकन इट टू देयर एडवांटेज. एक मैसेज आया हमें. बैक इन माई फर्स्ट ईयर एट मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली, माई सीनियर्स डेड मी टू स्टे इन द मॉर्चुरी अलोन and for an hour at midnight. तो ये वहाँ पे जहाँ पे मतलब you know वो दफनाते हैं ना.
1: या वहाँ पे
0: हाँ मतलब दफनाते नहीं sorry जहाँ पे dead bodies रहती है actually. And उन्होंने किया and single experience completely stripped away my fear. Later that same year, testing my newfound fearlessness, I even visited Bhangad Fort.
1: Bhangad Fort तो बहुत scary होता है. बहुत paranormal कहानियाँ सुनी है वहाँ पे.
0: Widely known as the most haunted place in India. Wo restricted bhi hai actually.
1: Restricted bhi hai. Bhai, kaise gaya wahan pe us qila mein?
0: Yeah, maybe this is an example of how you know some negative jo unke saath hua life mein, usko unhone positive
1: overcome kiya apne dar ko unhone.
0: Haan, matlab he used it to overcome his fear.
1: Yeah.
0: Yeah, but that doesn't mean ki ragging or bullying is okay. It is absolutely not okay, and we should refrain from doing it. But talking about Sanam. एक और चीज़ मैंने आइडेंटिफाई की है सनम के बारे में. अगर ये म्यूजिशियन नहीं होते तो ये आज एक बेकर होते सैंडी.
1: ओह वाओ.
0: क्योंकि ये एक बहुत ही शाय इंट्रोवर्टेड पर्सन है जिनको बहुत ही क्वाइट प्लेसेस पसंद है. लेकिन उन्होंने शेयर किया था कि उनको कुकिंग को लेकर उनको डीप लव है और वो प्रोबेबली एक प्रोफेशनल बेकर बनते अगर वो म्यूजिशियन नहीं बनते तो.
1: नाइस यार. सनम वैसे देखा जाए तो बिकेम वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट इंडिपेंडेंट बैंड ऑनलाइन.
0: ओह यस दैट्स राइट.
1: या उस समय पर यूट्यूब पे इंडिपेंडेंट बैंड्स ऑनलाइन ट्रेंड ही नहीं था.
0: या
1: ये एक्चुअली बने.
0: या दे वर द फर्स्ट वंस एंड इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि एक नया जॉनर उन्होंने शुरू किया था. उसके बाद काफी लोग आए और उन्होंने काफी लोगों ने ये किया. बढ़िया. सनम बैंड का एक और कवर सॉन्ग आपके लिए इस बार.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए ट्रेंड मेकर्स में हम एक से गाने लेकर आते हैं और आज सनम पुरी को हम शाउट आउट दे रहे हैं.
1: Yes, सनम पुरी के बारे में आज हम बातें कर रहे हैं because सनम पुरी celebrating birthday. सनम बैंड से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए एंड इन्होंने बहुत सारे सिंगल्स कोलेबोरेशन भी रिसेंटली एक्चुअली में रिलीज किए हैं. मूवीज में इनको चांस मिला विच इज़ अ गुड थिंग. यूट्यूब से पॉपुलर हुए देन मूवीज में भी इनको चांस मिला. काफ़ी मूवीज के गाने भी इन्होंने गाए हैं.
0: वाओ, उन्होंने एक्चुअली में एक और गाना गाया है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का जो इंडियन रिलीज था उसके लिए गाना इन्होंने गाया था. और ये गाना जो है ये एक्चुअली उनके भाई ने कंपोज किया था इन जस्ट 4 आवर्स. ये गाने का नाम है मैं हूँ. तो 4 घंटों में भी इन्होंने गाना बनाया. लेकिन उनकी दूसरी स्टोरी ये भी है कि एक उनका ओरिजिनल गाना था इतनी दूर उसको लगे 4 साल बनाने में.
1: ऐसा होता है, ओरिजिनल कंपोजिशन को बाहर आने में टाइम लगता है.
0: मतलब वो मैं हूँ भी ओरिजिनली था बट आई थिंक इट जस्ट डिपेंड्स ना कि समटाइम्स वो क्लिक हो रहा है समटाइम्स नहीं हो रहा है.
1: या
0: एंड बट परसीवरेंस इज द की, लाइक यू हैव टू कीप ट्राइंग.
1: 100%. सो सनम बैंड के आज आपने यहाँ पे गाने सुने. सेल्फ टॉट इंडियन वोकलिस्ट हम कह सकते हैं जिन्होंने ग्लोबल इंडी म्यूजिक स्टार बने बाय री इन्वेंटिंग क्लासिक बॉलीवुड सॉन्ग्स. ये इन्होंने एग्जाम्पल सेटअप की और उसके बाद बहुत सारे लोग करना शुरू हो गए जो सनम बैंड ने किया.
0: और इन्होंने बिल्कुल भी कोई भी फॉर्मल वोकल ट्रेनिंग नहीं की है,
1: कभी नहीं की.
0: सो दैट इज रियली आउटस्टैंडिंग फॉर व्हाट ही इज अचीव्ड.
1: या
0: अमेजिंग. सो विद दैट आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू से बाय नाउ. थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए.
1: इसी नोट पे आपको यार टाटा बाय बाय कहते हैं. कल आपसे मुलाकात होगी. टेक केयर
0: जी. कल मिलेंगे. टुमारो इज मिड वीक एंड स्टार्ट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर. 1st of July. लेट्स मेक इट स्पेशल. आज सोने से पहले आप सोचिए ये कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं करना चाहते हो फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर. एंड लेट्स होप कि कल से हम एक नई शुरुआत शुरू करें.
1: Second half of the month mein.
0: Second half of the year.
1: Haan, yeah. Second half of the
0: 2026
1: year.
0: 2026 is also going by very quick now.
1: Yeah, man.
0: Let's make the most of it. With that, thank you so much. Aapke saath ke liye. Milte hai kal.
1: Bye.
0: Bye.

0: Coffee Hour on Hum. वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना,
0: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, मैं

मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ कोक स्टूडियो रिलोडेड प्रोग्राम में और 9 बजे तक के चलता रहेगा लेसन नो वन फैक्ट्स अबाउट कोक स्टूडियो पाकिस्तान। हर एक गाने को ओरिजिनली रिकॉर्ड किया गया था इन वन कॉन्टिन्यूस लाइव टेक। जो अर्ली सीजन थे कोक स्टूडियो पाकिस्तान के, इनमें आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस एक साथ परफॉर्म करते थे इन ए सिंगल अनइंटरप्टेड रिकॉर्डिंग, और अगर कोई मेजर मिस्टेक होता है तो होल परफॉर्मेंस को फिर दोबारा रिकॉर्ड किया जाता था। देयर वर ओवर 100 क्रू मेंबर्स फॉर ईच रिकॉर्डिंग बिहाइंड एवरी सिंगल एपिसोड, जो आपने पहले देखा होगा कोक स्टूडियो पाकिस्तान का। अराउंड 120 लोगों ने काम किया ऑन लाइटिंग, साउंड, कैमरा, स्टेज मैनेजमेंट और प्रोडक्शन पर। और कहा गया था कि इवन दो द फाइनल वीडियो लुक्स वेरी मिनिमल, लेकिन इतने सारे लोग थे बिहाइंड द सीन्स जो इस पर काम कर रहे थे। और भी इंटरेस्टिंग खबरें बहुत ही जल्दी आपके लिए

0: Studio Reloaded on Hum.
1: Coke Studio Reloaded, आप सुन रहे हैं और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। Coke Studio पाकिस्तान के बारे में कुछ वेरी रेयर और लेसन नोवन फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कहा गया है कि क्लॉक्स ऑन द स्टूडियो वॉल्स हैड अ हिडन मीनिंग। सीजन 9 में खासतौर पर एवरी क्लॉक ऑन द सेट वॉज इंटेंशनली फिक्स्ड एट 9 o'clock एज एन ईस्टर एग रेफरेंसिंग द सीजन नंबर। और काफ़ी व्यूअर्स ने नोटिस नहीं किया, लेकिन हर एक चीज़ जो किया गया था बारीकी से किया गया था और उसके पीछे कोई ना कोई मतलब छुपा हुआ होता था। तो सीज़न 9 में जो क्लॉक आपको दिखाई देंगे ऑन द सेट, ये इंटेंशनली 9 o'clock पर रखा गया था एज एन ईस्टर एग, जिससे सीज़न का नंबर सामने आया था। आर्टिस्ट रिलैक्स्ड बाय प्लेइंग अतरी बिटवीन रिहर्सल्स। बैक स्टेज लाउंज होता था जहाँ पर अतरी गेमिंग कंसोल होता था, बिकॉज प्रोड्यूसर बिलाल मकसूद चाहते थे कि म्यूजिशंस रिलीव करें चाइल्डहुड मेमोरीज, और इसलिए ये एक्सरसाइज उनके लिए रखा जाता था बैक स्टेज लाउंज में। Coke Studio एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड रिमोट टैलेंट। बिफोर सीजन 11 काफ़ी प्रोड्यूसर्स ट्रेवल किए थे अक्रॉस पाकिस्तान टू विलेजेस, माउंटेन्स एंड रिमोट रीजन्स, जहाँ से म्यूजिशंस को वो ढूंढ कर लेकर आए जिन्होंने पहले कभी प्रोफेशनली गानों को रिकॉर्ड नहीं किया था। कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी थे जो कैमरास के सामने पहली बार के लिए परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इतना मस्त परफॉर्मेंस दिया, और तब जाकर Coke Studio का नाम देखो भी कितना रोशन है, क्योंकि इन लोगों के योगदान की वजह से। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और भी फैक्ट्स Coke Studio भारत के बारे में बहुत ही जल्दी।

मेन फोकस कभी नहीं था कोक स्टूडियो भारत का, जैसे काफ़ी इंडियन म्यूजिक शोज होते हैं. कोक स्टूडियो इंडिया इंटेंशनली फोक, इंडिपेंडेंट और क्लासिकल म्यूजिशंस पर ध्यान देते थे अलोंगसाइड फिल्म कंपोजर्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन बॉलीवुड स्टार्स. और काफ़ी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता था जिनका रिकॉर्डिंग लाइव होता था. इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कोक स्टूडियो रिलोडेड जारी है.

0: शायद बीच को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
2: Night Cafe on Hum. Legends, beats and soul.
3: Coke Studio Reloaded.
4: Coke Studio Reloaded आपके लिए जारी है। इट इज़ ट्यूजडे नाइट, 30th June है और नाइट कैफे में ये सेगमेंट आपके लिए। काफ़ी जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए गए थे वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स थे और इनका रिकॉर्डिंग लाइव होता था। इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग फोक इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल साउंड्स के साथ, म्यूजिशियंस इन इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते थे, इन म्यूजिकल साधनों का लाइव प्ले होते थे ये। और जैसे खमक हो गया, बुलबुल तरंग हो गया, ढोल और भी जो रीजनल पर्कशन है लाइव इन द स्टूडियो परफॉर्म करते थे और तब जाकर उनका रियल टाइम रिकॉर्डिंग होता था। देयर वर हैवी इंस्पिरेशन फ्रॉम पाकिस्तानी फॉर्मेट। इंडिया का जो इंस्पिरेशन है वो पाकिस्तान के फॉर्मेट से भी हुआ था। बिफोर लॉन्चिंग द इंडियन एडिशन, मेम्बर्स ऑफ द इंडियन प्रोडक्शन टीम ने पाकिस्तान को स्टूडियो को विजिट किया टू ऑब्जर्व इट्स रिकॉर्डिंग स्टाइल और कोलैबोरेटिव अप्रोच। मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो कोक स्टूडियो।

कॉक स्टूडियो रिलोडेड के अंत तक हम पहुंच चुके हैं और एक और गाना बजाने से पहले, जो अंतिम गाना, उससे पहले मैं आपको कुछ और इफेक्ट बताना चाहूंगा। बोनस इफेक्ट में पसूरी ये बिगेस्ट साउथ एशियन सॉन्ग्स एवर बना, जिससे ग्लोबली और मोस्ट व्यूड कॉक स्टूडियो सॉन्ग इन हिस्ट्री माना जाता है। पाकिस्तान में काफ़ी लेजेंडरी आर्टिस्ट है, क्लासिकल सिंगर्स, जिन्होंने कभी रॉक म्यूजिशियंस के साथ काम नहीं किया था, लेकिन कॉक स्टूडियो रिलोडेड या कॉक स्टूडियो में इन्होंने पहली बार के लिए परफॉर्म किया विथ पॉप और इंडी आर्टिस्ट, क्रिएटिंग कोलेबोरेशंस जो बहुत अनलाइकली था सोचना, लेकिन ऐसा कर दिखाया गया था। कॉक स्टूडियो रिलोडेड में इतना ही, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, अगले घंटे पर मिलते हैं।

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, Krish के साथ है. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है. श्री राम लीला आपके लिए आयोजित किया जा रहा है. स्टॉल इंक्वायरीज के लिए आप मास्टर अशोक से बातें कर सकते हैं 021-179-5459 पर. रामलीला एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होने जा रहा है. सेव द डेट, ये डेट आपको मार्क करके रखना है. 8 अगस्त को होगा और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8 अगस्त. क्रिश के साथ है और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: to 4499 to make a $3 donation now.
1: Bollywood ka asli blockbuster.
2: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Hum.
1: Night Cafe on Hum.
4: You're listening to number one, humping Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Auckland, get ready. Ek evening of laughter entertainment hone ja raha hai with Gujju Bhai ni exchange offer, jisme legendary Siddharth Randeria aa rahe hain. Ye brand new comedy hai jisme Gujju Bhai finds himself caught up in an unusual exchange offer, jisse series of hilarious misunderstandings, unexpected twists aur laugh out loud situations aate hain. Witty dialogues hai, relatable family moments honge aur is show mein classic Gujarati humor bhi sunne ko milega, dekhne को मिलेगा. एक होल फैमिली शो ये है आपके लिए. सिद्धार्थ रंधेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शन जहां पर भी जाते हैं ये सेल आउट हो जाते हैं, तो लास्ट मिनट तक आप टिकट का इंतजार ना करें. टिकट्स आज ही बुक कीजिए premierticket.co.nz और एक्सपीरियंस कीजिए द मैजिक ऑफ गुजरात्स मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर लाइव ऑन स्टेज. ये 3 जुलाई को होने जा रहा है, 7:30 PM विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ऑकलैंड में ये होगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Auckland, get ready to laugh until it hurts. Tri-Vision Events ki or se Night of Piwa Entertainment rahega with Krishna, Abhishek aur Rajiv Thakur live. Chahe inka koi iconic character ke fan aap hai ya phir inka razor sharp wit jo aapne suna hai inko perform karte hue, ye comedy night aap miss nahi kar sakte. The great comedy night, Krishna, Abhishek aur Rajiv Thakur live, ye Auckland mein for the very first time hone ko ja raha hai. VIP seats bik chuke hain. 18th July ko ye hoga Victory Convention Center mein. Grab your tickets now. bookmyevent.co.nz par aap ja sakte hain. Agar online booking mein trouble hai to aap call kare out to 1-043-2720 par. Afterpay option bhi available hai. Aur double pass जीतने का भी मौका है अगर हम पर हमारे साथ ही आपसे एक सवाल पूछते हैं. जवाब आप 5599 पर भेजे. डबल पास जीतने का मौका है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: हाँ। अच्छा
1: बताओ, तुम्हारा फोकस साडा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह,
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
6: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
7: Good evening. For the latest at 10, I'm Alexander Goldsmith. The Ministry of Education is being asked to consider how it's measuring the success of its school lunch scheme. The Auditor General's Office is concerned by a lack of mechanisms for tracking the program's value for money. In a report, it points out only half of lunches meet nutrition standards when assessed in 2025. A driver has died at the scene of a two-vehicle crash in Canterbury. It happened on Percival Street in Rangiora just before 1 this afternoon, and a person is in a critical condition after a crash involving a truck at Wainui, north of Auckland. The creator of Hukatika's iconic Driftwood sign continues to be blown away by its popularity, and now Don Neal plans to restore it when speaking to the person who knocked it down.
8: I've been keeping an eye on it pretty much every day or every few days for the last 25 years really, and it always needs a little bit of a tickle up. It's all tied together with cabbage tree, so we've got to make a bit more rope.
7: In sport, the president has declared a national holiday in Paraguay after their football team's historic win at the FIFA World Cup. The South Americans eliminated Germany in a penalty shootout to advance to the round of 16. Three more mouth-watering matches wait tomorrow when the round of 32 continues. Football updates brought to you by Hisense.
6: Sports news brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill.
9: Playing Bollywood's biggest hits.
6: Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
10: Hey everyone, welcome to the show. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और वेलकम बैक. नाइट कैफे आपके लिए जारी है. नॉन स्टॉप म्यूजिक तो आपके लिए हम बजा रहे हैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी लेकर आ रहे हैं. हमारे कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहे हैं, कुछ इवेंट्स आने वाले हैं, कुछ शोज आने वाले हैं, इस पर भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ. तो जितने भी फ़ायदेमंद बातें हैं वो हमारे साथ होती है. किस तरह से आप फ़ायदे में रह पाएंगे हम के साथ होकर, हमारे तमाम प्रमोशन से, इस पर भी जानकारी और फ़ायदे में रहने का मौका हमारे साथ होगा. फिलहाल न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद में एक फिर स्वागत है आपका और शुरू करते हैं आपके लिए नॉनस्टॉप म्यूजिक फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स. ये आप इन्जॉय करें. बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट मैं लाया हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा. आई कीप द सरप्राइज फॉर यू दिस टाइम. आप सुने और हमें बताएं कि ये टाइम आपको ये लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स कैसा लगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Streaming on Rover.
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
4: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Papa Toy Toy, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Happy Road! In just 29 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
5: Of Bollywood.
6: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
5: Night Cafe. आपका moment. Krish का magic. Only on Hum.
7: आप सुनते रहो आपका नंबर वन हम, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। ग्लोबल सेंसेशन करण औजला अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आ रहे हैं टू ओकलैंड, एंड इट्स गोइंग टू बी मैसिव। फ्रॉम चार्ट टॉपिंग हिट्स टू द एंथम्स जो हर किसी को पता है, जो पसंद करते हैं इनके गाने, एक्सपीरियंस कीजिए करण औजला लाइव ऑन स्टेज एट स्पार्क अरीना। 25th ऑगस्ट को ये परफॉर्म करेंगे। एंड दैट्स नॉट ऑल, इनको एक स्पेशल गेस्ट हिट मेकर IKKY इक्की ज्वाइन इन करेंगे, मेकिंग दिस एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक एंड एनर्जी। आप अपना चांस मिस नहीं कर सकते टू बी पार्ट ऑफ द पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर। टिकट्स और मोर इन्फॉर्मेशन आप hum.rover.nz विजिट करें या फिर livenation.co.nz विजिट करें। करण औजला 25th अगस्त स्पार्क अरीना में होने जा रहा है, आपको भी यहाँ पर पहुँचना है। और हमारे साथ ही आपके लिए करण औजला का गाना डेली पेश करेंगे, आपको गेस करना होगा टाइटल ऑफ द सॉन्ग। करेक्ट एंट्रीज को ड्रो में शामिल किया जाएगा, डबल पास जीतने का मौका होगा। आपको टेक्स्ट करना होगा KA अपने नाम के साथ सही जवाब 5599 पर। ड्रो 6 जुलाई को होने जा रहा है।

प्यार दो प्यार लो और बेचैन दिल ठरकी हो।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. AI सभी जगहों पर है तो हम podcast सुनना ना भूले क्योंकि इसमें रुजबे और सैंडी बहुत ही interesting बातें करते हैं with AI specialist दर्शित पांड्या. ये एक senior principal engineer है platform at Zerko and an AWS community builder जो बहुत ही बारीकी से breakdown करते हैं the world of artificial intelligence in a way that actually makes sense. चाहे ChatGPT हो या AI at work हो to job security, privacy concerns, opportunities या कोई भी skills that you need for the future, ये conversation ये सारे questions का जवाब देता है और discuss करता है इन मुद्दों को. चाहे आप excited हो, curious हो या फिर little nervous about AI, ये episode आपके लिए एक practical guide है to understand कि टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा रही है और कैसे आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल सकते हैं. तो AI is everywhere, लेकिन इसका क्या मतलब हमारे ज़िंदगी के लिए होता है, हमारे काम के लिए होता है, ये एपिसोड आप सुनना ना भूले. 5599 पर टेक्स्ट करें ड्राइव फॉर द फुल ऑडियो. इसके अलावा ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए भी आप हमारे पास 5599 पर BF भेजे, जहां पर फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय एंड पूजा होता है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो. तो हमारे पॉडकास्ट को आप सुने क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके लिए यहां पर डिस्कस किया जाता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं.

0: Night Cafe on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: वेलकम एवरी वन टू आवर फाइनल आवर ऑफ नाइट कैफे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. 30th June है इस महीने का ये लास्ट नाइट कैफे रहेगा और अगला नाइट कैफे विल बी टुमारो 1st July. ओबियसली इस महीने का अंतिम ये नाइट कैफे में आपका स्वागत है. बहुत कुछ इस घंटे पर रहेगा आपके लिए. बैक टू बैक सॉन्ग्स मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अभी न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद में. आपके लिए हमेशा ये दौर रहता है 9:30 minutes के लिए. आपके लिए बैक टू बैक सॉन्ग्स होते हैं जो आप बहुत इन्जॉय करते हैं. इस बार सुकृति कक्कर, अभिजीत श्रीवास्तव, अभिजीत कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, मोहित चौहान और दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार हैं. बहुत धुरंधर आर्टिस्ट के गाने आप सुनेंगे इस घंटे पर. 30 मिनट्स के लिए आप एंजॉय करें. और फिर और भी इंटरेस्टिंग खबरें मैं लेकर आया हूँ. बॉलीवुड है और कुछ साइंस से संबंधित जानकारी है जो आपके साथ इसी घंटे पर शेयर करूंगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वेलकम बैक एवरीवन.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। काफ़ी ऐसे साइंस से संबंधित जानकारी हम लेकर आते हैं आपके लिए जो आप एंजॉय करते हैं, और एक एक जानकारी ढूंढ कर हम लेकर आते हैं जो आपके साथ हम शेयर करते हैं। व्हाट ट्रिगर्स बेली फैट एज वी एज, इस पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रिसर्च किया गया है। सिटी ऑफ होप द्वारा 27 जून ऑफ दिस ईयर पब्लिश किया गया है। एजिंग में ट्रिगर द अपीयरेंस ऑफ स्पेशलाइज स्टेम सेल्स दैट सुपर चार्ज द बॉडीज एबिलिटी टू क्रिएट न्यू बेली फैट, कहा गया है। और इस डिस्कवरी से ये बात सामने आया है कि ये पोटेंशियल बायोलॉजिकल ड्राइवर होता है ऑफ मिडिल एज वेट गेन, और इससे एक और चीज़ भी प्रॉमिसिंग हो गया है कि एक प्रॉमिसिंग टारगेट बन सकता है फॉर फ्यूचर एंटी ओबेसिटी ट्रीटमेंट्स। तो कहा गया है कि जब हम एज होते हैं तो एक ऐसा स्पेशलाइज स्टेम सेल्स जो सुपरचार्ज करता है बॉडीज एबिलिटी टू क्रिएट न्यू बेली फैट, ये हो जाता है। इसलिए बेली फैट जो मिडिल एज के लोगों में काफ़ी नोटिसेबल होने लगता है, तो शायद आगे चलकर इसको टारगेट प्रॉमिसिंग टारगेट बनाया जा सके, जिससे एंटी ओबेसिटी ट्रीटमेंट्स हो सकता है और ये प्रॉब्लम से हम दूर जा सकते हैं। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, नाइट कैफे जारी है।

0: disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट

0: Cafe on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. एक एक करके आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करेंगे. जितने भी हमारे नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, एंड एवरीवन वर्किंग विद अस. अभी आप काम कर रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच. आपको याद करते हैं और मैं क्रिश आपका साथ 12 बजे तक दूंगा. सोनाक्षी सिन्हा का कहना है कि इफ़ आई डोंट गेट द काइंड ऑफ वर्क आई वॉन्ट, आई एम हैप्पी इन माई बबल. मतलब ये ऐसी काम करना पसंद करती है जो इनको अच्छा लगता है, विच इज़ हर काइंड. अगर नहीं तो फिर देन शी इज़ नॉट विलिंग टू टेक एनी असाइनमेंट्स जो इनके कंफर्ट जोन से बाहर है या फिर जो काम ये पसंद नहीं करती है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और मैं आपके साथ 12 बजे तक दूंगा कुछ और प्यारे गाने आपके लिए.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा, हमेशा आपके साथ बहुत मज़ेदार होता है, अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कंपनी। अभी कल मिलते हैं, बॉलीवुड न्यूज़ बहुत सारे मैं लेकर आऊँगा कल मिड वीक मसाला में नाइट कैफे में, जो 8 to 9 सेगमेंट चलता है। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर नाइट, कल का जो वेंसडे है ये भी अच्छी तरह बीते आपके लिए, एंड टुमारो इज 1st जुलाई तो वो भी बहुत ही अच्छी तरह बीते आपके लिए।

0: दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

लड़की कितनी क्यूट है, तेरा फेस भी कितना स्वीट है, तू ब्यूटी, तू चार्मिंग, तू टनाटन, मैं धनाधन, मैं दिल में तुझे बसाऊंगा और अपना तुझे बनाऊंगा, लंदन तुझे घुमाऊंगा, वहां पानी पूरी खिलाऊंगा, हनीमून करके आऊंगा, फिर शादी यहाँ बनाऊंगा, मैं रोमियो तू जूलियट, ना समझ तू मुझको इडियट, अरे हाथ छुड़ा कर चली किधर, वो यार मेड बॉय।

0: शेख चिल्ली,
1: चुप हो जा भूरी बिल्ली।
0: मैं आफत की पुड़िया,
1: तू भोली भाली गुड़िया।
0: मवाली,
1: मैं हीरो,
0: तू पागल,
1: तू जीरो,
0: आवारा,
1: तुम्हारा, समझ गए इशारा।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम द बीट ऑफ बॉलीवुड,
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और

0: कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूं कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: क्या कूल है हम क्या कूल है हम

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: हाय बॉयज, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था।
2: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
3: पर शुड वी कॉल हर सर?
4: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
1: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
5: YRF Spy Universe presents
6: Alpha,
5: releasing in cinemas on 3rd July. Distribution partner Forum Films. Rating TPC.
1: शुरू करो अग्नि परीक्षा।

0: शादी कर सकते हैं।
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह?
0: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी मलिका तिलफरेब।

थोड़ी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं, एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है शाम रंग से, अब रंग भी शाम है और पिया भी शाम है। तो शब्दों की सुंदरता देखिए।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
0: Home. Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Street racers and fleeing drivers face getting their cars crushed or losing them entirely under law just passed. The government says people have had enough of dangerous, obnoxious behaviour. The new weapons in the armoury also include stronger penalties for excessive vehicle noise. Fewer businesses are defaulting on their loans. Centric spokesperson Monica Lacey says there has been a drop in the 12 months to June.
9: Although the liquidation numbers remain elevated, credit defaults are actually 13% lower year on year. Businesses are actually able to manage their bills and pay on time, so that's really positive.
8: An Auckland man will serve just over 3.5 years in jail for moving objectionable material. He was identified as a risk for online child sex abuse by customs after a trip to Australia. They found about 33 hours worth of footage on his phone dating back to 2020. Parents are being reminded about the dangers of common household items as new cord blind rules are rolled out. They must now be in line with global safety standards. Nadira Hassan de Madiros from Safe Kids says changes like this are vital.
10: Adults naturally see the world through an adult lens, so it's not always obvious how an everyday product could pose a risk to a child.
8: In sport, to tennis with Davis Cup Auckland. After a four-year absence, Serena Williams makes her return to Wimbledon this morning. The 44-year-old is due up next on centre court in her first round singles match.
11: I've always had some nerves, but then I just dust them off. So I definitely expect to have those same feelings.
8: And at the FIFA World Cup, it's 1-0 to Norway at halftime of their round of 32 match against Ivory Coast in Dallas.
4: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
2: 5.5 degrees temperature Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 15, overnight kam se kam 4 degrees aaj hone wala hai. Aur aaj bhi mausam saaf aur suhana. Sunrise 7:34 AM par aur sunset aaj ka sham 5:16 par hoga.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up.
2: 2:30 हो रहे हैं, 6:00. नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग. आपका स्वागत हम कर रहे हैं एक बार फिर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा में. आज बुधवार है और जुलाई महीने की ये पहली सुबह. आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. आगे हैं आपका साथ देने के लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो, ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM और रोवा पर. आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक हमारा और आपका साथ इस प्रोग्राम में होने वाला है. और आज तो तड़के सुबह काफ़ी ठंड पड़ रही है और जहां कहीं भी है अपने आप को वार्म रखने की आप पूरी कोशिश करें. और आज अभी अगर हुनवा इलाके में हैं अराउंड 1.5 degrees. कुमियों में अगर आप हैं तो वहां पर भी काफी ठंड जो है कि आप एक्सपीरियंस करेंगे. वाइटाक्रेज अराउंड 2 degrees एट द मोमेंट. और अगर साउथ आइलैंड में आप हैं फिलहाल तो माउंट कुक इज अराउंड -4.2 degrees. क्राइस्टचर्च सेंट्रल में अगर आप हैं माइनस ऑलमोस्ट 2 degrees टेम्परेचर वहां पर आप फील कर रहे हैं. और वेलिंगटन में अगर आप हैं लवाहट इज अराउंड 2 degrees राइट नाउ जो आप फील कर रहे हैं. और उसके अलावा अगर अपाहट एरिया में है -1 degrees टेम्परेचर या -1 degree वहां आप फील कर रहे हैं. एंड अराउंड कैम्ब्रिज -0.5 degree. और हैमिल्टन में अगर आप हैं वहां पर भी ऐसा ही माहौल है. तो आज वेरी चिली स्टार्ट टू द डे. और हैमिल्टन में तो आज रात एक बार फिर -1 degree टेम्परेचर जो है ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो एक और सुबह आ गई है, विंटर का असली फील जो है ये अब मिलने लगा है. तो अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखें. आपको इन्फॉर्म और एंटरटेन करने के लिए आ गए हैं और अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक हमारा और आपका साथ इस प्रोग्राम में रहेगा.

0: साइड अप। आज की सनी साइड अप स्टोरी जो है इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम समथिंग जो शुरू हुआ था वे बैक इन डेनमार्क अर्ली 2000 में ये जाकर शुरू हुआ था और फिर जब इसके बारे में लोगों ने जाना तो ग्लोबली दुनिया भर में अलग अलग जगह पर इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया या एक्सेप्ट किया गया। तो एक कम्युनिटी इनिशिएटिव है, इसको कहा जाता है द ह्यूमन लाइब्रेरी और ये दुनिया में इतनी तेज़ी से फैला है कि सभी जगह पर लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये जो सोसाइटी में, समाज में अकेलेपन और साथ में जो मुसीबतों का सामना लोग करते हैं जहां अपनी बात नहीं कर पाते और जिस तरह से लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, उससे निपटने के लिए ये किया गया है। तो ये जो ह्यूमन लाइब्रेरी है बेसिकली क्या होता है यहाँ पर कि इंस्टेड ऑफ कोई बुक आप जाकर लाइब्रेरी में देखें, जो लोग यहाँ पर जाते हैं दे बेसिकली बोरो रियल ह्यूमन बींग, एक इंसान को बोरो करते हैं आधे घंटे के लिए और ये लोग जिनको वो बोरो करते हैं वो कोई एक्टर्स नहीं होते हैं, कोई पब्लिक फिगर्स नहीं होते हैं, सेलिब्रिटीज़ नहीं होते हैं, रियल पीपल जो वॉलंटियर करते हैं और वो अपने आप में जो खामियां हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, जो कमज़ोरियां हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि रिकवरिंग एडिक्ट्स या फिर जो लोग जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी थी एंड दे आर फाइटिंग देयर बैटल या फिर रेफ्यूजीज, ऐसे लोग जो है ये वॉलंटियर करते हैं टू बी बोरोड फॉर 30 मिनट्स। तो जो लोग इनको बोरो करते हैं वो उनके साथ बहुत इमोशनल, बहुत एम्पैथेटिकल बातें जो हैं ये करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और अपना जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, दिल की बात जो है खुलकर एक दूसरे से करते हैं। कोई प्रोटेक्टिव स्क्रीन नहीं होता है या कोई पोलाइट डिस्टेंस नहीं होता है, जो दो अनजाने होते हैं एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं एंड दे ओपन अप अबाउट देयर डीपेस्ट पर्सनल ट्रॉमास।
1: So it's basically a library for human beings.
0: Yes.
1: कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो आप किसी किताब में नहीं बल्कि खुद उनसे सुन सके,
0: उनका आप सुन सकते हैं और आप अपनी उनसे कह सकते हैं।
1: So it's a very good concept, I would say. And you never know, it can help build a lot of new friendships as well. सीख तो लाइफ में मिलेगी ही, if you hear it from someone like जिन्होंने उसे personally experience किया हो तो उसका जो पूरा meaning है या impact है वो काफ़ी different होता है। And in this case, if that's the situation, तो definitely लोगों को ना केवल सीखने को मिलेगा लेकिन एक बहुत ही impactful तरीके से situations के साथ रूबरू होने का मौका जो है कि मिलेगा।
0: तो ऐसी कहानियां हर दिन आपके लिए हम लेकर आते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो सनी साइड अप में। अभी 17 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर, थोड़ी देर बाद ग्लोबल हेडलाइंस भी हम लेकर आएंगे।
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: हे देखो आ गए।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
5: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
6: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
7: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
8: TradeDepot.co.nz. Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia inverter heat pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia inverter heat pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
9: TradeDepot.co.nz.
3: We pulled it off, Johnny. We're rich!
9: Oh, no. I've left my glasses in the vault.
3: What? You're kidding me? Oh, they'll be covered in your fingerprints.
9: Oh, Pete! I went to Specsavers and got a smudge-resistant coating. They're not going to find a single print.
10: Someone's been to the Specsavers winter sale. There's 50% off lens options, including light reactive, drivewear, and smudge resistant. With two pairs from $169 or above, limited time, condition supply.
9: I think I dropped my wallet too.
11: Sun Tours case successful March 2026 Best of India Tour ke baad. Ab bookings open hai for Best of India September 2026 Tour. Delhi ke shopping, Agra ka Taj Mahal, Jaipur Amer Fort aur Elephant Ride, LP mein houseboat ka experience aur aanche Mumbai ki Bollywood Studios visit with all buffet meals, rides aur 5-star accommodation. All for just $8,500 per person. Contact Anil on 0800 for Sun Tours. That's 0800 478686. Limited spaces.
4: The beat of Bollywood.
12: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global headlines.
0: सुबह के मुख्य समाचारों में ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस के मुताबिक वेनेजुएला में आए भयानक एर्थक्वेक ने लगभग 59,000 बिल्डिंग्स को डैमेज या पूरी तरह से तबाह कर दिया है. कराकस के नॉर्थ में स्थित कोस्टल स्टेट लागुआयरा को डिजास्टर जोन घोषित किया गया है, जहां लगभग 29% बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है और कोस्टल एरियाज में सबसे ज्यादा बर्बादी जो है ये हुई है. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पेजेशकियान के साथ फोन पर बात की, जहां उन्होंने वेस्ट एशिया के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और तेहरान वाशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा की. प्राइम मिनिस्टर मोदी और ईरानियन प्रेसिडेंट दोनों के बीच हुई बातचीत के दौरान रीजन के हालात पर चर्चा हुई, जिसके बाद पीएम मोदी ने यूएस और ईरान के बीच हुए पिछले समझौते का स्वागत भी किया. फिजी में इलेक्ट्रल कमीशन के चेयरमैन जस्टिस उसैया रातुवुली और सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस आना मताई दीवा ने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन को सुझाव दिया है कि इलेक्शन ईयर में चुनाव कानून में किया गया कोई भी बदलाव जनरल इलेक्शन के बाद ही लागू होना चाहिए. उनका कहना है कि अगर कमीशन और फिजी इलेक्शंस ऑफिस खुद पहले इम्प्लीमेंट करने पर सहमत ना हो, तब तक अचानक नए कानून नहीं लाने चाहिए ताकि चुनाव के साल में स्टेबिलिटी बनी रहे. फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत राउंड ऑफ 32 का एक मैच फिलहाल सेकंड हाफ में खेला जा रहा है. इस मैच में अभी नॉर्वे की जीत आइवरी कोस्ट के खिलाफ 1-0 से हो रही है. आज सुबह 9 बजे फ्रांस स्वीडन से खेलेगा और आज का आखिरी मैच दिन में 1 बजे मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा. कल जो मैचेस खेले गए उनकी ओर अगर देखें तो पेरेगुए की जीत जर्मनी के खिलाफ पेनल्टी किक्स में 4-3 से हुई. मोरक्को ने नेदरलैंड्स को पेनल्टी किक्स में 3-2 से हराया और ब्राजील की जीत जापान के खिलाफ 2-1 से हुई. राउंड ऑफ 16 का पहला मैच जो है इसी रविवार की सुबह 5 बजे कनाडा और मोरक्को के बीच खेला जाएगा, जिसके बाद पेरेगुए सुबह 9 बजे एक मैच में खेलेगा. ब्राजील का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के मैच में सोमवार की सुबह 8 बजे होने को है. इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे. आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम की जीत हुई है. आज हुए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया. दूसरा सेमीफाइनल इसी शुक्रवार को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. ये रहे सुबह के मुख्य समाचार.
13: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स. गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स. विजिट indelibleholmes.co.nz.
4: Bollywood's most wanted.
14: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
15: मैं लाऊं अपना A game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है। 6:30 बज रहे हैं। बॉलीवुड में देखें तो यू नो बॉक्स ऑफिस पर क्लैशेस जो हैं कोई नई बात नहीं है, और इस साल भी कुछ क्लैशेस जो हैं ये हमें देखने को मिलने वाले हैं। एंड सबसे पहले तो अभी जो एकदम सामने आने वाली है आलिया भट्ट और इनकी फिल्म अल्फा को लेकर काफ़ी बातें हो रही। आई थिंक ये पहली फिल्म होगी आलिया भट्ट की फेस्टिवल एक्शन मूवी ना?
1: एक्शन मूवी आई थिंक या यू कैन से इट कि फुल फ्लेज्ड एक्शन मूवी यही हो सकती है, बट देन ऑन द अदर हैंड आई थिंक उन्होंने कई और फिल्मों में एक्शन किया हुआ है बट नॉट इन बॉलीवुड।
0: ओके, वैसे आलिया के साथ शर्वरी भी इस फिल्म में काम कर रही हैं, और दूसरी तरफ बॉबी डियोल का कैरेक्टर को लेकर भी काफ़ी बातें इस फिल्म में हो रही हैं। ये फिल्म जो है ये क्लैश करने जा रही है हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू डाई डू से।
1: Oh, okay. That's going to be quite interesting.
0: Yeah, क्योंकि इस सी अल्फा जो फिल्म है इसमें बॉबी डियोल एक एसेसिन का किरदार निभा रहे हैं, और दूसरी तरफ हुमा कुरैशी जो है वो भी इसी तरह का कुछ किरदार जो है ये निभाने जा रही हैं। बट देयर इज अ लॉट ऑफ सस्पेंस उस फिल्म को लेकर, तो दिस इज़ वन ऑफ द क्लैशेस। उधर इमरान हाशमी और इनकी जो फिल्म आवारापन 2, इसका फर्स्ट लुक जो है इसने काफ़ी बड़ा बज क्रिएट किया है, और दूसरी तरफ जब उनकी ये फिल्म रिलीज होगी उसी समय पर सनी देओल की फिल्म जो है बंटवारा 1947 ये भी रिलीज होने को है।
1: So there is definitely a lot of movies in line जो एक साथ या आगे पीछे जो है ये almost आगे पीछे release होने वाले हैं, and to some extent कहानियाँ जो हैं ये कहीं ना कहीं आपने expect की है या फिर similar sound करती हुई कहानी जो है एक दूसरे की है ये basically।
0: And August 28 को 3 फिल्में जो हैं ये release होने को हैं, ईथा वर्सेस विवेन और खोसला का घोसला 2, ये 3 फिल्में जो हैं ये 28th of August को रिलीज होनी जा रही है।
1: एक ही दिन पर 3 फिल्में।
0: Yes, three-way clash.
1: Very interesting, yeah.
0: और इनमें एक बायोपिक है, एक सुपरनेचुरल थ्रिलर है एंड अ कॉमेडी, ये सभी जो है एक साथ रिलीज होने के हैं। सो और भी कई फिल्में हैं जो इस साल क्या बोलते हैं क्लैश करने वाली हैं बॉक्स ऑफिस पर, तो उनके बारे में भी डिटेल्स बाद में चलकर हम आपको जरूर देंगे।
1: तो साथ हमारे बने रहिएगा, बॉलीवुड से जुड़ी भी खबरें या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी खबरें जो है ये भी आपके लिए डेफिनेटली हम लेकर आते रहेंगे।
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
4: Accurate traffic.
5: Thanks for your trust, Auckland.
6: A high of 15, staying a mainly fine day today. Into the city, looking mostly okay. 25 minutes Manukau to town on the southern. 50 in from Drury, slowing Papakura to Papatoetoe. An incident on the southern southbound just past the State Highway 20 link, but it's not affecting you too badly. Northern 19 in from Constellation, slow there to Glenfield. Northwestern 22 from Massey, slow Massey to Te Aratu.
5: Harcourts Cooper & Co, part of New Zealand's most trusted real estate brand. Licensed REAA 2008.
7: Whether you have a tickly or razor blade sore throat, there's a Difflam sore throat lozenge to soothe or numb your pain. Definitely Difflam. Sore throat sorted. Always read the label. Use as directed. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health Auckland.
8: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
9: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
10: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
11: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
12: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
13: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
14: And I am Tejal Vyas.
13: We are here with our new Nakkur super hit comedy natak Gujubai ni
14: Exchange Offer.
15: Friday, 3rd July, Victory Convention Center par Lending HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria nu navu natak Gujubai ni Exchange Offer. Hasi hasi ne lotpot thaywa tayyar thai jao. Tickets jaldi book kari lejo. Phone karo 021-244-6278 par.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 25 मिनट रह गए हैं 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आज फर्स्ट ऑफ जुलाई, भाई जुलाई का साल का सातवां महीना जो है ये भी शुरू हो चुका है.
3: Absolutely, the very first day for the seventh month of the year. और देखते ही देखते ये साल भी इतना रफ्तार से जो है ये गुजर रहा है. बट उम्मीद है कि समय के साथ आप भी रफ्तार से ही चल रहे हैं और whatever your goals are, you're working towards them, yeah, you're achieving them, जिससे आप अपने प्लान के साथ साथ चल रहे हैं. And you know, you've got things under control because that is what will make you feel really very happy. But just in case आप थोड़ा भी ऊपर नीचे अपनी टाइमिंग को लेकर तो चिंता करने की कोई बात नहीं, बिकॉज समटाइम्स सर्टन थिंग्स डोंट हैपन अकॉर्डिंग टू टाइम, बट जब वो होते हैं ना तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. तो प्रोबेबली दैट्स व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू.
2: आज फर्स्ट ऑफ जुलाई इज इंटरनेशनल रेगे डे.
3: रेगे म्यूजिक इज वेरी मच लव्ड. आई थिंक मोस्टली ये काफ़ी पॉपुलर है जो अफ्रीकन कंट्रीज है इसमें. बट देन इट हैज़ ओवर द इयर्स थैंक्स टू सम अमेजिंग आर्टिस्ट इट हैज़ स्प्रेड अक्रॉस ओवर द कंट्री, या यू कह सकते हैं पूरी दुनिया में ये कहीं ना कहीं फैल चुका है, जहाँ पर लोग जब इससे इंट्रोड्यूस हुए तो इसको पसंद भी कुछ करते हैं.
2: और साथ ही में आज इंटरनेशनल जोक डे भी है.
3: ओके,
2: आज मजाक कर सकते हैं आप किसी के साथ, उनको पसंद ना आए तो कहिए भाई आज इंटरनेशनल जोक डे है, थोड़ा एडजस्ट कर लो. इसके अलावा आज अर्ली बर्ड डे है, कई लोग बहुत तड़के सुबह उठते हैं तो आज आपको सेलिब्रेट करने का दिन है. और यहाँ तो अगर देखें विंटर का दूसरा महीना जो है ये शुरू हो रहा है और स्कूल का जो आखिरी हफ्ता है ये भी चल रहा है.
3: बिल्कुल, दिस फ्राइडे स्कूल हॉलीडेज बिगिन, विच मीन्स कि आप भी अगर तैयारियां कर रहे हैं स्कूली छुट्टियों की, यू प्लानिंग टू मूव आउट, देयर इज अ लॉट दैट्स हैपनिंग, कीपिंग योर किड्स बिजी, उनके यू नो स्केड्यूल के साथ अपना स्केड्यूल मैच करना. सो देयर इज सो मच दैट्स गोना हैपन फ्रॉम दिस वीक एंड आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट उसके लिए.
2: और साथ ही में आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो इनाम जीतने के कई मौके भी हम आपको देने वाले हैं. ऑल यू गॉट टू डू इज स्टे विद अस, और इनके बारे में जानकारियां हम आपको जरूर देते रहेंगे. एंड मत भूलिएगा आज शाम, नहीं कल शाम 5 बजे द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुजबे कुछ बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है. यू नो आप स्ट्रीट फूड दैट वेक्स अप एवरी सेंस, soundtrack of waves, laughter, late night stories, you know, दो tropical worlds एक साथ मिलने वाले हैं. क्या है ये सब कुछ जानने के लिए आपको कल शामिल होना होगा.
3: इतने दिनों से काफ़ी चीज़ें हम आपसे कहते आए हैं, नेट टाइम्स शायद वो चीज़ें आपके लिए सेंस भी नहीं मेक कर रही थी, पर फाइनली यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस की व्हाट वाज इट ऑल अबाउट. इसके वजह से कल आपको ज़रूर सैंडी एंड रुजबे को ज्वाइन करना है और समय याद रहे कल शाम 5 बजे.

0: लिए।
1: राम राम विजयन पूजा जी, नए महीने के पहले दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। एंजॉयिंग माई ड्राइव टू वर्क, लिसनिंग टू यू बोथ, हैप्पी बुधवार। जया, आपको भी ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो।
0: गुड मॉर्निंग विजय जी, पूजा जी, जय श्री गणेश, विशिंग यू बोथ अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड डे। विमलेशन प्रिया की ओर से ये मैसेज आया है। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के भी मैसेज के लिए। तो सुबह सुबह आपने हमें याद किया, अपना साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऐसे में आज चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपके साथ, जबकि हम जुड़े हुए हैं और आपके साथ बने हुए हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है कि आपके लिए हम लेकर आए हैं, और इसका जवाब जो है कि आप हमारे पास भेज सकते हैं ऑन 5599। और आपको क्या करना है कि हम आज आपको कुछ रिलेशनशिप बताएंगे एक्टर्स का, किसी और एक्टर के साथ या किसी नॉन पर्सनैलिटी के साथ, और वो जो रिलेशनशिप है ये सुनते हुए आपको अनुमान लगाना है कि उनका ये रिलेशनशिप किस एक्टर के साथ है, और उन एक्टर्स को आपको आइडेंटिफाई करते हुए कोई एक फिल्म का नाम बताना होगा जिसमें ये सारे एक्टर्स जो है ये मौजूद हो।
1: ओके,
0: फॉर एग्जाम्पल जया बच्चन का बेटा और साथ में ऐश्वर्या राय के फादर इन लॉ और साथ में यश चोपड़ा की बहू। सो इफ आई से दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप, तो आपके नाम में कौन कौन, आई मीन आपके जहन में कौन कौन एक्टर्स आए हैं?
1: आप रिपीट करें फिर से।
0: जया बच्चन का बेटा, ऐश्वर्या राय के फादर इन लॉ, यश चोपड़ा की बहू,
1: जया बच्चन का बेटा इज अभिषेक बच्चन,
0: राइट,
1: यश चोपड़ा की बहू कौन है, रानी मुखर्जी
0: जी,
1: और तीसरा वाला जो था किसी के,
0: ऐश्वर्या राय के फादर इन लॉ,
1: हाँ, अमिताभ बच्चन।
0: तो इन तीनों को मिलाकर कोई फिल्म का नाम याद आ रहा है आपको?
1: अभिषेक बच्चन,
0: हाँ,
1: अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी, नहीं मुझे तो नहीं याद आ रहा है। ब्लैक? नहीं,
0: ब्लैक में अभिषेक बच्चन कहाँ थे?
1: नहीं मुझे नहीं याद आ रहा।
0: यू डोंट रियली नो दैट? ओह माय गुडनेस, ओके, मैं यही सवाल पूछ सकती थी, बट एनीवेज, तो द करेक्ट आंसर वुड बी बंटी और बबली, बिकॉज़ इन तीनों ने एक ही फिल्म में एक साथ काम किया, दैट आई रिमेंबर इज बंटी एंड बबली, राइट?
1: ओह यस यस।
0: इसके अलावा हो सकता है कोई फिल्म हो जो मुझे भी फिलहाल याद नहीं है, बट यू कैन एक्चुअली फिगर इट आउट कि अगर कोई और फिल्म है तो, बट दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले दिस गेम। गॉट इट?
1: समझ गए।
0: एक एग्जांपल भी आपको कर दिखा दिया, अब आप समझ गए कि आपको ये गेम खेलना कैसे है। नाउ सोहेल खान्स ब्रदर, ओके,
1: राइट,
0: और ट्विंकल खन्नाज हस्बैंड, और निक जोनस की पत्नी, सोहेल खान के भाई, ट्विंकल खन्ना के पति, निक जोनस की पत्नी। अब आप इन सारे रिलेशनशिप को इवेल्युएट कीजिए, एक्टर्स गेस कीजिए और फिल्म का नाम बताइए जिसमें ये सभी एक्टर्स एक साथ आपको दिखे हो।
1: सोहेल खान के भाई, निक जोनस की पत्नी, एंड हु इज द थर्ड वन?
0: ट्विंकल खन्ना के हस्बैंड।
1: ओके, आई नो, मुझे पता चल गया।
0: या आई आल्सो नो, बट लेट्स सी क्या आपको पता है या नहीं। अगर आपको पता है तो जल्दी से हमारे पास अपना आंसर आप भेजिए। 5599 इज द नंबर टू टेक्स्ट। रिमेंबर BF लिखना है सबसे पहले, फिर आंसर लिखना है, और फिर हमारे पास अपना जवाब आप 5599 पर भेजिएगा।
1: तो जवाब जब आप भेजते हैं आपको उस ड्रो में हम शामिल करेंगे। आपको तो पता ही है कि द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा फॉर्च्यून की ओर से हम लेकर आते हैं। फॉर्च्यून का लाजवाब हैम्पर पैक भी जीतने का मौका भी आपके पास होगा। 10 kg चक्की आटा, 5 kg बिरयानी राइस, 5 liter सिंपली कैनोला ऑयल, टोमेटो पेस्ट और भी चीज़ें इसमें आप जीत सकते हैं। सो BF आंसर और नाम ये 5599 पर आपको हमें भेजना है।
2: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Tum ho jao papi ho, tum ho jao.

अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या हम

0: acuratetraffic.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: Spend the holidays at Mission Bay, the promenade.
3: Final day, lots of sun, a high of 15. Fine on motorways coming into the city, but a couple of issues. If you're heading to the airport, after you get off the southwest into the airport lane, just past Kirkbride Road, there is a crash heading towards the terminal. And southern, a crash southbound, just past the southwestern link. Emergency crews are there. Coming in, motorways just slowing down in normal spots. Drive times aren't too bad.
2: New arrivals, familiar favourites, and iconic waterfront location. Mission Bay, the promenade.
4: Arey Babita, thank you so much for giving me गुरुज नंबर यार
5: क्यों क्या हुआ
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रेस्पॉन्स फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी दैट्स 0800 564 424
6: For show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
6: Breakfast catch up. Throwback.
7: बस 10 मिनट रह गए हैं अभी फिलहाल 7 बजने में 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट अगले घंटे आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे भी विश करेंगे तो अगर आपने अपने बर्थडे मैसेजेस या शादी की सालगिरह के मैसेजेस हमारे पास नहीं भेजे हैं वक्त है आपके पास आप अभी ही उसे 5599 पर हमें भेज दें 7:30 बजे के बाद आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो हम आपको विश करेंगे ओनली ऑन हम 104.2 FM या फिर रोवर पर
8: तो याद रहे कि मैसेजेस समय से पहले आ जाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी एंड उसके साथ साथ आपको हम समय पर विश कर पाएंगे तो आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए उनको और स्पेशल फील करा सकते हैं जिनके लिए आपने ये मैसेज भेजा हो फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हमने आपसे एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन किया है आज हमने कुछ डिफरेंट तरीके से एक गेम जो कि आपके साथ खेलने का फैसला किया वे वी जस्ट सेट कि हम क्या करेंगे आपको कुछ एक्टर्स या फिर कुछ नॉन पर्सनैलिटी के साथ जो लोग रिलेशनशिप शेयर करते हैं एक्टर्स रिलेशनशिप शेयर करते हैं वो मेंशन करेंगे और रिलेशनशिप सुनने के बाद आपको अनुमान लगाना होगा कि ये कौन एक्टर्स हैं एंड वंस यू फिगर आउट कि ये कौन एक्टर्स हैं तो फिर उन सब का नाम जोड़ जाड़ कर आपको किस फिल्म का नाम मिलता है ये आपको हमें बताना है 5599 पर अपने नाम के साथ अपना आंसर जो है ये मैसेज करते हुए तो आज हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में कहा जया बच्चन के बेटे ऐश्वर्या राय बच्चन के फादर इन लॉ और यश चोपड़ा की बहू सो द आंसर वुड बी अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन एंड ऑफकोर्स रानी मुखर्जी और इन तीनों को मिलाकर जो फिल्म आपको याद आती है वुड बी बंटी एंड बबली तो उसी तरह से हमने क्वेश्चन आपसे पूछा कि ट्विंकल खन्ना के हस्बैंड सोहेल खान के भाई और साथ में निक जोनस की पत्नी तो आपको इवेल्युएट करना है कि कौन है ये एक्टर्स और फिर कौन सी ये फिल्म जिसमें इन तीनों एक्टर्स ने एक साथ काम किया हो
7: तो BF अपना आंसर और अपना नाम ये तीन चीजें आपको 5599 पर भेजनी है विधि है शिखा आलोक और साथ में 5073 गुंजन रोनल्ड आपने भी अपना जवाब भेजा है
8: और इसके अलावा अगर देखें तो हमारे पास कुछ और मैसेजेस जो है ये भी आए हैं और आलोक के बाद हाँ आपने अपना नाम नहीं लिखा है बट 5073 थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए 1168 आपके भी मैसेज के लिए थैंक यू प्रिया का मैसेज आया है फीजा ने अपना आंसर भेजा है साथ में दे समवन एल्स 5224 आपने भी नाम नहीं लिखा है थैंक यू आपके भी मैसेज के लिए
7: शरिल हैं साथ में नीतिका हैं और अर्पणा तकनीनी से थैंक यू सो मच आपके भी आंसर के लिए तो जब तक थ्रोबैक आप एंजॉय कर रहे हैं तब तक अपने आंसर्स 5599 पर आप भेजे देखिए आप में से कितने लोग हैं जो आज सही सही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अपने नामों को ड्रो में शामिल करने में कामयाब हो जाते हैं

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 5.7 डिग्रीज टेम्परेचर ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं आज का हाई 15। ओवरनाइट चिली कंडीशंस कम से कम 4 डिग्रीज। आज कई जगहों पर फ्रॉस्टी कंडीशंस आप एक्सपीरियंस करेंगे। मौसम साफ रहेगा। सनराइज इसी घंटे 7:34 AM पर, सनसेट शाम 5:16 पर होगा।
0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून।

0: Madness. 3 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग मैडनेस ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
1: इस घंटे मॉर्निंग मैडनेस में आपके लिए जबकि हम लेकर आने वाले हैं एक और एक हमारा इस घंटे का सफर, जहां पर सबसे पहले तो आपका दिन आज कैसा बीतेगा अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप्स, ये आपको हम बताएंगे. और फिर उसके बाद आज इसी घंटे आपको वेरी हैप्पी बर्थडे भी हम विश करने वाले हैं.
0: और साथ ही में 7:30 बजे न्यूज हेडलाइंस भी आपकी खातिर हम लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में. इतनी सारी चीजें इस दुनिया में होती रहती है, लेकिन उससे पहले कई खबरें जो है ये भी हम आपको देंगे. लेकिन उससे पहले सवाल आपने जो पूछा था.
1: हाँ, तो हमने क्या किया था, आपको कुछ रिलेशनशिप बताए थे जिसको आपको इवेल्युएट करना था, फिर एक्टर्स गेस करते हुए फिल्म का नाम जो है कि आपको गेस करना था. और हमने आपको 3 रिलेशनशिप बताए थे, सोहिल खान के भाई, साथ में ट्विंकल खन्ना के हस्बैंड एंड निक जोनस की पत्नी. लास्ट मैसेज मेरे ख्याल से अर्पणा का आया था फ्रॉम तकनीनी. थैंक यू सो मच अर्पणा आपके मैसेज के लिए. और उसके बाद सनी, इनका मैसेज आया. फिर किसी ने मैसेज किया है, नाम नहीं लिखा है अपना, 1351. साथ में स्नेहा, इन्होंने भी अपना आंसर दिया है.
0: सो थैंक यू सो मच. एंड द करेक्ट आंसर दिस मॉर्निंग,
1: द करेक्ट आंसर वुड बी मुझसे शादी करोगे.
0: तो आप मेरे ख्याल से सारे के सारे आंसर्स जो हैं ये सही ही आए थे. तो आपके नामों को हम ड्रॉ में ज़रूर शामिल कर रहे हैं. राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है ये आई है, और लोगों का ध्यान जो है इस खबर की ओर बहुत तेज़ी से गया है. रिपब्लिक की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जहाँ पर एक शख्स जो है ये चोरी करने के लिए गया एक दुकान में, और वहाँ से उसने 5 लाख रुपीस लागत के मोबाइल फोन्स जो है या स्मार्टफोन्स जो है ये चुराए. 5 लाख रुपीस का जो ये जो स्मार्टफोन्स है ये चुराए. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि वो एक मास्क पहन कर गए थे, और ये मास्क इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का था.
1: दैट्स क्वाइट इनोवेटिव आई वुड से. गलत काम तो किया वो बात तो है, बट किसी नोन शख्स का मास्क पहनकर जाकर मोबाइल फोन सक्सेसफुली चुरा भी लिया.
0: और 35-40 स्मार्टफोन्स जो है ये इन्होंने चुराए. और कल सुबह जो दुकान के मालिक हैं लक्ष्मण सेन, ये जब गए दुकान खोलने के लिए, और जब उन्होंने देखा सब सामान नीचे फर्श पर पड़ा हुआ है, एकदम इधर का उधर पूरी की पूरी दुकान उनकी हो गई है. और बाद में जाकर पुलिस को बुलाया उन्हें, सीसीटीवी फुटेज जो है ये जब देखा गया तब ये पाया गया कि ये शख्स जो है इसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मास्क पहना और दुकान से सारे स्मार्टफोन्स जो है ये लेकर चलता बना.
1: वेरी इंटरेस्टिंग यार, आजकल चोर मतलब क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, यू नो जस्ट टू चोरी करने के लिए. और इनके जो आइडियाज़ होते हैं, इनके जो तरीके होते हैं, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं खबरों में आ ही जाते हैं. बाय द वे, लाइक दिस सवा आपके लिए कुछ और भी इंटरेस्टिंग खबरें हम लेकर आने वाले हैं. बट रिमाइंडिंग यू ऑल कि आज बहुत से पेट्रोल स्टेशन पर आपको 10 सेंट्स ऑफ पर लीटर फ्यूल जो है ये मिलेगा.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papio. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: सबसे पहले मेष यानी एरिज, आज ऑफिस में काफी काम रहेगा आपके पास, कोलीग्स का उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, हेल्थ थोड़ा कमजोर रहेगा, इस बात का ख्याल रखें, किसी झगड़े झंझट को बढ़ावा ना दें, अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो है इसे अपने कंट्रोल में रखें।
3: वैसे वृष ने टोरस, आज आपके लिए बताया जा रहा है कि आज का ये जो दिन है आपके लिए थोड़ा हैवी रहने वाला है, बिकॉज यू फील अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम वर्क। नौकरी जो आप कर रहे हैं इसमें आपको सहयोग तो मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा काम होने की वजह से थकावट भी रहेगी। जल्दबाजी में कोई भी काम ना करे, परिवार में आपको सहयोग मिलेगा, अच्छा समय बीतेगा फैमिली मेंबर्स के साथ।
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं ऑफिस में, समाज में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, हो सके तो किसी प्रकार का रिस्क ना ले और रश ना करे कोई काम करते समय।
3: कर्क ने कैंसर, आपके लिए कहा गया है आत्म शांति जो है ये रहेगी, मतलब इन अ पीस, दैट्स व्हाट यू गॉना फील टुडे, यू विल बी वेरी मच फीलिंग हैप्पी। और बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, नौकरी में चैन की सांस लेंगे, दूसरे से कोई ज्यादा उम्मीद ना रखे, ऐसा आपके लिए कहा गया है, क्योंकि उम्मीदें पूरी ना होने की वजह से निराशा भी आपको हो सकती है काफी।
2: सिंह यानी लियो, बिजनेस अच्छा चलेगा और दोस्तों के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, अनजाने लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें और साथ ही में आज ख्याल रखें कि किसी भी प्रकार के झगड़ा झंझट जो है, किसी भी प्रकार की बहस में आज आप इन्वॉल्व ना हो।
3: और उसके बाद अगर देखा जाए तो कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि परिवार में जो सदस्य हैं आपके, उनका सपोर्ट मिलेगा, अच्छा खासा एनवायरनमेंट आपके आसपास बना रहेगा। नौकरी में आप जो भी मेहनत कर रहे हैं अच्छे रिजल्ट्स हासिल करेंगे, किसी व्यक्ति के ओर से आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा फॉर समथिंग यू हैड अप्रोच देम फॉर, और ये रिस्पॉन्स पाने के बाद यूड फील वेरी हैप्पी एंड रिलीव्ड एट द सेम टाइम।
2: तुला यानी लिब्रा, आज बिजनेस बढ़ेगा, पैसे मिलेंगे, साथ ही में आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर कोई डिसीजन ना ले, कोई काम ना करे, ये बहुत ही जरूरी है।
3: और उसके बाद आज वैसे बताया जा रहा है वृश्चिक ने कि स्कॉर्पियो के लिए मनपसंद कुछ खाने को मिलेगा जिसका स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा, और नौकरी में आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी तारीफ होगी और लोग आपसे सीखने के लिए भी काफी इंटरेस्टेड रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जिसकी वजह से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे आप।
2: धनु यानी सेजिटेरियस, जल्दबाजी ना करें, ख्याल रखें, केयरफुली अपने काम को आप करें, बिजनेस से फायदा होगा और साथ ही में अपने हेल्थ का ख्याल रखें, आज पेशेंस के साथ आप काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं।
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि समाज में आपकी तारीफ होगी, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे, घर बाहर दोनों ही ओर बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा, बस लेन देन के मामले में आपको केयरफुल रहना है।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, कोई बड़ा काम करने की प्लानिंग आप करेंगे, आत्मसम्मान बना रहेगा, बिजनेस से फायदा होगा, जिन दोस्तों से लंबे समय से मिलना नहीं हुआ है आज उनसे भी मुलाकात हो सकती है और कोई एक्साइटिंग खबर आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
3: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है बिजनेस में आप प्रोग्रेस देखेंगे और ये प्रोग्रेस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, समय बहुत अच्छा बीतेगा आपके लिए, रिस्क से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए साबित होगा। सो ये थी आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे। 20 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर, थोड़ी देर बाद आज का सेलिब्रिटी अलार्म,
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
4: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स,
4: हम
0: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: हर सुबह सेलिब्रिटी अलार्म भी हम आपके साथ खेलते हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि आज के सेलिब्रिटी की आवाज जो है ये हम आपको सुनाएं।
1: तो पहले आप आवाज सुनिए, उसके बाद आप क्या कीजिए। अगर आपको लगता है आपने गेस कर लिया है, मतलब आपको पता चल गया कि किसकी आवाज है, किस सेलिब्रिटी की आवाज है, तो आपको लिखना होगा BF, फिर उसके बाद में सेलिब्रिटी का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 5599 पर हमारे पास आप इसे सेंड कर दीजिए। इट्स दैट सिंपल।
2: तो आपने देखा होगा, मतलब मेरे सिर पे बहुत चेहरे पड़ी है।
0: तो ये है आज के हमारी सेलिब्रिटी।
1: वेरी इंटरेस्टिंग यार, इतनी छोटी सी ऑडियो क्लिप, और क्या इस छोटी सी ऑडियो क्लिप में आपने पहचाना कि ये कौन है। ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे इनके बारे में, बस अगर आपने पहचान लिया है तो BF लिखे, आंसर लिखे, अपना नाम लिखे और भेज दीजिए 5599 पर। आपके पास 5 मिनट्स का टाइम है अपना जवाब हमारे पास सेंड करने के लिए।
0: और आवाज जो है एक बार फिर हम आपको सुना रहे हैं, और इस बात का ख्याल रखें कि जब आप जवाब भेज रहे हैं तो BF लिखते हैं, उसके बाद जवाब लिखते हैं, अपना नाम भी आप लिखें तो बहुत अच्छा होगा। विल रियली अप्रिशिएट कि अगर आप अपना नाम जवाब के साथ जरूर भेजें।
2: ओ, आपने देखा होगा, मतलब मेरे सिर पे बहुत चेहरे पड़ी है।
0: तो ये कौन सेलिब्रिटी है, बहुत मुश्किल तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से।
1: नहीं, जाने माने हैं, काफी जाने माने हैं, पर कितना आसान है कितना मुश्किल है ये हमें मैसेजेस देखकर पता चलेगा जरूर। सो हरी अप, गेट योर आंसर्स डन और 5599 पर सेंड कीजिए हमारे पास, और देखते हैं कि आप में से कितने लोग हमारे पास सही जवाब जो है ये भेज पाते हैं। बाय द वे, आपको ये भी याद दिला दे कि आज लोटो पावर बोल इज $17 million।
3: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड, गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
4: मैं लाऊं अपना ए गेम।
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: हेडलाइंस। सुबह के मुख्य समाचारों में पाम्स्टन नॉर्थ हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट की भारी कमी के चलते अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट में एक भी डॉक्टर नहीं बचा है, जिससे मनवातु के पेशेंट्स को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेम्स आइवी ने सिस्टम में बदलाव लाने के लिए अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में स्कूल लंच प्रोग्राम की खराब मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स में कमी और बढ़ती फूड वेस्टेज पर सवाल उठाए जाने के बाद एसोसिएट एजुकेशन मिनिस्टर डेविड सिमो ने उनकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। सिमो ने इस रिपोर्ट को आधा सच बताया और कहा कि उन्होंने टैक्स पेयर के $360 मिलियन बचाए हैं, जबकि ये बवाल उन लोगों और पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा मचाया जा रहा है जिनका धंधा सेंट्रलाइजेशन की वजह से बंद हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 के मैच में अब नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। आज सुबह राउंड ऑफ 32 के एक मैच में नॉर्वे की जीत आइवरी कोस्ट के खिलाफ 2-1 से हुई। ब्राजील और नॉर्वे का मैच अगले सोमवार की सुबह 8 बजे खेला जाएगा। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के एक और मैच में आज सुबह 9 बजे फ्रांस स्वीडन से खेलेगा, जिसके बाद दिन में 1 बजे मेक्सिको की भिड़ंत इक्वाडोर से होगी। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। गूगल PFSL।

0: Go.nz. The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Accurate traffic.
1: Celebrate Matariki at Auckland Art Gallery.
2: Fine but chilly today, a high of 15. Northern Motorway flowing well this morning, 25 minutes in from Constellation. It's just heavy there to Sunny Nook, slow to the bridge. Northwestern, 30 minutes in from Massey, slow from Massey, a bit heavy from Point Chev. Southern, 42 in from Monaco, slow from Papakura, a few heavy spots. Crash southbound past the southwestern link, but it looks okay. Little slow heading to the airport after a crash earlier on George Bolt.
1: Matariki at Auckland Art Gallery. Waiata, art, Kapahaka, Kai and more. 10th July.
3: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Karanga Ahape station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Puhi Nui in just 32 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
4: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
8: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
9: क्यों? क्या हुआ?
8: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई, तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, no response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
10: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
0: The beat of Bollywood.
11: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Birthday greetings.
12: इसका बर्थडे भाई?
13: मेरा भी बर्थडे है, चलो लाइन में आ जाओ.
12: Happy birthday to you.
14: A very, very happy birthday. आज फर्स्ट ऑफ जुलाई. सबसे पहले नीलम मुले जी मैंगरी में और गुरुदेव कौर कुका हैंडरसन में अपना बर्थडे आप दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं. आज का ये स्पेशल डे आप दोनों को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे.
15: और इसके अलावा जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आज आपको हम देना चाहते हैं. आज जहाँ कहीं भी अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू. आज है फर्स्ट ऑफ जुलाई, द वेरी फर्स्ट डे फॉर द सेवन मंथ ऑफ दिस ईयर. और इस खास मौके पर अगर आज आपका बर्थडे है, सबसे पहले तो रियांश, अ वेरी हैप्पी सिक्स्थ बर्थडे टू यू. इट फील्स लाइक जस्ट यस्टरडे यू वर द बेबी एंड नाउ यू आर अ वंडरफुल बिग ब्रदर. We are so incredibly proud of how gentle, sweet and caring you are with the newborn. It is an absolute pleasure to watch you grow every day. Never lose your amazing curiosity and your eager desire to know everything about the world around you. The day you came into our lives, you brought love and joy that changed us forever. Happy birthday to our little superhero. May your day be filled with cake, laughter and all your favorite things. Love from little brother Ansh. मम्मी है स्नेहा, पापा है पंकज. और इनकी ओर से आपको वेरी हैप्पी बर्थडे रियांश. हमारी ओर से भी हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको हम विश कर रहे हैं.
14: और आज हैप्पी 15th बर्थडे टू माय डॉटर एंजल. आपके पेरेंट्स हैं राजेंद्र सिंह और परमजीत कौर, दोनों ने आज आपको बहुत प्यार दिया है. एंजल, ये दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. दूर और करीब से जितने भी रिश्तेदार हैं, सभी आज आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं. हम सभी की ओर से भी ये स्पेशल डे आपको अनेकों बार मुबारक हो.
0: मॉर्निंग मैडनेस.
14: मॉर्निंग मैडनेस में अभी 21 मिनट रह गए हैं 8 बजने में. और आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म, सरप्राइजिंगली कुछ गलत आंसर्स आज भी आ गए.
15: हमने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बिकॉज वी वर लाइक कि बहुत इजी ही गेट, काफ़ी जाने माने पर्सनालिटी है. मोहिनीत ने अपना आंसर भेजा एज नसीरुद्दीन शाह. साथ में कुछ और लोगों ने अपने अलग अलग आंसर्स जो है ये हमारे पास भेजे हैं. थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग, एटलीस्ट कोशिश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना जवाब भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अल्पेश, आपने वैसे शक्ति कपूर कहा है. कृणाल, आई एम वेरी सरप्राइज अबाउट योर आंसर. इन्होंने कहा अनुष्का शर्मा. नाउ फ्रॉम विच एंगल डिड दैट वॉइस साउंड लाइक अनुष्का शर्मा, आई हैव नो आइडिया, बट एज आई सेड थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग. आज के हमारे सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी अलार्म वाज
14: द ग्रेट खली.
15: सो दैट इज द करेक्ट आंसर. और जितने लोगों ने हमारे पास अपने आंसर्स भेजे हैं, आपने अगर द ग्रेट खली लिखा है, थैंक यू सो मच. कुछ लोगों ने जवाब दिया है, नाम नहीं लिखा है. वैसे हितेश शर्मा है, गुंजन है, अरफाज आपका भी आंसर आया है, साथ में सीमा आपने भी हमारे पास सही जवाब भेजा है, इमरान है, स्वाति है, और गुड मॉर्निंग मैसेज हमारे पास राजू आपने भेजा है. जय शिव शंभू, विजय भाई एंड पूजा जी, हैव अ ब्लेस्ड डे. थैंक यू सो मच, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे हम कहना चाहते हैं.
14: फ्रंसिना आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग. अभिषेक ऑल द वे फ्रॉम वेलिंगटन. सीमा है, प्रदीप, प्रीति और अन्य जितने भी लोगों ने अपने आंसर्स भेजे हैं, थैंक यू सो मच और पार्टिसिपेट करने के लिए. और कुछ देर बाद कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के और भी मौके ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम आपको देंगे.

0: Mornings made better.
1: Two frienda, char toast, butter, jam, or a special chai.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: Traffic.
4: Book your ski G trip today.
5: Cool bit clear today, a high of 15. It got a crash on Upper Harbour Motorway heading west towards Massey. It's at Beach Haven, but it's quite heavy both ways with a bit of rubbernecking. Northern, 30 minutes in from Constellation, we're heavy in patches there to the bridge. Northwestern, 34 in from Massey. Slow from Massey, heavy from Point Chev. Southern, 42 in from Monaco. Slow from Papakura, some heavy spots. Southwestern, a bit slow, add extra time to the airport.
4: To book your next ski G trip to Vancouver or Japan, go to fijiairways.com.
6: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively in Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
7: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले माइटन मेगा बॉटनी में फ्री किड्स एक्टिविटीज क्लासिक सॉसेज सिजल लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिवअवेज प्लस 4 टाइम्स एयर पॉइंट्स स्टोर वाइड टीज एंड सीज एंड एक्सक्लूजन अप्लाई दिस सैटरडे एट माइटन मेगा बॉटनी
8: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
9: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
8: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
9: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 or search PFSL T's and C's lending and credit criteria apply
10: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
11: Sorry about that.
10: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
11: Kogan Mobile, true Aussie value.
10: Terms and conditions apply.
0: Zabardast hits. Shuru ho jaye to rukte nahi. Playing Bollywood's biggest hits. Hum. The Breakfast Show.

ट्रॉफिक का वक्त हो चुका है, यानी कि एक और गाने के बाद न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये भी हम आपकी खातिर इस प्रोग्राम में लेकर आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनकी स्टोरीज आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। और ये खबर जो है आई थिंक फ्यू डेज बैक मैंने कहा था आपको सुनाऊंगा, लेकिन नहीं सुना पाया उस समय पर। तो दिल्ली के पटेल नगर की एक फैमिली की ये कहानी है, और उन्होंने क्या किया कि घर में लड़के की शादी जो है ये करवाई, और उसके बाद

0: हनीमून के लिए जो कपल हैं इनको नैनीताल जो है किए जाना था, लेकिन इस दौरान ऐसा कुछ हुआ कि शादी के बाद इतनी जल्दी मामला अब तलाक तक पहुंच चुका है।
1: ओ, इतनी जल्दी
0: तलाक तक पहुंच चुका है क्योंकि दूल्हे ने फैसला किया कि वो हनीमून पर अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जाएगा।
1: ओ,
0: क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी कि उनके पेरेंट्स भी उनके
1: हनीमून के साथ जाए।
0: हाँ,
1: ओके।
0: अब बीवी को
1: नई
0: नवेली दुल्हन को ये बात पसंद आई नहीं, उसने
1: तलाक हो गया।
0: हाँ, कि भाई जब मम्मी पापा भाई बहन सभी साथ होंगे
1: तो हम like a family trip, yeah.
0: हाँ, तो हम टाइम कैसे साथ में स्पेंड करेंगे एज अ कपल। हस्बैंड जो है उनके उन्होंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सिंगापुर से पढ़ा है और उन्होंने सिचुएशन को डिफरेंटली देखा। उन्होंने इंसिस्ट किया कि ही टुक हिज फैमिली अलोंग बिकॉज ही वांटेड एवरीवन टू बी हैप्पी।
1: ओके, बट वो फैमिली ट्रिप कर सकते थे बाद में, देयर वुड हैव बीन अ थिंग दैट जो उनके ओनली ऑप्शन था। बट नेवरदलेस इट्स लाइक समथिंग जो अब हो चुका है, उसके बारे में हम क्या ही कहें। बट ऑन दी अदर हैंड, इधर आपको हम ये भी याद दिला दें कि थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं आज का हमारा ट्रेंड पेट्रोल। और आज ट्रेंड पेट्रोल में आपके लिए जो अपडेट हम लेकर आए हैं, यू हैव टू लिसन टू दिस वन। जापान में कोई एक सिचुएशन है, एक चीज़ है जो काफ़ी ट्रेंड कर रही है फिलहाल, एंड व्हाट इज़ इट, क्या है इसके पीछे की कहानी, ये आपको जानने का मौका ज़रूर मिलेगा। बाय द वे, इसके अलावा आपको हम ये भी याद दिला दें कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में आपके पास बहुत सारे अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक और करण औजला, इनका पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर, ये सुपर सिटी ऑकलैंड में होने जा रहा है 25 अगस्त को। इसके लिए आप जीत सकते हैं डबल पासेस। और वहीं दूसरी ओर बस इसी महीने कुछ दिनों में, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 17 डेज में, आपके लिए ट्राइविजन लेकर आ रहे हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट। कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर ये आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड वेरी फर्स्ट टाइम के लिए आपको एंटरटेन करने के लिए, तो इसके लिए भी डबल पासेस जीतने का मौका आपके पास रहेगा।
0: कल हमने एक सवाल जो है ये शुरू किया था, तो आपने कहा था कि बाद में पूछेंगे,
1: जी
0: तो वही सवाल आज पूछेंगे ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, आज उसी के बारे में बात होगी। तो जवाब देते हुए ड्रॉ में शामिल होकर आज आप जीत सकेंगे हमारे साथ एक डबल पास, बिकॉज ड्रॉ आज ही होगा, ऑन द ब्रेकफास्ट शो होगा हमारे जाने से पहले।
0: सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर दिस और कई अन्य डिटेल्स जो है। एक कंपनी है जिन्होंने बहुत सारे इंजीनियर्स जो हैं इनको नौकरी से निकाल दिया था इन फेवर ऑफ AI। तो हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था कि फोर्ड जो है इसने शेयर किया है कि उसने हायर किया 350 वेटरन इंजीनियर्स को, और उनमें से कई इंजीनियर्स इनके फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं।
1: ओह ओके।
0: फोर्ड ने इन इंजीनियर्स को हायर किया आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स फेल टू टैकल क्वालिटी इश्यूज जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है।
1: देयर यू गो।
0: तो AI नहीं कर पाया जो इंसान कर रहे थे, और वापस उनको जाकर ह्यूमन बींग्स को हायर करना पड़ा टू यू नो मेंटेन दैट क्वालिटी और वो सारी चीज़ों के लिए। तो जरूरी नहीं कि AI सब कुछ आपके लिए कर सकता है।
1: एब्सोल्युटली, एंड हेंस प्रूव्ड हियर इन दिस केस एटलीस्ट। तो आपके लिए वैसे और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम जरूर लेकर आते रहेंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो दिस मॉर्निंग, और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल तो बस समय की ओर देखें, 7 मिनट ही बाकी हैं 8 बजने में। ठीक आठ पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट रहेगा, जिसके बाद रश आवर आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। फॉर नाउ एंजॉय दिस वेरी ब्यूटिफुल थ्रोबैक। सुबह सुबह बाबू सुप्रियो की आवाज और अलोंग विद हिम अलका याग्निक, एंजॉय करें इन दोनों को। क्या यही प्यार है 2002 में फिल्म आई थी उसी का ये गाना इस बार आपके लिए।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: अभी भी बिलो 6 डिग्रीज टेम्परेचर है ऑकलैंड में. आज का हाई 15, ओवरनाइट कम से कम 4 डिग्रीज होने वाला है. फाइन डे रहेगा. सनसेट शाम 5:16 पर आज होगा.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको. इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: अगर आपको याद हो, मैंने पिछले घंटे ही आपसे कहा था कि आज का ट्रेंड पेट्रोल आपको ज़रूर सुनना है, और फिर जब कहानी आप आगे सुनेंगे तो पता चलेगा व्हाई आई सेड दैट. एंड आज ट्रेंड पेट्रोल में आपके लिए हम अपडेट लेकर आए एक ऐसा ट्रेंड जो जापान में काफ़ी कंसर्निंग साबित हो रहा है, और इसके पीछे का रीज़न इज क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग एट द सेम टाइम. नाउ जापान में एक बहुत ही ट्रबलिंग ट्रेंड जो है ये सामने आया है ऑफ एल्डरली वुमेन, जो महिलाएं हैं हु आर अबव द एज ऑफ 60 और 60 इज एंड अबव इनकी उम्र है, तो इनके बारे में ये बात सामने आई है कि इन्हें काफ़ी भारी मात्रा में जेल में डाला जा रहा है फॉर माइनर थेफ्ट. अक्सर इन्हें सुपरमार्केट से शॉपलिफ्टिंग, जैसे कि खाने पीने के सामानों के मामले में, शॉपलिफ्टिंग के मामले में इनको अरेस्ट किया जा रहा है और इनको प्रिजन में डाला जा रहा है. और ये पिछले 2 decades में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज जो है इसमें ये देखा गया है. एंड द मोस्ट शॉकिंग बिट कि मैनी ऑफ दीज वुमेन हैव बिकम रिपीट ऑफेंडर्स. कुछ ऐसी भी महिलाएँ हैं who are believed to have stolen items, you know, बार बार prison जाने के बाद फिर वापस से वही. And जब जो experts हैं उन्होंने पता करने की कोशिश की कि इस trend के पीछे कारण क्या है, कि पिछले 2 decades में इतना ज़्यादा increase क्यों देखा जा रहा है of elderly women being in prison, और especially for you know, minor offences like shoplifting and stuff. तो तब जाकर पता चला इसके पीछे का रीज़न, और रीज़न था पॉवर्टी, लोनलीनेस, और साथ में जो गैप देखा गया है सोशल सेफ्टी नेट के मामले में. कुछ महिलाओं ने कहा कि प्रिजन में उनको खाना मिलता है, शेल्टर मिलता है, हेल्थ केयर मिलता है, और डेली कंपेनियनशिप मिलता है. और जब वो अपने खुद के लाइफ में सर्वाइव करने की कोशिश करती हैं तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिलती. एक 81-year-old महिला है जिन्होंने, जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने कुछ खाने पीने के सामान जो ये शॉपलिफ्ट किए थे आफ्टर शी रेन आउट ऑफ मनी, और बिफोर उनका नेक्स्ट पेंशन पेमेंट आता तो उन्होंने ये किया ताकि उनको वापस जेल में डाला जाए. इनके बारे में कहा गया है दैट शी हैड प्रीवियसली बीन जेल्ड फॉर द सेम ऑफेंस इन हर 60s, और शी लेटर सेड कि प्रिजन वॉज द मोस्ट स्टेबल लाइफ शी हैड एवर नोन इन जापान. इसके बारे में ये बताया गया है कि जापान फिलहाल फोकस कर रहा है इन टैकलिंग द रूट कॉज थ्रू, जिसमें बेटर वेलफेयर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, सब्सिडाइज्ड हाउसिंग जो है ये प्रोवाइड किया जा सके, कम्युनिटी प्रोग्राम्स हो ताकि आइसोलेशन जैसे प्रॉब्लम्स जो एल्डर्स में पाए जाते हैं वो कम किया जा सके, स्ट्रॉन्गर पोस्ट रिलीज सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके एल्डरली ऑफेंडर्स को, ताकि उनको ये ऑफेंस ना करना पड़े और जेल ना जाना पड़े, ताकि उनको ये सारी जो सुविधाएँ हैं ये. In short, the issue is increasing quite rapidly, और इसे social welfare challenge भी माना जा रहा है. It's not just a criminal thing, but a social welfare challenge as well, जिस पर काम करने के लिए एक ठोस कदम जो है ये उठाया जाएगा, ऐसा कहा गया है.
1: So let's see, you know, और क्या होता है या कुछ पता चलता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे. बट दे आर सो मेनी थिंग्स, आई मीन ऐसी और भी कई स्टोरीज होंगी जो शायद पब्लिकली सामने आती हैं, वही हमारे ध्यान में आती हैं.
3: स्टोरीज हम तक पहुंचती है बेसिकली, वो हमारे जहन में आती है और फिर उसके बारे में हम चर्चा करते हैं. बट यू नो द थिंग्स दैट पीपल इन दिस वर्ल्ड फेस, नॉट इन अ पर्टिकुलर कंट्री, लेकिन पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो भी फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी सिचुएशंस जो भी वो जिससे जूझ रहे होते हैं हर रोज़, उसके बारे में कह सकते हैं कि शायद इससे भी ज़्यादा यू नो हार्ट ब्रेकिंग है बहुत से मामलों में, बहुत से सिचुएशंस. और जैसे कि आपने कहा कि व्हेन इट कम्स टू नोटिस, दैट्स व्हेन हम इसके बारे में आप तक जानकारियां लेकर आ पाते हैं.
1: थोड़ी देर बाद व्हाट्स योर टेक में भी हिस्सा लेने का मौका हम आपको देंगे. मैसेज एक आया है, गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, यू गाइस मेड माय डे, आई रियली एंजॉयड द सॉन्ग मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, एज सून एज आई पार्क माय कार एट वर्क आई रियली हैड टू मैसेज यू, लॉट्स ऑफ लव, एंजॉयिंग योर प्रोग्राम. शालिनी का ये मैसेज जो है ये आया है.
3: थैंक यू सो मच शालिनी, वी अप्रिशिएट इट सो मच कि आपको ना केवल प्रोग्राम लेकिन गाने भी पसंद आ रहे हैं जो हम आपके लिए खास तौर पर लेकर आ रहे हैं.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: Authentic, original, and better than outright.

0: Sawaan Vijay here on The Breakfast Show with Vijay and Pooja on Hum, playing Bollywood's biggest hits 104.2 FM aur Rover Pera. Ashik, thank you so much aapke email ke liye. Aapne kaha hai, Jasmine Jyoti Mala apna secret birthday celebrate kar rahi hai. Mummy hai aapki Sandy Naidu, Dad Ashik Chand hai, saath mein behen hai aapki Jasmine, aur tamam jitne bhi friends and family members hai, sabhi aaj aapko yaad kar rahe hai, aur salgirah ki bahut sari shubhkamnaen aur badhaiyan de rahe hai sabhi ki or se. Yeah, special आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. बेस्ट विशेस हैंडरसन पुलिस प्रोसिक्यूशन टीम और लॉयर्स फ्रॉम वाई लो मैनुकाउ, ये आपने कहा है. सो जैस्मिन, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे.
1: मॉर्निंग्स मेड बेटर.
2: दो फ्रेंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
1: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: 80s के रेट्रो गाने.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
2: What's your take?
3: 18 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर व्हाट्स योर टेक का वक्त अब हो चुका है इस प्रोग्राम में. आज एक और चीज़ के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज हम आपको कुछ सुनाना चाहेंगे. इसे आप पहले सुन लें.
4: गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम यूरोपियन एंड आई लिव इन इंडिया नाउ एंड आई रियलाइज द पीपल आर कंग्रेचुलेटिंग यू हियर व्हेन यू बाय अ न्यू फोन और यू बाय अ न्यू स्कूटी और अ न्यू कार एंड दिस इज एक्चुअली सो नाइस. आई नेवर सॉ दैट हैपनिंग इन यूरोप. आई लव दैट, इट्स सो इंटरेस्टिंग. सो दैट्स सो पॉजिटिव एंड काइंड. सो या यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स फॉर व्हाट एल्स पीपल आर कंग्रेचुलेटिंग हियर.
3: तो ये इनका नाम है गैबी, शी इज़ फ्रॉम यूरोप, लेकिन ये इंडिया में रहती हैं और उन्हें बहुत सरप्राइजिंग लगा या उन्हें एक नई चीज़ जो है ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिला जब उन्होंने देखा कि इंडिया में लोग छोटे छोटे माइलस्टोन्स को भी सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं. और ये उनके लिए थोड़ा फॉरेन लगा उनको, क्योंकि शी वॉज नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ थिंग. अगर कोई फोन खरीद रहा है, एक नया फोन खरीद रहा है, तो कौन कॉन्ग्रेचुलेट
5: करने वाली क्या बात,
3: क्या बात है ना, कि एवरीवन डज दैट ऐसी चीज. लेकिन वहां पर ये होता और उन्हें ये अच्छा भी लगा. तो जब मैंने इनका ये वीडियो देखा और ये रिपोर्ट पढ़ी, तो मैं सोच रहा था कि आज आपसे पूछेंगे कि क्या इस यू नो इस जिंदगी के भगदड़ में हम अपने लिए इतने बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं कि छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना ही भूल गए हैं.
5: या इट हैज हैपेंड एक्चुअली, बिकॉज अब शायद हमारे लिए ऐसा होगा सिचुएशन कि कोई कुछ बड़ा कर रहा हो तो ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए. एंड सम हाउ वी आर नॉट रियली फोकस ऑन द फैक्ट कि जो लिटिल स्मॉल माइलस्टोन्स होते हैं दे आर ऑल्सो वर्थ सेलिब्रेटिंग.
3: तो ये आज हमने सोचा और आपसे पूछेंगे, व्हाट्स योर टेक, हैव वी स्टार्टेड यू नो हैव वी स्टॉप्ड सेलिब्रेटिंग स्मॉल सक्सेसेस इन आवर लाइफ, छोटी छोटी जीत जो अपनी जिंदगी में हम हासिल करते हैं, क्या उसकी खुशी मनाना हम भूल गए हैं या किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना हमने छोड़ दिया है, क्योंकि अब सभी का निशाना जो है बड़ी चीज़ों पर ही है.
5: राइट, so what is your take on this? Would you agree with this or would you disagree with this? Whatever your thought is, aap hamare paas zarur call kar sakte hain 0800-004866 par, aur hamare saath aap share kar sakte hain 5599 par text karte hue.
3: Good morning Afaz.
6: Good morning, kaise aap dono?
5: Badhiya Afaz, aap sunaiye, aap kaise ho?
6: Main bhi acha hu, bas thand ke maze le raha hu.
5: ठंड के मजे ले रहे हैं, वेरी गुड. बट व्हाट्स योर टेक ऑन द टॉपिक टुडे?
6: मुझे मैं अग्री करता हूँ कि ऐसा हो गया है, क्योंकि अभी हर किसी को बड़ी चीजें चाहिए, बड़ा माइलस्टोन करना है. बट मेरे मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जब आई यूज टू लिव इन इंडिया, तो मेरे घर में ये चीज होती थी कि छोटी छोटी चीजें भी बहुत सेलिब्रेट होती थी. बट यहाँ पे आके वो कम्प्लीटली चेंज हो गया, क्योंकि अभी वो ऐसा हो गया ना कि अभी आप एक चीज के पीछे पड़ते हो. जैसे कोई नया आता है तो वो उसको पहले वर्क वीजा का टेंशन होता है.
3: हाँ.
6: वो वर्क वीजा लेता है, फिर उसको रेसिडेंसी का टेंशन होता है, फिर वो जब अचीव कर लेता है उसको घर का होता है, घर होने के बाद में फिर उसको मिलेनियर बन जाना है. तो वो सारी बड़ी चीजें ही वो कर रहा है, बट छोटी चीजों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे लोग. और मैं पर्सनली ये चीज समझता हूँ, क्योंकि पर मैं ट्राई करता हूँ, ऐसा नहीं है कि छोटी चीजें भी अगर कुछ होती है तो मैं हम लोग पूरा ट्राई करते हैं, मैं और हिना, कि हम लोग उसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो भी आपका एक अचीवमेंट है और वो करना चाहिए. क्योंकि जब आप छोटी खुशियों को एंजॉय करना शुरू करते हो ना, तो एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है आप में, और वो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में बेनिफिशियरी होती है.
5: ओके,
3: थैंक यू आयफाज, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस जो है ये शेयर करने के लिए। तो आयफाज सहमत हैं कि भाई हमने शायद कहीं ना कहीं कम कर दिया है या छोड़ दिया है अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना। आपका क्या टेक है इसके बारे में? आओ 800-004-866। कभी कभी हमें एहसास भी नहीं होता ना, वी डोंट इवन रियलाइज दैट वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग।
5: एब्सोल्युटली, आई मीन द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि व्हेन वी आर किड्स, तो जो चीज़ें हम बचपने में करते हैं वो चीज़ें हमें इतनी सारी खुशियाँ देती है कि बड़े होकर वही चीज़ें जब हम कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं देन वी स्टार्ट मिसिंग दोज थिंग्स बिकॉज वी एक्चुअली रियलाइज कि वो सारी चीज़ें थी जो हमें हैप्पी रखती थी, हमें यू नो कंटेंट रखती थी एंड वी यूज़ टू अप्रिशिएट लाइफ इवन मोर। बिकॉज आप यही देख लो ना कि जब हम बच्चे होते हैं हम कितनी सारी छोटी छोटी अचीवमेंट शेयर करते हैं, इवन स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि अगर हम खुद पर कुछ खा ले, खुद उठा ले, बच्चे जो होते हैं उनको कितना हम चीयर करते हैं, वी सो हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि ओ दे हैव डन इट ऑन देयर ओन, इट्स लाइक अ बिग डील। और या फिर कोई एक शब्द उन्होंने सही तरीके से बोला, कोई लेटर सही तरीके से लिखा, तो वो भी एक अचीवमेंट है, वो भी एक सेलिब्रेशन का कारण बन जाता है एंड दिस इज हाउ लाइफ शुड बी एक्चुअली।
3: गुड मॉर्निंग, हेलो,
6: गुड मॉर्निंग विजय भाई, गुड मॉर्निंग पूजा जी, कैसे हो आप?
5: बढ़िया जी, आप कैसे हो?
6: वेरी वेरी वेरी गुड गुड गुड। अच्छा ये जो है वेरी नाइस टॉपिक, बट यू नो छोटी छोटी चीज वहां पर जो गाड़ी खरीदे या कुछ कोई पास हो गए, बुरे मोहल्ले में मिठाई बनती है बांट देते।
3: अच्छा,
6: अरे मेरा बेटा आज पास हो गया, अरे आज ये गाड़ी लिए, पूरे मोहल्ले को स्वीट बाजार, स्वीट बना दो, स्वीट भेज दो सबको, है ना। अब यहाँ पर अभी सब कुछ चेंज हो गया ना, डिफरेंट यू नो, अभी इंस्टेड ऑफ गिविंग स्वीट्स पोस्ट कर देते कि आज मैंने गाड़ी ले ली, नहीं
5: सोशल मीडिया
6: है ना, ओ मेरा बेटा पास हो गया, चलो आज डाल दो इस पे, यही मिठाई हो गया, कितना स्वीट आ गया, कितने लाइक्स आए, कितने शेयर हो गया। तो वो तो छोटी छोटी चीज होती थी ना वहां पर, वी मिस द थिंग यू नो, छोटी छोटी चीज को ना खीर बना देते थे, कुछ नई अगर कुछ अचीवमेंट कर दिए, नया किसी ने कुछ सैलरी बढ़ा दी या तो इंक्रीमेंट आ गई है
3: यू नो, छोटी छोटी चीजों को हम भूल गए हैं सेलिब्रेट करना। थैंक यू सर, थैंक यू आपके कॉल के लिए। गुड मॉर्निंग, हेलो,
2: गुड मॉर्निंग विजय भाई, कैसे हो आप?
3: हम ठीक है, आप कैसे हो?
2: जी बढ़िया, पूजा जी कैसे हैं? ठीक है,
5: एकदम एकदम बढ़िया हूँ मैं भी, आप सुनाइए।
2: जी बढ़िया जी, मैंने आज का अभी खाना ऑन किया है, टॉपिक मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता हूँ। तो यार ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ, जो वहाँ पूजा जी ने अभी बोली है कि छोटे बच्चे ऐसा करते हैं कि छोटी छोटी चीजें वो खुद उठाते हैं, कुछ करते हैं, तो ऐसे ही मेरे बच्चों के साथ है कि बड़े वाला अर्पित जो है वो तो काम वगैरह कुछ ऐसे चाय वगैरह बना के दे देता है, तो उसमें काफी, क्योंकि वो भी बड़ा हो गया है तो वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट थोड़ा कम होता है, तो छोटे वाला जो है अर्पित वो एक बार उसने लास्ट भी की चाय बना के मेरे को दिया, मेरे को इतना एक्साइटमेंट हुआ, इतना अच्छा लगा कि अरे भाई ये छोटे बच्चे अभी भी ये ऐसा कर रही है, हम सेलिब्रेशन करेंगे ऐसा, अभी वीट वेक्स बना लेता है या कुछ कोई भी छोटा छोटा काम भी कर लेता है तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो हम बड़ी खुशी से करते हैं। और लास्ट वीक उससे पहले भी एक स्कूल का अर्पित को मिला था, तो उसने प्लांट वगैरह उसमें लगाए, तो वो इतना खुश हो रहा था उसको देख के, मैं भी ये बात को नोटिस कर रहा था कि हम बड़ी बड़ी जो खुशियां है उसमें ही लगे हुए हैं, जो छोटी छोटी अब है उनको हम एंजॉय नहीं कर रहे, तो हमें करना चाहिए इसका।
5: राइट,
3: थैंक यू भूपिंदर आपके कॉल के लिए और अपना एक्सपीरियंस जो है ये शेयर करने के लिए। यू नो आज सुबह जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था, अच्छा परविंदर का कॉल आ रहा है, वो ले इसके बाद बात करते हैं। गुड मॉर्निंग परविंदर।
7: गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग?
5: बढ़िया जी, आप कैसी हो परविंदर?
7: मैं अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, दो दिनों बाद छुट्टियाँ।
5: That's amazing, yeah. But हम आपको जरूर मिस करेंगे क्योंकि हमें पता है कि छुट्टियों के दौरान आप इतनी बजे तो हमको कभी कॉल ना करें।
7: तो आप मुझे एक दिन दे दो ना जिस दिन मैं आ जाऊँ, हम सारे बैठ के मिलके बात करेंगे।
5: आ जाओ
7: के साथ। मुझे किस दिन आऊँ?
5: जिस दिन आप जल जाग जाना उस दिन आ जाना।
3: किसी भी दिन
7: ठीक है, मैसेज करती हूँ।
5: तो बताइए आज के टॉपिक के बारे में जी।
7: जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हम छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करना ना वैल्यू नहीं करते। ये हमें बच्चे याद कराते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में कह सकती क्योंकि मेरा बेटा छोटा है ना।
5: हाँ।
7: वो मतलब मेरा हस्बैंड कह रहा था छोटा सा कोई टॉय भी लेंगे ना, वो बोलेगा ये न्यू टॉय, और वो सभी को दिखाएगा फोन, जैसे अगर कॉल किया है वो सभी को दिखाएगा, लुक पापा गॉट मी न्यू टॉय। तो मेरा हस्बैंड कह रहा था कि कितनी छोटी सी चीज से भी खुश हो जाता है। तो फिर उस दिन मैं सोच रही थी कि हम लोग भूल जाते हैं, नॉट भूल जाते हैं, शायद वैल्यू नहीं करते कि ये तो बहुत छोटी चीज है ना, इसका तो क्या ही करना। हाँ, तो करना चाहिए छोटी छोटी चीजों को भी ना, क्योंकि वो छोटी चीज शायद किसी और को नसीब में भी ना हो, जैसे आप अभी आपने जो जापान वाला जो टॉपिक लिया था।
3: बिल्कुल।
7: तो किसी के नसीब में वो छोटी खुशी है भी नहीं, तो जो है उसको सेलिब्रेट करना
5: बनता है। एब्सोल्युटली। थैंक यू परविंदर, थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू आपके कॉल और टाइम के लिए। अनफॉर्चुनेटली अभी और कॉल्स का टाइम हमारे पास नहीं है। ये स्टोरी जब मैं पढ़ रहा था तो कल जो हुआ व्हाट आई सॉ विद आवर डॉटर वाज वो बात मुझे याद आई, क्योंकि उसे कुछ चाहिए था ना, एक टॉय जो है ये चाहिए था, तो हम उसको टॉय लेने के लिए लेकर गए एक शॉप में। अनफॉर्चुनेटली जो खिलौना उसे चाहिए था उस टाइम पर उस शॉप में नहीं था, बट She got something else. उसने कहा कि I'll take this. And उस समय पर उसके चेहरे पर जो excitement और जो खुशी थी, उसे इस बात का दुख नहीं था कि जो वो चाहिए था उसको वो नहीं मिला.
5: Yeah.
3: लेकिन जो मिल गया उसको कितने चाव से और कितनी देर तक उसने celebrate किया, you know, बाद में भी उसके साथ वो खेलती रही, अपने पास ही उसको रखा। आज सुबह जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था गैबी की, तब मुझे उसका या कल जो कुछ भी था वो याद आया।
5: You could relate to it.
3: Yeah, basically.
5: Yeah, and that's why I said ना कि how to celebrate life, और ये जो small achievements होते से कैसे celebrate करते हैं, ये बच्चों से ही सीखना चाहिए। When we are kids, we do that. When we grow up and we see kids around us, हम उनके लिए भी करते हैं, मतलब उनके छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर हम सेलिब्रेशन करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आवर सेल्व्स एज अडल्ट्स, खुद के अचीवमेंट्स पर या अपने जो और फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर हम वो नहीं करते हैं। वी जस्ट वेट फॉर दैट बिग अनाउंसमेंट। तो दैट इज़ अनदर थिंग, यू नो, कि लाइफ की एक सीख है जिस पर जितना जल्दी हम काम करें उतना अच्छा, बिकॉज दीज मोमेंट्स दे नॉट गोना कम बैक।
3: उर्मिला जी का मैसेज आया है, छोटी छोटी खुशियों से बड़ी मंजिल रीच करते हैं, शुड सेलिब्रेट ऑल दैट कम्स आवर वे।
5: एब्सोल्युटली ट्रू। तो आप भी अगर इस टॉपिक से अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, यू हैव गॉट रीजंस कि व्हाई यू अग्री और डिसएग्री, डू लेट अस नो, सेलिब्रेट कीजिए हमारे साथ भी इस पल को, और 5599 पर अपना मैसेज आप हमें सेंड कर सकते हैं।
8: सीधा अंदर आऊं, मैं लाऊं अपना ए गेम।
0: Brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Dry July starts today.
4: A fine but cool one all day today. Got a high of 15. A crash on Upper Harbour Motorway westbound at Squadron Drive, Beach Haven area, Greenhithe. It's been blocking westbound lanes. One apparently open through that area, but it's a very heavy journey both ways. Southern quite slow, 53 minutes in from Manukau. Slow at Manurewa, heavy o Tahuhu to Ringuera. Northern, northwestern, not too bad, but still some heavy patches.
3: Go dry this July to raise funds for cancer support. Search Dry July to register.
5: Hey. The boss shouted us coffees this morning from BP.
6: No way.
7: We in trouble?
5: Nah, it's BP Plus.
7: What is that?
5: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
8: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months. Plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
9: At Bunnings, you can make cleaning up your home easy with Sally's 750ml Rapid Mole Killer, only $9.90. Or an all-set 50-litre clear storage container, just $8.99. Bunnings makes cleaning easy. Lowest prices are just the beginning.
10: We've got your ticket to an epic New Zealand getaway. Flights are on sale now with Air New Zealand. Explore our beautiful country. Hurry, NZ sale ends midnight 2 July. Travel periods, fruit exclusions and conditions apply. Book now at Air New Zealand.
11: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
12: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
13: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 और विजिट legalassociates.co.nz
14: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
15: And I am Tejal Vyas.
14: We are here with our new Nakkur super hit comedy natak Gujubai ni
15: Exchange Offer.
16: Friday, 3rd July, Victory Convention Center par. Lending HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria nu new natak Gujubai ni Exchange Offer. Hasi hasi ne lot pot thaywa, tayyar thai jao. Tickets, jaldi book kari le jo. Phone karo 021-244-6278 par.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
17: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
18: 19 मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 9 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और अभी वक्त है कि आपको हम एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करें कि यू गो इनटू द रो जहां पर आप करण औजला और उनका पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर ऑकलैंड जो आने वाला है उसके लिए एक डबल पास जीतने का मौका हासिल करें स्पार्क अरीना में रहेंगे ये 25th ऑफ अगस्त को विद हिट मेकर इकी और टिकट्स आप ले सकते हैं livenation.co.nz से या hum.rover.nz आप विजिट करें डिटेल्स की खातिर
19: तो आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है हम आपको करण औजला का कोई एक बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है उसका एक छोटा सा पार्ट जो है ये सुनाएंगे नॉट रियली रिवीलिंग कि गाना कौन सा है बट जस्ट सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सके कि गाना कौन सा है एंड वंस आप आइडेंटिफाई कर ले तो आपको हमारे पास अपना जो आंसर है ये भेजना है सबसे पहले के आई यानी कि करण औजला इसके इसका जो कीवर्ड है ये आपको डालना है फिर अपना नाम लिखना है जवाब लिखना है और 5599 पर टेक्स्ट कर देना है इतना इजी है ये पर क्या आप गाना आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं ये टोटली आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है
18: तो थोड़ा सा हम आपको सुनाएंगे और ये तो शायद इजी रहे क्योंकि ये गाना बहुत पॉपुलर है थोड़ा सा सुनने पर ही शायद आपको अंदाजा लग जाए

0: आपको अनुमान लगा?
1: हाँ मुझे तो पता है, बट आपको पता चला या नहीं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज बेसिकली लाइक द इंट्रो म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग ना.
0: हाँ, गाने का इंट्रो म्यूजिक ही हमने आपको सुनाया. ये सुनकर आपको आइडेंटिफाई करना है इफ यू आर ट्रू करण औजला फैन. आप बड़ी आसानी से जवाब दे देंगे और उसके बाद गाना कौन सा है और अपना नाम, ये तीन चीजें लिखकर 5599 पर आपको हमारे पास भेजना है. 5 मिनटों का टाइम है आपके पास जिस दौरान अपने आंसर्स आप हमें भेज सकते हैं.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: So,
1: 3 crispy drumsticks and regular fries for just $9.90 at Popeye's Chicken this week.
2: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
3: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
4: Hi boys, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था।
5: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
6: But should we call her, sir?
7: इसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलाएंगे।
4: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
2: YRF Spy Universe presents
5: Alpha.
2: Releasing in cinemas on 3rd July. Distribution partner Forum Films. Rating TPC.
4: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
10: अभी तो 8.5 मिनट ही रह गए हैं 9 बजने में,
11: और 9 बजने से पहले आपको ये भी हम बता दें कि थोड़ी देर पहले हमने आपके लिए जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन ये किया था, करण औजला और इनका पी पॉप कल्चर टूर, इसके लिए आपको डबल पास जीतने का मौका भी दे रहे थे हम, पर कुछ लोग अपने हाथों से ये मौका गंवा चुके हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमने जो गाना आपको आइडेंटिफाई करने को कहा वो तौबा तौबा नहीं है. A lot of you have gone ahead and written Tauba Tauba, to aapko bata de, that is not the correct answer, which means if you don't have the correct answer, you can't be part of the draw.
10: तो सही सही गाने को आइडेंटिफाई करना इज इम्पोर्टेंट, ताकि आपका नाम उस ड्रो में शामिल हो सके, जिसमें अगले मंडे को आप एक डबल पास जीतेंगे टू वॉच करण औजला और इनका पिप हॉप कल्चर वर्ल्ड टूर जो है स्पार्क अरेना में जब होगा. तो अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा हम आपको एक बार फिर फॉर द लास्ट टाइम सुना रहे हैं, जस्ट सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द सॉन्ग. तो अब बताएं कि ये कौन सा गाना हो सकता है. सबसे पहले लिखना है आपको के आई, उसके बाद अपना जवाब और अपना नाम, और उसे 5599 पर भेजें. थोड़ी देर बाद फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32 का अगला मैच जो है ये भी शुरू हो जाएगा, और इस पर भी अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे.
11: तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, फिलहाल इस थ्रोबैक का मजा उठाइए, लेकिन साथ ही साथ जवाब भी देते रहिए 5599 पर. के आई लिखकर आइडेंटिफाई कीजिए करण औजला का कौन सा गाना जिसका म्यूजिक अभी हमने आपको सुना है. इट्स नॉट तौबा तौबा, जैसे कि हमने आपको पहले बताया है. सही जवाब तो हम रिवील करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन साथ ही साथ अगले घंटे टॉप ऑफ द आवर क्या बक्ति हो, तैयार रहिएगा आप.

0: accurate traffic.
1: Switch to AMI car insurance.
2: Fine today, but could need a heater too, a high of 15. Most motorways easing up, but Upper Harbour Motorway still pretty heavy both ways after a crash westbound near Squadron Drive earlier. Actually, two crashes in a similar area. One westbound lane open through there, but it's just a bit of a chocker drive. Northern not bad, just slow from Constellation Drive, Northwestern. Some heavy patches from Point Chev. Southern, heavy Otahu to Remuera.
1: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
3: Please use your imagination for the following ad.
4: If I won Powerball, I'd build my dream. Then I'd even things out with a massive donation to...
3: Imagine winning $17 million this Wednesday. Play in store or online.
5: Get the kids creating these school holidays with awesome arts and crafts deals at Warehouse Stationery. Like 25% off Crayola, 20% off Alma's slime kits and glue, plus loads more deals at Warehouse Stationery. Conditions apply.
6: Discover the magic at Go Bananas Chai Ke, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
7: Go Bananas Chai Ke is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Chai Ke Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: Reliance Ventilation System.
9: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
8: Moisture और ventilation का problem लगता है.
9: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
8: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
10: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18.
11: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
12: Sorry about that.
11: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
13: Hum, time check.
14: Good morning, it's Matik Novajrehi here.
13: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Crews are out laying grit as freezing temperatures impact roads throughout the central South Island. The Transport Agency is urging extra care on all inland highways. State Highway 8 remains closed between Lake Tekapo and Omarama due to black ice. And a crash in icy conditions has closed the Dunedin Southern Motorway southbound from the Ryslaw Road overbridge. New listings are on the up, with property sellers recording their busiest June in more than 5 years. Sarah Wood from realestate.co.nz says people have realised changes the new constant, so we're no longer waiting around.
16: Lots of new options for buyers, seeing nearly 8,000 new properties come to market. It's the largest number of new listings that we've had in a June since 2020.
15: Queenstown is gearing up for one of their busiest winter tourism seasons. Its airport is expecting more than 785,000 passengers over the next 3 months. Mayor John Glover says the hustle and bustle is being felt already.
17: The streets are humming. You know, it's not even the school holidays yet.
15: The cost of sending a letter with NZ Post has gone up from today. It will now set you back $3.60 to send a standard letter. And a person is being tested for suspected Ebola in Scotland after returning from an affected country and presenting with symptoms. In sport, France are just kicking off in their round of 32 match against Sweden at the FIFA World Cup in New Jersey. Earlier, Erling Haaland scored in the 86th minute on TVNZ as Norway beat Ivory Coast 2-1 in Dallas.
18: Haaland! Well, it had to be. He rolled it into an empty net.
15: Football updates brought to you by Hisense. And Australia are the first team through to the Women's T20 Cricket World Cup final, hammering the West Indies by 8 wickets at the Oval.
13: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
19: World's best. Hamari good brands nahi hai.
13: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
14: 7.3 degrees temperature abhi Auckland mein aap feel kar rahe hain aaj ka high 15, overnight kam se kam 4 degrees. Mausam saaf aur suhana rahega. Aaj sunset sham 5:16 par hoga.
13: The Breakfast Show with Weejay and Pooja,
7: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
13: What's going on? Kya bakte ho?
0: Are kehna kya chahte ho?
12: तो आज का जो हमारा व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस घंटे में, लेकिन उससे पहले क्या बकते हो ये भी तो सुना दे आपको. तो क्या बकते हो मैं आज आपके लिए साउथ कोरिया की एक बड़ी ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट के बारे में बातें करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको यू नो बहुत से अलग अलग स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए इनकरेजमेंट मिलता है, साथ में आपको यू नो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, रिकग्निशन मिलता है. तो वहीं पर साउथ कोरिया में एक ऐसा भी स्पोर्ट है जिसे लोग हर साल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये कह सकते हैं खुद में एक रिवॉर्ड है. इन साउथ कोरिया डूइंग नथिंग इज ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड एज अ स्पोर्ट. पीपल लिटरली कम्पीट टू डू नथिंग. No phones, no talking, no sleeping. Just being there, just existing. और इसे कहा जाता है space out competition. Participants को judge किया जाता है on their lowest heart rate, calm breathing, stillness over time, और जो winner है उसे the most relaxed human का खिताब जो ये मिलता है इस competition में. Why does this exist is क्योंकि जो burnout आजकल लोग face कर रहे हैं, it's become so extreme कि rest जो है इसे legit बनाने के लिए इसे introduce किया गया. In a culture जो obsessed है with productivity and of course you know results, rest जो है it has become rebellion. और psychologists का कहना है कि constant stimulation जो है आपके nervous system को एकदम fight mode में रखता है. You are stuck in that fight or fight flight mode basically. Or doing nothing allows aapke brain ko to finally enter the rest and repair mode, jo bahut zaruri hai aapki well-being ke liye. Isse laziness nahi kaha ja sakta kyunki ye laziness hai bhi nahi. It's basically a nervous system regulation, recovery or prevention jo aapke brain ke liye, jaise ki maine kaha, ye bahut healing mana jata hai, because when your brain is bored, it basically heals. Aap imagine kijiye कि इफ़ रेस्ट ना हो और समथिंग जो आप कर रहे हैं उसके बाद आपको मौका ना मिले आराम करने का, तो आपकी क्या मतलब आपका हाल क्या होगा.
14: एग्जैक्टली.
12: बट इफ़ यू इमेजिन स्लोइंग डाउन एंड यू जस्ट नीडिंग दैट टाइम टू काम डाउन, तो आप क्या फील करेंगे, हाउ काम एंड हाउ रिलैक्स विल यू फील. सो साउथ कोरिया अपेरेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फर्स्ट, जिसके बाद चलकर उन्होंने इसका ये जवाब ढूंढा. एंड इफ डूइंग नथिंग फील्स अनकम्फर्टेबल, That is probably a sign कि इसकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है. So this is something that actually has come up in a research कि over the period of time ये जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, it will catch up on you and it's not a good thing, specially आपके brain के लिए. So help regulate your nervous system, अपना focus improve कीजिए, अपना stress कम कीजिए और support your emotional well-being. और स्पेस आउट कंपटीशन जो है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया.
14: अमेजिंग अमेजिंग थिंग. और एक और स्टोरी जो है लगे हाथों मैं भी आपको बता दूं. और ये स्टोरी जो है जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा अरे ये क्या हो गया. और ये खबर जो आई है ये बिहार की थी, जहां पर आपको याद होगा कुछ समय पहले एक ब्रिज जो है ये चोरी हो गया था.
12: हाँ, पूरा का पूरा पुल चोरी हो गया था. यस
14: यस. अब उसके बाद ये खबर आ रही है कि वहां पर एक पूरा मोबाइल टावर जो है
12: वन चोरी हो गया.
14: हाँ, 132 feet मोबाइल टावर जो है ये चोरी हो गया है.
12: वाओ, टैलेंट मैन.
14: 15 kVA जनरेटर जो है ये भी वहां से गायब हो गया है. ये तब पता चला व्हेन ऑफिशियल्स और एम्प्लॉइज जो है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के ये साइट पर पहुंचे इस मोबाइल टावर को रिपेयर करने के लिए, जो शायद पिछले कुछ सालों से नॉन ऑपरेशनल था.
12: हाँ.
14: और जब पहुंचे कि तो उन्होंने देखा कि भाई हम जो रिपेयर करने आए हैं
12: वो ही नहीं है,
14: वो तो यहाँ है ही नहीं.
12: वेरी इंटरेस्टिंग यार. तो अगर ये रिपेयर करने जाते नहीं तो शायद पता भी नहीं चलता कि चोरी हो गया.
14: एग्जैक्टली.
12: या यू कैन थिंक अबाउट द फैक्ट कि कभी कभी क्या कमाल कर जाते हैं कुछ आम लोग ना.
14: तो ऐसी और भी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. थोड़ी देर बाद बताएंगे हमारी कम्युनिटी में हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: तो हमारे कम्युनिटी में हमारे आसपास जो कुछ भी होता रहता है जिसकी जानकारियां आप हमारे पास भेजते हैं उन्हें अन्य लोगों तक हम जरूर पहुंचाते हैं। सबसे पहले याद रखें, न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री रामलीला योगी वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोएटोए में 8th ऑफ अगस्त को अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं स्टॉल इंक्वायरीज या फिर एज ए क्रिएटिव विजुअल डायरेक्टर मास्टर अशोक से 02117954599 पर आप बातें कर सकते हैं।
4: और इसके अलावा आपको हम ये भी याद दिला दें कि आपके पास मौका है, आप हिस्सा बन सके एक और एक बहुत ही बेहतरीन से शो का, बहुत ही बेहतरीन से मज़ेदार से शो का। अगर आप गुजराती बोलते हैं या समझते हैं एंड आपको गुजराती ह्यूमर बहुत पसंद है तो बी रेडी टू गेट एंटरटेन बाय सिद्धार्थ रंडेरिया और उनका गुज्जू भाई प्रोडक्शन, क्योंकि जब भी ये अपना कोई भी शो लेकर आते इट्स ऑलवेज हाउसफुल एंड दैट इज़ वाई इट्स एडवाइजेबल कि आप भी समय पर टिकट्स ले लें प्रीमियर टिकट्स डॉट को विजिट करते हुए इनके ब्रांड न्यू कॉमेडी शो के लिए विच इज गुज्जू भाई एक्सचेंज ऑफर, जहां पर गुज्जू भाई इज कॉर अप इन एन अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर और इसकी वजह से काफी हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह होती हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो आपके लिए हंसने का एक बहुत बड़ा कारण जो ये बन जाता है। यू कैन एंजॉय दिस विद योर होल फैमिली और रिलेटेबल मोमेंट्स का मजा आप उठा सकते हैं दिस फ्राइडे 7:30 PM एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर।
3: श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में अखंड रामायण पाठ ये रहेगा शनिवार 1 से लेकर रविवार 2 अगस्त तक। शनिवार 1 अगस्त की सुबह 7 बजे रोट पूजा होगी जिसके बाद आरती और अखंड रामायण पाठ सुबह 9:45 बजे आरंभ होगा जो रविवार की सुबह 10 बजे जाकर खत्म होगा, जिसके बाद हवन और आरती। यहाँ प्रोग्राम के दौरान आपके लिए भोजन का भी प्रबंध रहेगा। अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी मंडली को लेकर जाना चाहते हैं तो आप पंडित जी से बातें कर सकते हैं 09836464647 डायल करते हुए उनसे आप जरूर बातें कर सकते हैं।
4: तो याद रहे आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी अगर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं और इनकी जानकारियां अन्य लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली डू दैट जस्ट ईमेल इट टू अस buzz@humfm.com पर। आपका जो भी इवेंट है उसके डिटेल्स buzz@humfm.com पर आप ईमेल कर दें और हमारे व्हाट्सएप ऑकलैंड के सेगमेंट में इसे आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे।
5: Drive show with Sandy and Rusby.
6: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
7: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
8: वो भी आई लव यू वाला।
7: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
8: अच्छा आप दिलजीत हो?
7: आए आए बताओगे यार।
5: Drive show with Sandy and Rusby brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
9: And it's looking ugly out there on the roads with severe delays on all motorways into the city.
10: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and grab a barista-made coffee in minutes. The perfect traffic jam remedy at BP.
11: Don't miss the final week of Shop and Scan to Win at Woolworths. Just buy 3 participating products and scan your everyday rewards card for your chance to win instant money off your shop. In-store only at Woolworths. T's and C's apply.
12: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
13: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
12: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
13: Available at selected branches. T's and C's apply.
14: Danny didn't think he needed a DVS system.
15: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
14: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
15: Nah, only one room. It was just too noisy.
14: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
16: The heart of a healthy home.
0: आजकल लेकर इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
16: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
17: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279 और विजिट legalassociates.co.nz.
18: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
19: Indelible Homes, your building expert.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living. Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
2: FIFA World Cup round of 32 ka agla match shuru ho chuka hai into the 28th minute aur abhi the scores are France nil aur Sweden bhi nil. To is match mein jo bhi updates honge ye hum aapke liye bari bari se is program mein lekar aate rahenge.
3: But before that aapke liye hum lekar aaye hain ek aur ek mauka. Trivision events aapke liye lekar aaye hain ek bahut hi amazing night of pure entertainment. Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live ये होने जा रहा है 18th of July को बस कुछ ही दिनों में ये आपके लिए रहेगा और आपको इसका हिस्सा बनने का मौका जो है ज़रूर मिलेगा अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटी सी चीज़ करनी है टिकट्स ग्रैब कर लेने हैं bookmyevent.co.nz विजिट करते हुए एक और एक बात आपको बता दें मोर देन 50% ऑफ द टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं बाकी है एंड अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं ये अपॉर्चुनिटी तो bookmyevent.co.nz विजिट करें टिकट्स ग्रैब कीजिए अगर आपको टिकट्स लेने में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है 02143272002104327200 पर आप कॉल कर सकते हैं गाइडेंस मिलेगा हेल्प मिलेगा बट द बेस्ट पार्ट अगर आप यू नो लार्ज नंबर ऑफ टिकट्स ले रहे हैं मतलब ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स एक साथ मिलकर आप टिकट्स ले रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के लिए टिकट्स ले रहे हैं एंड यू थॉट यार कोई और अच्छा ऑप्शन होता कि इतने सारे पैसे एक साथ ना भरने पड़ते ताकि उतना आप फील ना करते कि बैंक से इतने पैसे जा रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन वुड बी आफ्टर पे बिकॉज नाउ आफ्टर पे ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल विद देम एंड आप डेफिनेटली आफ्टर पे से भी टिकट्स जो है ये ग्रैब कर सकते हैं दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग स्पेशली फॉर यू आफ्टर पे आप लेकर या आफ्टर पे के जरिए आप अपने टिकट्स ग्रैब करते हुए 18th ऑफ जुलाई को हंसने के लिए तैयार रहेगा एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर
2: और चलिए आपको एक डबल पास जीतने का मौका भी हम अब ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा दे रहे हैं ओनली ऑन हम आपको क्या करना है आप हमें ये बताइए कि कृष्णाभिषेक का असली नाम क्या है इनका जो रियल नेम है या जन्म के समय पर उनका जो नाम है ये क्या था ये आपको हमें बताना है
3: राइट तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कॉमेडी COMEDY कॉमेडी लिखें फिर उसके बाद में अपना जवाब लिखें कि कृष्णा अभिषेक का जो बर्थ नेम बेसिकली जब उनका जन्म हुआ था उनको एक नाम मिला था वो क्या है और अपना नाम लिखकर 5599% सेंड कर दें और समय की ओर अगर हम देखें इट्स 9:24 फॉर नाउ जब हम आपसे विदा लेंगे जाने का समय होगा साइन आउट करने से पहले मतलब थ्रोबैक प्ले करने से पहले आज हम बताएंगे कि किसने ये डबल पास जीता है
2: तो आज के आज ही पता चल जाएगा कि इफ यू आर गेटिंग दैट डबल पास टू वॉच द ग्रेट कॉमेडी नाइट कृष्णा अभिषेक का असली नाम क्या है ये आपको बताना है कॉमेडी आंसर और नाम ये 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं
0: Hollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
5: मैं लाऊं अपना ए गेम
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: The breakfast show में अभी 28 मिनट रह गए हैं 10 बजने में और आपको if you recall हमने कुछ दिन पहले फिल्म प्रलय के बारे में कुछ बातें जो है ये की थी very briefly. तो अब खबर आ रही है कि रणवीर सिंह सितंबर महीने में इस फिल्म की शूटिंग जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं.
1: Oh, that's interesting.
0: I think May में ये फिल्म या फिर रिपोर्ट आ रही थी कि अगस्त से शायद शूटिंग शुरू हो, लेकिन एक फ्रेश अपडेट जो है ये दिया गया है. हालांकि ऑफिशियली कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, बट द प्रोजेक्ट माइट गो ऑन टू द फ्लोर्स इन सितंबर. और इस फिल्म का एक मेजर पोर्शन जो है इसको शूट किया जाएगा इन ऑस्ट्रेलिया.
1: रणवीर सिंह ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं बहुत ही जल्द.
0: या और जय मेहता इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ रणवीर सिंह मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट और लार्ज स्केल पोस्ट क्या बोलते हैं इसको एपोकलेप्टिक जोम्बी थ्रिलर है ये.
1: इंटरेस्टिंग. So, not really sure कि ये कब तक होगा, because they're definitely not going to reveal the schedule. Otherwise, सभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे उस दौरान रणवीर सिंह को देखने की उम्मीद में. But it's quite interesting to see. I think if I'm not mistaken, ये पहली बार होगा कि इनकी कोई फिल्म on this side of the world जो ये शूट होने जा रही है.
0: That's what I think. Report जो अभी आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि pre-production का काम जो है is already underway in Australia.
1: Okay.
0: जहाँ पर डायरेक्टर जय मेहता और उनकी टीम जो है ये कोलैबोरेट कर रही है उन टेक्नीशियंस के साथ जिन्होंने पहले इंटरनेशनल प्रोडक्शंस में काम किया है. mm-hmm. और दे आर फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग फिल्म का जो एक्सपेंसिव सेटिंग है विजुअल इफेक्ट्स वगैरह जो है. सो इट्स ऑलरेडी सेट कि अब ये काम जो है ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली शुरू हो चुका है.
1: ओके, सो लेट्स सी कि कब तक इस पर कुछ यू नो और भी सॉलिड डिटेल्स जो है ये मिलते हैं. इफ देयर इज एनीथिंग वर्थ टॉकिंग अबाउट तो डेफिनेटली आपके साथ हम शेयर करेंगे. फिलहाल हमने आपको मौका दिया है द ग्रेट कॉमेडी नाइट जो 18th ऑफ जुलाई को होने जा रहा है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. इसके लिए टिकट्स जीतने का ट्राइविजन इवेंट्स की ओर से bookmyevent.co.nz विजिट करते हुए तो आप टिकट जरूर बुक कर सकते हैं. बट टिकट्स जीतने के लिए आपको एक छोटे से सिंपल से सवाल का जवाब देना है कि कृष्णा अभिषेक जब इनकी पैदाइश हुई थी तो इनको एक नाम दिया गया था, वो नाम इनका बर्थ नेम इनका क्या है ये आपको बताना है.
0: तो कॉमेडी अपना आंसर नाम 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं.
2: मॉर्निंग्स मेड बेटर
3: दो फ्रेंडा चार टोस्ट बटर जैम और एक स्पेशल चाय
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन.
4: माजे लिए मोमबत्ती है पहले दिनों तेरे उत्ते अख रखिए तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दिल मंगिए ते ना

0: Streaming on Rover.
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
0: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
0: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 0984699934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया. Apply.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
7: What's going on?
8: 23 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में। और आज सबसे पहले आपको बता दें कि हाउस होल्ड्स और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं अक्रॉस द कंट्री, अब आपके पास और चॉइस हो जाएगा कि आप कैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसे भर सकते हैं। एंड एक नया रूल जो है ये आज से असर में आ रहा है। एनर्जी मिनिस्टर सीमन ब्राउन ने अनाउंस किया है कि इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज़ नाउ रिक्वायरिंग मेजर पावर कंपनीज की ऑफर करें वो टाइम ऑफ यूज़ प्राइसिंग प्लान्स। ये प्राइसिंग प्लान्स जो हैं ये एक्चुअल फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द डे। अभी क्या होता है कि जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं ये दिन के अलग अलग टाइम पर अलग अलग कॉस्ट पर पावर जो है ये जनरेट करती हैं, लेकिन वो एक ही प्राइस पर कस्टमर्स को या छोटी मोटी कंपनीज को ये बेच देती हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी है या इलेक्ट्रिसिटी है इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल दिन में 10 बजे $10 में पावर जनरेट करते हैं और सुबह 7 बजे $20 में करते हैं, तो वो $25 फ्लैट आउट कस्टमर्स को अगर चार्ज कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू चार्ज।
2: ओके,
8: तो अब क्या होगा कि उसी तरह से तो इस नए फ्रेमवर्क के तहत इलेक्ट्रिसिटी रेट्स विल टिपिकली बी डिवाइडेड इंटू 3 डेली पीरियड्स। डिमांड पर यह बेस्ड होगा। पीक जब कॉस्ट सबसे ज्यादा होगा बिटवीन 7 AM एंड 10 AM और 5 PM टू 9 PM जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा होता है। ऑफ पीक जहां पर कॉस्ट मॉडरेट होगा विल बी बिटवीन 10 AM टू 5 PM और 9 PM टू 11 PM। ये डे टाइम और लेट इवनिंग्स जहां डिमांड कम हो जाता है। और नाइट रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे ये लोवेस्ट कॉस्ट होगा। प्राइसेस आर एट देयर लोवेस्ट जब ओवरऑल डिमांड जो है बहुत ही कम होता है। तो उसी के हिसाब से प्राइसिंग जो है कस्टमर्स को और छोटी मोटी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को ऑफर करना पड़ेगा।
2: राइट, सो लेट्स सी कि और क्या कुछ अपडेट्स जो है ये सामने आते हैं इस मामले में। और जैसे कुछ नया अपडेट आएगा, सब कंफर्मेशन आता है, डेफिनेटली आपके साथ हम शेयर करेंगे। बिफोर वी मूव ऑन, एक और एक बहुत ही ज़रूरी खबर जो हाथ लगी है, दिस इज़ अबाउट द काउंटरफिट $50 नोट्स जो फिलहाल फंगरे में सर्कुलेट कर रहे हैं। स्मॉल बिजनेसेस फंगरे में, दे आर बीइंग वॉर्न्ड आफ्टर कन्विंसिंग फेक $50 नोट्स वर यूज्ड एट सेवरल शॉप्स। ये जो काउंटरफिट नोट्स हैं इंक्लूडेड होलोग्राम विंडोज कट फ्रॉम रियल $5 नोट्स, और इसकी वजह से इट मेड देम लुक मोर ऑथेंटिक। लेकिन जो सस्पेक्टेड ऑफेंडर हैं रिपोर्टेडली उन्होंने लो कॉस्ट आइटम्स जो है ये $50 नोट्स से खरीदे विच लुक्ड वेरी जेन्युइन। इनफैक्ट फेक नोट्स कैन बी डिफिकल्ट टू स्पॉट, स्पेशली फॉर स्टाफ हु डोंट ऑफन हैंडल कैश। और वार्निंग साइंस में आपको बताया जा रहा है, द नोट फील्स लाइक पेपर, नॉट द स्मूथ पॉलीमर जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, जो जेन्युइन न्यूजीलैंड बैंक नोट्स में इस्तेमाल होते हैं। इट मे बी स्लाइटली स्मॉलर देन अ रियल $50 नोट और प्रिंटिंग लुक्स कन्विंसिंग। कुछ स्मॉल डिटेल्स और होते हैं जो थोड़ा साइजिंग वगैरह में ऑफ हो तो ये आप फिगर कर पाएंगे कि ये शायद असली नोट नहीं है। पुलिस ने एडवाइस किया है दैट एनीवन हु रिसीव्स अ सस्पेक्टेड काउंटरफिट नोट टू हैंडल इट एज लिटिल एज पॉसिबल एंड रिपोर्ट इट बाय कॉलिंग 105। using, making or knowingly passing counterfeit money is a serious criminal offense in New Zealand, जिसके साथ आपको कम से कम 10 सालों की जेल की सजा भी हो सकती है।
8: और साथ ही में फीफा वर्ल्ड कप मैच जो फिलहाल खेला जा रहा है, राउंड ऑफ 32 का इस पर अपडेट जल्दी से आपको दे देते हैं। लगभग 5 मिनट्स बाकी हैं फर्स्ट हाफ में एंड द स्कोर्स आर फ्रांस नील एंड स्वीडन नील।
2: एंड फाइनल अपडेट
8: जी,
2: फाइनल अपडेट फ्रॉम माय एंड वुड बी अबाउट करीबन 2 हफ्ते पहले ये खबर जो है सामने आई थी, बट पीपल आर स्टिल कंसर्न्ड। और अगर ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हैं तो बी अलर्ट। ऑकलैंड में एक नया फेक मॉन्क डोनेशन स्कैम जो है ये सामने आया है, और ऑकलैंड काउंसिल ने इसकी जो खबर करीबन 2 हफ्ते पहले जो ये दी थी, इट वाज बीइंग रिपोर्टेड इन वन ऑफ द लीडिंग वेबसाइट्स एज वेल, आरएनजेड पर रिपोर्ट भी किया गया था इसे। लोगों को वार्न किया गया टू नॉट एंगेज विद इंडिविजुअल्स जो ड्रेसअप होते हैं एज मॉन्क्स और काफ़ी अग्रेसिवली आपसे पैसे की मांग करते हैं इन एक्सचेंज फॉर ब्रेसलेट्स या स्मॉल ट्रिंकेट्स। रिपोर्ट का कहना है कि जो स्कैम ऑकलैंड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इन अदर पार्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड एज वेल, विक्टिम्स ने कहा है कि जो स्कैमर्स हैं वो आपको ब्लेसिंग कार्ड्स या ब्रेसलेट्स हैंड आउट करते हैं एंड देन दे प्रेशर यू इनटू डोनेटिंग, ऑफन सजेस्टिंग कि आप $20 या उससे ज़्यादा डोनेट जो है ये कीजिए, एंड अगर आप नहीं करते हैं तो वो काफ़ी पर्सिस्टेंट हो जाते हैं या इंटिमिडेटिंग भी हो सकते हैं। जेन्युइन स्ट्रीट फंडरेजर्स मस्ट हैव अ फंडरेजिंग लाइसेंस या फिर स्ट्रीट ट्रेडिंग परमिट। और पुलिस का कहना है कि एनीवन, बेसिकली वो आपको अर्ज कर रहे हैं कि एनीवन हु इज अप्रोच्ड यू इन सच अ मैनर, डू नॉट एंगेज विद देम एंड डू नॉट हैंड देम मनी। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि आप पुलिस को इस मामले में जानकारियां दे सकती हैं सून इज पॉसिबल, स्पेशली इफ द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इज अग्रेसिव या फिर इंटिमिडेटिंग, सिमिलर टू द फेक मॉन्क स्कैम्स। बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स सामने आए हैं जो पहले भी हुए हैं, नॉट इन न्यूजीलैंड बट ओवरसीज, लेकिन अब ये न्यूजीलैंड में भी देखे जा रहे हैं।
6: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
7: Let's go.
5: Straight from the heart.
8: 17 मिनट रह गए हैं फिलहाल अभी 10 बजने में, और मैसेज जो है ये भी आया है।
2: यस, इन्होंने कहा है जय सियाराम भाई एंड भाभी, एंजॉइंग फिजी लॉन्ग लोफ एंड दूध वाला चाय आशिका लाल के साथ। ये सचिदा ने हमारे पास भेजा मेरे ख्याल से, नहीं?
8: हाँ सचिदा ही, वो गए थे फिजी, पता नहीं वापस आ गए या नहीं,
2: या तो भेज रहे कि वहां से एंजॉय कर रहे होंगे शायद बैठे बैठे, रुवा पर शायद सुन रहे होंगे प्रोग्राम, नॉट श्योर, बट जहां भी आप हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए और आपके साथ के लिए।

0: आज की दो बातों से पहले ही चलिए, हमने जो सवाल आपसे पूछा था कि कृष्णा अभिषेक जो आ रहे हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट में परफॉर्म करने के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू न्यूजीलैंड, इनका जो रियल नेम, बर्थ नेम इनका क्या है, अगर ये आपने सही सही बता दिया तो आपका नाम हम रो में शामिल करेंगे एंड यू गेट अ चांस टू विन अ डबल पास टू द ग्रेट कॉमेडी नाइट। तो सबसे पहले तो सही जवाब क्या है वो अगर आप बता दें।
1: अभिषेक शर्मा।
0: अभिषेक शर्मा इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और जितने लोगों ने हमारे पास अपने आंसर्स भेजे थैंक यू सो मच। बट आज के जो लकी विजेता जिनके हाथ ये पास लगा है एंड इनके पास मौका है अब कृष्णा अभिषेक और साथ में राजीव ठाकुर को एक साथ देखने का द ग्रेट कॉमेडी नाइट में ऑन द 18th of July। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन हम कहना चाहते हैं टू रूपलीन। रूपलीन बहुत बहुत मुबारक हो आपकी ये जीत। 4629 आपके मोबाइल नंबर के लास्ट फोर डिजिट्स हैं।
1: दो बातों में, पहली बात कहते हैं कि जब जेब में पैसे ना हो तो पंचर बनाते समय पानी का बुलबुला भी दिल की धड़कन तेज कर देता है। और दूसरी बात, कभी कभी नोट ही नहीं इंसान भी जाली मिल जाते हैं।
0: एब्सोल्युटली ट्रू। चलिए उम्मीद है कि इन बातों को आप याद रखेंगे और अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव, कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो आपको बेहतर से बेहतरीन बना दे। अपना और अपनों का

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: The global phenomenon returns.
2: You are the queen of dragons. You have absolute power within your grasp.
3: I'm going to kill my brother or die in the attempt.
1: Watch the series the world will be talking about.
4: There will be no doubt who the gods have chosen to rule.
2: This is the moment you become queen.
1: HBO original House of the Dragon. Stream now only on HBO Max.
5: Each season, our growers bring you only the freshest seasonal produce. Like our New Zealand grown The Odd Bunch apples, 2kg, a fresh deal at just $4 a pack. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
6: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले माइटन मेगा बॉटनी में। फ्री किड्स एक्टिविटीज, क्लासिक सॉसेज सिजल, लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिवअवेज, प्लस 4 टाइम्स एयर पॉइंट स्टोर वाइड। टीज एंड सीज एंड एक्सक्लूशंस अप्लाई दिस सैटरडे एट माइटन मेगा बॉटनी।
7: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz.
11: Time check.
12: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. The passing of beefed up powers against antisocial road users has been described as a great day for communities. Changes include the baseline sentence of the destruction or forfeiture of vehicles. Associate Transport Minister James Meagher says people deserve to feel safe.
14: People have had enough of the chaos, the fleeing police, illegal street racing, burnouts, disorderly dirt bike gatherings, intimidating vehicle convoys and siren battles.
13: Now, talking driving, people are being urged to take extra care on icy roads in the South Island after a spate of crashes this morning. There have been incidents in Roxburgh, Lumsden, Cromwell and on Dunedin's Southern Motorway. International arrivals are bulking up the winter tourism season for Queenstown. More than 785,000 passengers will pass through its airport over the next 3 months. But Mayor John Glover says there'll be last-minute domestic visitors too.
15: In a world where people are conscious of the cost of everything, people want to know they've got some really good certainty about what happens when they go on their holiday.
13: And overseas, another miraculous story of survival from Venezuela. A 3-year-old boy has been pulled from the rubble of a collapsed building 6 days after major twin earthquakes shook the nation. The death toll has risen to more than 1,900, tens of thousands of people still unaccounted for. In sport, tennis with Davis Cup Auckland, and Serena Williams has gone down fighting in her first round match at Wimbledon, playing her first singles match in 4 years. The 44-year-old superstar lost in 3 sets to Australia's Maya Joint. And to the Football World Cup.
16: And a Mbappe!
13: From TVNZ Plus, France leading Sweden 1-0 at halftime in their round of 32 match in New Jersey.
17: Sports News.
12: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
18: The highs of 15, overnight temperature of 4. आज का forecast बताया जा रहा है हल्की हवाओं के साथ साथ ठंड तो बढ़ती चली जा रही. It feels like 8 degrees right now. 5:16 पर sunset बताया जा रहा है और कल भी कुछ मौसम ठंडा ठंडा ही रहने वाला है. जुलाई जो आ चुका है.
12: Non-stop Bollywood.
19: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
12: हम Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
11: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai
17: My Time with Kashika.
18: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू पीपल. 10:03 हो चुके हैं, पहली जुलाई. बताइए, एक आधा साल हमारा अभी निकल चुका है और अब अगले पूरे आधे साल के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं. जुलाई का महीना आ चुका है और ऐसे में कहते हैं ना, कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलने लगते हैं, क्योंकि इंसान की असलियत तो वक्त ही बताता है. Isn't that true? लेकिन हमारी असलियत तो हमें ही पता है कि हम इसे किस तरह से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं. भाई बहुत सारी कैलकुलेशंस इसमें चाहिए होती हैं, लेकिन आप इन कैलकुलेशंस के चक्कर में जब पड़ जाते हैं तो आपको पता है कि टाइम से लेके आपको पता है कि कौन आपसे बात कर रहा है. आपके साथ मैं, आपकी रिमाइंडर क्लॉक, ऑफ कोर्स मैं आपके साथ आ चुकी हूँ. 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. कशिश फूड्स के सौजन्य से ये मुमकिन हो जाता है आपके लिए, जहाँ पर कोई ना आपके साथ प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी जानकारी के साथ मैं आ जाती हूँ और कोशिश करती हूँ आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ जो शायद आपको पता हो, लेकिन फिर आपको याद दिलाना होता है कि हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी चलता है, ऐसा भी करना होता है. बट ऐसे में आपका फाइनेंस का स्टेटस अभी क्या है भाई, सब अपनी अपनी पॉकेट मत देखो, क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं अश्योर वन से नन अदर देन नितेश हीरा, जो थोड़ी देर बाद हमसे कुछ बातचीत करने वाले हैं. तो इनसे बातचीत करेंगे, इनको वेलकम ज़रूर करेंगे. हाँ, आप याद रखना 6 word story, ऑफिस का शाउट आउट, और साथ साथ कोई अगर आपका ड्रीम जहाँ अटक रहे हो ज़रूर मुझे बताइएगा. रेस्क्यू मी रिसाइकल में क्या आप रेस्क्यू कर सकते हैं, किस चीज़ को रिसाइकल कर सकते हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं. टेकिंग यू राइट नाउ टू द सॉन्ग, जहाँ पे बातें करने की बातें आती हैं, तो ये बातें मीठी मीठी लगती हैं कि खट्टी खट्टी लगती हैं. बजाओ क्या, सुनाती हूँ.
12: बजाओ क्या,
18: बढ़िया बढ़िया बातें, कुछ अच्छी अच्छी चीजें, दो ट्रॉपिकल वर्ल्ड्स में एंडलेस मोमेंट्स के साथ एक ट्रिप अप ईस्टर 2027 का एडवेंचर. अगर सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो 2 जुलाई यानी कि कल शाम 5 बजे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा ड्राइव शो, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने दिनों से हम ये क्या बातें कर रहे थे.

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: तो एक्सपर्ट्स अड्डा में मेरे साथ बहुत दिनों के बाद आ चुके हैं नन अदर देन यहाँ पर नितेश जी, नितेश हीरा जी, एंड ही इज फ्रॉम अशोरवान। सबसे पहले तो मैं इनको एयरवेव्स पे हेल्प गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
2: गुड मॉर्निंग कशिका जी, आई एम वेरी गुड, हाउ अबाउट यू?
1: वी मिस्ड यू।
2: I know. We're back though.
1: Way back. All right. Okay. अच्छा तो भाई मुझे कुछ आपसे मोर्टगेज से रिलेटेड बात करनी थी, तो मैंने सोचा चलो भाई आप अशोरवान से हैं, आपसे मैं शुरुआत कर सकती हूँ।
2: Okay. I mean, I will correct you there, Kashika ji. So अशोरवान हम लोग we are specialized only to give advice for insurance. So anything related to insurance, 100% we can guide you, help you. But we are not mortgage advisor. So there is a difference between a mortgage advisor and insurance advisor.
1: Okay, तो किस तरह से आप help कर सकते हैं everyday kiwi को?
2: Excellent. So as insurance advisor, AssureOne, we are financial advice provider. Basically, when people are looking for personal insurance, that is where they can contact us at 0800 77 HERA. And that's my personal number. Now, how we help is the personal insurance. Mein, our key philosophy is two most important processes that we follow at the time of application. Because personal insurance is only successful and it is only tested at the time of claim. A policy is not only tested how cheap the policy is or how good it looks on paper. The real test of a policy happens at the time of claim. To make sure वो policy pay करे claim के time पे, जिस purpose के लिए वो ली गई थी, it starts at the time of the inception. Basically, the advice that people get from us and the application process. We are very thorough. So we make sure that all the information is captured. That is the critical part, which normal people might not realize how important it is, the smallest of disclosures. That is one part of the process at the time of application. And the second is obviously what is the right policy, what is the right protection for them. And then the key part at the time of claim, when things go wrong, you need a very, very strong experienced advisor to navigate a claim. क्योंकि क्लेम के टाइम पे क्या होता है कशिका जी, यू आर डीलिंग विद फोर डिफरेंट पार्टीज। एक है आपका डॉक्टर और जीपी पर्सनल इंश्योरेंस में, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी वहां से लेती है। उन जीपी ने क्लाइंट के नोट्स में क्या लिखा है और इंश्योरेंस कंपनी उसको इंटरप्रेट कैसे करती है, एंड दैट इज वेयर इश्यूज लाइक नॉन डिस्क्लोजर के आपने हमें ये नहीं बताया था, 10 साल पहले आपके जीपी ने ये लिखा था। नाउ लॉट ऑफ टाइम्स वी रियलाइज कि नॉर्मल पीपल को तो पता ही नहीं होता जीपी ने उनके नोट्स में ये भी लिखा था। एंड आई टेल यू अ रियल केस स्टोरी। लाइफ इंश्योरेंस क्लेम डिक्लाइन किया गया था, डेथ ऑफ अ पर्सन हैपेंड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक।
1: अच्छा।
2: और उनके जीपी ने पॉलिसी लेने से 6 महीना पहले सिर्फ उनकी पॉलिसी पे ये लिख दिया था कि उनका बीपी थोड़ा सा हाई है लेकिन मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन वेट करेंगे फिर ठीक हो जाएगा। बट 6 महीने बाद दैट पर्सन पास्ड अवे बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। नाउ द वाइफ was surprised that GP ने उनको कभी बताया ही नहीं कि हाँ उनको बीपी की मेडिकेशन चाहिए या कुछ चाहिए। इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ GP, इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ द क्लाइंट, बट द इंश्योरेंस कंपनी डिक्लाइंड द क्लेम। सो दोज आर द थिंग्स, दोज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट अ गुड एडवाइजर विल नो द इनसाइट व्हेन दे आर पुटिंग द पॉलिसी इन प्लेस टू मेक श्योर एवरी सिंगल डिटेल इज कैप्चर्ड, एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अशोरवान।
1: ओह माय गॉड, दिस इज इट्स ट्रिकी, इजंट इट?
2: Well, exactly. And that's where you need the right guidance and advice, right? You need somebody who is thorough, who doesn't cut corners. And that's where we pride ourselves that we do not cut corners. We at AssureOne, we do not just sell policy based on price. If somebody comes to us, we actually turn them down if they want, oh, we want the cheapest cover. It's one thing to have a clean, cheap policy by a few cents, but it's a whole different thing whether that policy will pay at the time of claim or not. So we would rather have full disclosure, have the right terms and conditions, have the policy fully underwritten by the insurer at the time of buying it, so that claim ke time pe insurance company cannot say, oh, you did not tell us this and you are not covered for this kind of thing. And that is our whole philosophy, and that's how we work at AssureOne.
1: Oh wow, fantastic. I think this is going to be very interesting going forward. Aapse hum baat karte chale jayenge. So I think the way to contact you would be 0800. What is your
2: yes, that is 0800 77 Hira, that's HIRA. Or you can go on our website assureone.co.nz and fill out the contact form over there.
1: उसमें यहाँ पे get a free quote and book free review as well भी लिखा हुआ है. I can see that.
2: Absolutely. So they can just click there, put their names, email and phone number, and we will give them a call. And our promise is we usually get back to our clients within 2 hours of them inquiring. So that's one thing that we are wanting to do, is make sure we get to people in a timely manner.
1: Absolutely. So my time sunne walo, 0800-77-HIRA, 0800-77-HIRA is the magic number jis par aapko call karna hai, apne doubts ko clear karna hai, aapke insurance related, ya assure1.co.nz ki website pe jana hai. A big thank you to you for giving us so many insights. Aapse aage bhi baatein karenge. Thank you once again.
2: Thank you so much, Kashika ji. Thank
1: Take
2: you
1: care.
2: So much to all the listeners.
1: Bye.
2: Thank you. Bye. My time with Kashika. Aajkal chal raha hai bahut news mein. Happy to nahi. Ladies and gentlemen. Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki duniya mein already

0: Sandy and Rusby on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Stock up on your snacks with New World North Island's 3-day sale. Get Coca-Cola, Sprite, or L&P 18-pack cans, $14.99 each, or McCain Super Fries 900 grams, $2.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: Sun Tours के successful March 2026 Best of India Tour के बाद अब bookings open है for Best of India September 2026 Tour. Delhi की shopping, Agra का Taj Mahal, Jaipur Amer Fort और Elephant Ride, LP में houseboat का experience और आमची Mumbai की Bollywood Studios visit with all buffet meals, flights और 5-star accommodation. All for just $8,500 per person. Contact Anil on 0800 for Sun Tours. That's 0800 478686. Limited spaces.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
6: And who Tejal Vyas?
5: Ame avi rahya chhe amaru navu nakkor super hit comedy natak Gujubai ni
6: exchange offer.
7: Friday 3rd July Victory Convention Center par Learning HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria nu navu natak Gujubai ni exchange offer. Hasi hasi ne lotpot thaywa taiyar thai jao. Tickets jaldi book kari lejo. Phone karo 021-244-6278 par.
8: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy. And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
9: Contact supportive promo not applied. T's and C's and fees apply.
10: And then Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas mera focus hai.
11: Achha,
10: batao. Tuhanda focus. Sada kuch nahi.
11: Shh, Mrs. Singh.
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 0928130500 और विजिट focuskitchens.co.nz.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
14: Office shout out.
15: So, भाई ऑफिस शाउट आउट में आ चुके हैं दोबारा से आज फ्रॉम वेलिंगटन. वेरी हैप्पी चिल्ड. ऐसा होता है, ऐसा होगा, फाइनेंस कैसा है, ये सब बताए बातें याद कराने वाली काशिका जी को हमारा सुप्रभात. सुप्रभात आपको भी और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से. एंड फर्स्ट जुलाई हो गया तो हैप्पी जुलाई आपको कह सकते हैं. वेलकम टू जुलाई का महीना. थैंक यू सो मच. आप टेक्स्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे. अच्छा, बाय द वे, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आपको मैं बताना चाहती हूँ अबाउट राहत फ़तेह अली खान जो ऑकलैंड आ रहे हैं. वेलिंगटन वालों, आप भी आ सकते हैं. एक अनफॉरगेटेबल नाइट होने वाली है 25 जुलाई के दिन ट्रस्ट अरीना में. जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस, शहजादा प्रोडक्शंस आपके लिए लेकर आए हैं. dryTickets.com के जरिए आप ये टिकट्स भी खरीद सकते हैं.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: सो जब बात करते हैं अबाउट द कल्चरल परफॉर्मर्स जो ओवरस्टे कर गए थे, जब इन्हें एंटरटेनमेंट वीज़ा मिला था तो इन्होंने अप्लाई किया था असाइलम के लिए. सो एज ऑफ मंडे 10 आउट ऑफ 18 पीपल जो न्यूजीलैंड में आए थे फॉर द इवेंट विद एन इंडियन पॉप स्टार, और एक ये हेडलाइन बन गई थी, ये ओवरस्टे कर गए विद देयर वीज़ा.
1: The beat of Bollywood. World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: वैसे ईट बेटर लिव बेटर एंड लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. और ऐसे में जब मैं कहती हूँ लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो आपको पता है आपको हंसाने के लिए आपको एक बहुत ज़बरदस्त हंसाने का मौका मिल रहा है. इसी महीने 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में आप मिल सकते हैं कृष्णाभिषेक और राजीव ठाकुर से उनकी कॉमेडी देखने के लिए. ओके, उन्हें एकदम सामने देख सकते हैं एंड इन्जॉय कर सकते हैं. ये बिल्कुल रेजर शार्प इनकी जो कॉमेडी होती है, यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस आउट, क्योंकि बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं जो कई आपको चाहे वो लाफ्टर शेफ है या फिर वो आपका कॉमेडी नाइट्स विद कपिल है या कुछ भी, आप बहुत सारी जगह इन्हें एक साथ देखते चले आ रहे हैं. और ट्राइविजन इवेंट्स जो हैं, इन्होंने एक अमाल का मौका दिया है हमें जहां हम इन्हें बिल्कुल आमने सामने देख सकते हैं. bookmyevent.co.nz के ज़रिए आप ये टिकट खरीद सकते हैं. और साथ साथ अब आप क्या कर सकते हैं, कृष्णाभिषेक तो हम जानते हैं कि कौन है एंड कल जो मैंने सवाल पूछा था, अब आपसे मेरा एक सवाल है क्योंकि मैं एक डबल पास देने में इंटरेस्टेड हूँ. तो आप मुझे बताइए कि कृष्णाभिषेक की कोई ऐसी बॉलीवुड की फिल्म जो आपने देखी है उनकी. ऑफ लेट मैंने एक फिल्म देखी थी उनकी एंड वो फिल्म भी मुझे अच्छी लगी. आई मीन टाइम पास बेसिकली, हंसने के लिए, और इससे अच्छी फिल्म नहीं हो सकती थी इतने शॉर्ट टाइम में. तो हाँ, आपको खाली बताना है, ये कॉमेडी लिखना है और उसके बाद 5599 पे टेक्स्ट करना है, ठीक है. एंड आपको सिर्फ लिखना है कृष्णाभिषेक की कोई भी मूवी जो आपको याद है कि वो किस मूवी में आए थे एंड दैट्स अबाउट इट. एंड आपका नाम मैं ड्रॉ में ऐड करूँगी और जाने से पहले विनर का नाम अनाउंस करूँगी. याद रहे bookmyevent.co.nz के ज़रिए आप टिकट खरीद सकते हैं. कोई ऑनलाइन ट्रबल हो रही है आपको बुकिंग करने में या आफ्टर पे का ऑप्शन चाहते हैं तो 0210-432-720 पर आप फ़ोन कर सकते हैं एंड धर्मेंद्र श्याम से बात कर सकते हैं. चलिए, मेरे पास एंट्रीज आनी शुरू हो गई हैं. आपने नाम तो लिखा ही नहीं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा, Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Morning.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: Please use your imagination for the following ad.
3: If I won Powerball, I'd build my dream. Then I'd even things out with a massive donation too.
2: Imagine winning $17 million this Wednesday. Play in store or online.
4: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
5: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
6: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
7: आपकी ड्रीम थोड़ी डिफरेंट है. आपने ड्रीम किया अबाउट हेयर. वैसे हेयर जो है एक सिंबल है ऑफ आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, सेल्फ एक्सप्रेशन. तो अगर आपको लगता है कि यू आर लूजिंग, आपको ड्रीम आए कि आप बाल लूज़ कर रहे हैं, इट कैन बी अनसेटलिंग. वैसे डिफरेंट कल्चर्स या पे हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के अनुसार जो बाल होते हैं वो आप दे आर ऑफन टाइड. द रीज़न इज़ कि बाल टाइड क्यों हैं. जब आप जो पौराणिक जो आप कोई कथाएँ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, सबके बाल बंधे हुए होते हैं. बिकॉज दैट्स अ नोशन ऑफ पावर, वाइटैलिटी एंड इन फैक्ट स्पिरिचुअलिटी एज वेल. सो अगर आपको लगता है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, यू कैन रिप्रेजेंट अ फियर ऑफ एजिंग, लॉस ऑफ कंट्रोल, या फिर कुछ एंग्जाइटी जो आपके अंदर है और आप के अंदर एक पर्सनल चेंज आने वाला है. कभी कभी इंटरप्रिटेशन जो होती है ना, आपकी हेल्थ की अपेयरेंस के साथ भी रिलेट करती हैं. तो हो सकता है कि आप कोई एक इमोशनल टर्मोइल से या कोई स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, और या फिर आपकी हेल्थ ठीक ठाक नहीं चल रही. मोस्टली नोटिस किया जाता है कि जब बाल झड़ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, या दिखते हैं कि आपको माइंड में, या फिर आपको लगता है अनएक्सपेक्टेड बॉल्डनेस आपको लग रही है, दीज ड्रीम्स कैन कैरी अ पावरफुल मीनिंग एज वेल. हेयर लॉस से ये पता चलता है कि वी आर अनकवरिंग फियर इमोशंस दैट मे बी रिफ्लेक्टिंग कि आप बाल झड़ रहे हैं, आप उन चीज़ों को हटा रहे हैं. एंड एक्चुअली ये देखा जाए तो ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर माइंड के बारे में बता देते हैं वाइल यू आर स्टिल अस्लीप. होता है ऐसा. एंड मैंने भी नोट किया, अरे वाह इतने सारे टेक्स्ट, वाओ. ओके मैं आपको शाउट आउट देती हूँ. गिव मी अ बिट.

जाने से पहले बता देती हूँ किनके किनके नाम आ चुके हैं ड्रॉ में. नाक नागिन सोनाली आपने लिख के भेजा, बोल बच्चन पायल, विकी सोनाली आपने लिख के भेजा है, मोनिका थापर आपने लिख के भेजा है, क्या कूल हैं हम थ्री, कॉमेडी वेलकम टू द जंगल क्रुणाल, राइट आई सॉ दिस मूवी, ठीक है. मैंने देखी थी क्योंकि मुझे लगा था इसमें अक्षय कुमार और यू नो रवीना टंडन है, उनका शायद कुछ एक बहुत साल पहले यू नो इश्क हुआ करता था, तो दोनों एक साथ फिल्म में कैसे आ गए, वो एक दूसरे को सामने आमने देखना भी नहीं चाहते थे, बट ओके दे वर देयर इन द मूवी टुगेदर. आपने लिख के भेजा एंटरटेनमेंट, अजय थैंक यू सो मच, उसके साथ साथ नीलेश एंटरटेनमेंट, एंड आपने 0003 एंटरटेनमेंट लिख के भेजा है. तो चलो भाई यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, लेकिन अब बारी आ रही है कि लास्ट चांस, जितने लोगों ने अभी जो रुवा के जरिए लेट सुनते हैं आपके लिए भी आखिरी चांस है. तो अभिषेक कृष्णा अभिषेक की किसी फिल्म का नाम बताएं, कॉमेडी लिखकर भेजें, अपना नाम लिखें.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 15, overnight temperature of 4. आज का forecast बताया जा रहा है, दिन सुहाना रहेगा, इसलिए ठंडा रहेगा. हल्की हवाओं के साथ साथ इस समय आप 10 डिग्री टेम्परेचर महसूस कर पा रहे हैं. 5:16 पर सनसेट बताया जा रहा है.

नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू पीपल, हाउ आर यू। स्टूडियो की घड़ी में 11:03 होने वाले हैं एज आई स्पीक। 1 जुलाई, यानी कि आधा महीना, आधा साल एक्चुअली निकल चुका है और एक नया महीना शुरुआत हुई है। आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। वैसे इतना बता देती हूँ कि हम्पवार का दिन है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कमिंग मंडे ऑनवर्ड्स मैं भी एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ, अपना थोड़ा मी टाइम गुजारना चाहती हूँ, थोड़े बहुत जो काम है करना चाहती हूँ, थोड़ा कम्युनिटी की सेवा भी करना चाहती हूँ। तो बहुत कुछ मेरे साथ मैंने अपना प्लान किया हुआ है इस छुट्टी के दौरान, एंड आई एम श्योर आप लोग भी अपने लिए कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग ज़रूर करते होंगे। कहते हैं ना, जैसे प्रोग्राम में शुरुआत में मैंने कहा था कि कपड़े और चेहरे हमेशा या अक्सर झूठ बोला करते हैं और इंसान की असलियत तो सिर्फ वक्त ही बताता है। वक्त उसको राजा बनाता है या वक्त उसको रंक बना देता है, है ना, और वो हमें दिख ही जाता है। लेकिन आप अपने वक्त को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये तो आपके ही हाथ में है। तो आप अपने उस समय के लिए राजा बन जाते हैं। टाइम इज़ मनी और बहुत ही वैल्यूबल है टाइम। इसे आप किस तरह से व्यतीत करते हैं, किस तरह से इसे बिताते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, और किस तरह से इसको संवारते हैं ये भी आपके ऊपर निर्भर है। बस कशिश फूड्स की ओर से आ जाती हूँ मैं, कशिका, 12 बजे तक, 10 से 12 देखा जाए तो मंडे टू फ्राइडे आपका साथ निभाती हूँ। और ये सब अपनी छुट्टी के मूड में आ रही हूँ और जाते जाते मैंने कहा कि भाई ये अगले जो 2-3 दिन हैं उनमें आपके साथ मस्ती कर ही लेती हूँ। थोड़ी देर बाद जिस बारे में मैं बातचीत करने वाली हूँ वो है अबाउट चीप या इवन चीप फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अब ये प्राइसिंग जो है, हाउ इट्स अफेक्टिंग आवर पावर बिल्स, थोड़ा इसके बारे में बातचीत करेंगे। दिल से लग जाती है ना इस तरह की बातें, है ना।

0: Sister.
1: हमारे घरों में पार्टीज होती हैं, है ना, और हमारे घर में जब पार्टीज होती हैं उसके बाद एक क्या होता है रूटीन आपका, मुझे बताइए। एक बिहेवियर होता है, कुछ लोग होते हैं जैसे गेस्ट चले जाते हैं इमीडिएटली, फिर आप सडनली कंसर्न हो जाते हैं अबाउट द टाइडीनेस, बट साइकोलॉजी जो होती है वो बता देती है कुछ और। यानी कि आपका ये जो बिहेवियर होता है जहाँ पे आपको लगता है ये एक सोशल इंगेजमेंट हुई, स्टिमुलेशन हुआ घर में और नॉइज लेवल्स हुए, तो क्लीनिंग एक जो होता है एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होता है जहाँ पे आपको लगता है एक क्लटर है, आपके फर्नीचर हिल गए हैं, आपके घर में कुछ चीज़ें गिरी पड़ी हैं, किचन में टाइडीनेस नहीं रही है। सो द गोल इट्सेल्फ इज़ नॉट जस्ट क्लीनलीनेस, एक्चुअली इसमें कुछ और भी होता है। जो लोग स्टार्ट कर देते हैं ना घर में क्लीनिंग एज सून एज द गेस्ट लीव, उनके लिए नेसेसरी नहीं है कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। एक रिसर्च के जरिए पता चला है कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ऑफ सोशल स्टिमुलेशन एंड एनवायरमेंटल डिसऑर्डर। अब ये क्लीनिंग जो होती है आपका रिड्यूस कर देती है स्ट्रेस, ये एक क्लोजर क्रिएट कर देती है जहाँ पर आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल फीलिंग होने लगती है। जहाँ पर एक बिजी गैदरिंग के बाद आप एक प्रैक्टिकल वे से घर को जब क्लीन कर रहे होते हैं, आपके माइंड को एक सेटल करने का मौका मिल जाता है। लॉट ऑफ पीपल गो बैक जस्ट छोड़ देते हैं कि छोड़ो, नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनके घर की जो सिचुएशन है इट शुड रिटर्न टू द काम। एक ये बहुत ही प्लेजेंट एक्टिविटी होती है जहाँ लोग अपने घर में एक पर्सनल इन्वायरमेंट जब क्रिएट करते हैं, और ऐसे में ये अटेंशन आपका काफ़ी आउटवर्ड होने लग जाता है। पर जैसे ही लोगों की कॉन्वर्सेशन शुरू होते हैं, लोगों की बातें शुरू होती हैं, आप हॉस्पिटेबल होना शुरू हो जाते हैं। अब ये क्लीनिंग जब होस्टिंग के बाद होती है उसमें क्या होता है, एक अटेंशन आपका इन्वर्ट शुरू हो जाता है, और ये क्लीनिंग एक कम्फर्ट आपको एक सराउंडिंग्स में देता है जहाँ पर आप अपनी पर्सनल स्पेस में वापस आना चाहते हैं। सो ये पोस्ट पार्टी की जो एक्टिविटी हो जाती है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन टू ऑफ अस, यानी कि मी बिफोर द पार्टी, मी आफ्टर द पार्टी। तो ये एक फिजिकल एक्ट जो है वाइपिंग ऑफ द काउंटर टॉप्स या फिर वो क्लीनिंग करना या कुछ करना, आपका ब्रेन ओवर एक्टिव हो रहा होता है एंड इट कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ द एक्टिव माइंडफुलनेस। तो इट्स नॉट फन, बट इमोशनली ये आपको प्रोटेक्ट करता है टू कम अवे आउट ऑफ नेगेटिव एनर्जी इफ एनी। सो ये आप अपनी इस तरह की फिजिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करने के बाद आप अपने आप को एक रिलैक्सेशन के साथ महसूस करा देते हैं, और कभी कभी आपको लगता है कुछ आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं चीज़ें, उन्हें आप क्लीन करना चाहते हैं, उन्हें आप वापस अपने साथ सैनिटी के साथ वापस लेकर आना चाहते हैं। सो डू यू रिलेट टू समथिंग लाइक दिस? ये हमारी ब्रेन के अंदर एक रिचुअल है जो हम पॉजिटिविटी के साथ, जो हम कहते हैं कि ये हमारे नर्वस सिस्टम में एक बैलेंस क्रिएट करता है आफ्टर सोशलाइजिंग और हमारा इंटरनल प्रेशर। सिक्स वर्ड स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट, बताइए क्या है आपकी सिक्स वर्ड स्टोरी।
0: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
1: The long weekend. Time to kick back, relax, reflect, and think of something good to do together. Something that'll really bond you. Something selfless that'll give life just a little more purpose. Something like getting a group of blood buddies together to give blood or plasma. This winter, with all the dreaded loogies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
2: Are you ready for some extra money? If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. Look out for information from Entrust in your letterbox or email inbox. Check your payment details are correct and let us know of any changes as soon as possible. If we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in late September. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
3: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
4: So, मेरी आज की six word story मुझे थोड़ी सी सेंटी लगी. माफ कीजिएगा. 70 years, few tears, hairy years. 70 years, few tears, hairy years. Okay. आप अपने या फादर की बात कर रहे हैं या तो किसकी बात कर रहे हैं पता नहीं, बट डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि आप जो भी सोच रहे, बहुत ब्यूटीफुल था, आई लव्ड इट. ओके, एक चीज़ जो है जो होने वाली है आपके लिए, परसों, आज है 1st जुलाई, 3rd जुलाई के दिन होने वाली है 7:30 बजे विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में एक धमाल भरी गुजराती कॉमेडी नाइट. अब ये आपके लिए जो है, सिद्धार्थ रंधेरिया एक बहुत जाना माना नाम है गुजराती, इसको ये कॉमेडी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है और जब ये स्टेज पर आते हैं तो कमाल कर देते हैं. अब इनकी कुछ ज़बरदस्त एक नए प्रोडक्शन है जिसका नाम है गुज्जू भाईनी एक्सचेंज ऑफर. तो सिद्धार्थ रंधेरिया के नए प्रोडक्शन को आप डेफिनेटली जाके देख सकते हैं. ये अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर क्या है जानना चाहेंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं, थोड़े फनी मोमेंट्स आपको मिल सकते हैं, विटी डायलॉग्स भी होंगे और ऑफ कोर्स ये टोटली फैमिली के साथ आप बैठ के क्लासिक गुजराती ह्यूमर देख सकते हैं. premierTickets.co.nz के ज़रिए आप ये जाकर टिकट्स भी खरीद सकते हैं एंड वॉच कर सकते हैं सिद्धार्थ रंधेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शंस की गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर. चाहिएगा ज़रूर.
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वैसे हम आपकी कम्युनिटी की आवाज़ बन सकते हैं अगर आप हमें याद रखें तो. कोई आपका कम्युनिटी का इवेंट हो रहा है, आप हमें buzz@hamfm.com पे ईमेल कर सकते हैं. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए श्री राम लीला लेकर आ रहे हैं. कोई स्टॉल्स की इंक्वायरी है तो मास्टर अशोक से आप संपर्क कर सकते हैं 02117954599 पर. 8 अगस्त के दिन आपके लिए न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट रामायण लेकर आने वाली है. और इसके थोड़ी देर बाद बस मैं आपके नाम को अनाउंस करने वाली हूँ, जो विनर है. पिछले घंटे पर मैंने पूछा था एक सवाल और कृष्णा अभिषेक जी से रिलेटेड, तो बस थोड़ी देर बाद विनर का नाम.

0: आकाशिका।
1: वाह, अद्भुत।
2: तो मैंने आपको कहा था कि हमारी जो पावर होती है, यूजिंग पावर जब हम ऑफ पीक टाइम में करते हैं, उससे क्या होता है कि प्राइसिंग उसकी कम हो सकती है या इवन फ्री हो सकती है कुछ नए फ्लेक्सिबल डेली रेट्स के साथ। ये इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बताया कि लार्ज पावर कंपनीज जो हैं ये ऑफर करेंगे टाइम ऑफ यूज़ ये प्राइसिंग ऑप्शंस टू हाउस होल्ड्स और स्मॉल बिजनेस को। ये नए रूल्स जो हैं दिस इज़ कमिंग टू फोर्स फ्रॉम टुडे। और एनर्जी मिनिस्टर साइमन ब्राउन ने बताया कि लार्ज पावर कंपनीज जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट प्राइसेस में थ्रू आउट द डे, बट यूजुअली ये सोल्ड आउट होते हैं टू रेजिडेंशियल या स्मॉल कंज्यूमर्स एट अ सिंगल फ्लैट रेट। ये एक प्रैक्टिस जो है, ही फेल्ट दैट इट वाज अनफेयर, एंड उनका यही कहना था कि देर शुड बी मोर ऑप्शंस गिवन, जहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं पावर यूसेज के अनुसार, कि एक एडवांटेज ले सकते हैं ऑफ चीपर रेट्स वेर एवर पॉसिबल उनके बिजली के बिल को कम करने के लिए। तो ये प्राइसिंग प्लान जो है कुछ तीन कैटेगरीज में है। पीक, अब जो प्राइसेस आर हाईएस्ट जब डिमांड पीक टाइम होता है 7 AM to 10 AM या फिर 5 PM to 9 PM। ऑफ पीक या शोल्डर प्राइस जो होते हैं, प्राइस डिक्रीज होता है, डिमांड जो है वो ड्रॉप हो जाती है टिपिकली फ्रॉम सुबह 10 से लेके 5 बजे तक और रात 9 बजे से 11 बजे तक। रात को यानी कि नाइट टाइम फ्रॉम 11 PM to 7 AM प्राइसेस ड्रॉप टू द लोएस्ट, जब डिमांड लोएस्ट होती है टिपिकली बिटवीन 11 PM to 7 PM। ये फ्रेमवर्क जो है ये ऑल्टर करता है जहाँ पे कस्टमर्स को आपके पास सोलर पैनल्स हैं या बैटरीज हैं, आप उनके अवेल किस तरह से कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट जो है ये रीसेंट चेंजेस के अनुसार पता चल रहा है, फॉर द हाउस होल्ड ग्रिड एक्सपोर्ट लिमिट्स फ्रॉम 5 kW to 10 kW। और ये जो है ये गवर्नमेंट ने एक प्लान रोल आउट किया है जहाँ पे कस्टमर्स को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है टू एक्नॉलेज कि कोई सिंगल या ओवरनाइट फिक्स या कुछ डिलीवर करने के लिए, रिलायबल बनाने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए ये एक स्कीम जो उन्होंने निकाली है। अब ये आप इवेल्युएट कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं billy.govt.nz पे फॉर अ फ्री प्राइस कंपैरिजन। याद रहे billy.govt.nz पे आप चेक कर सकते हैं टाइम स्ट्रक्चर के अनुसार कि क्या फ्री प्राइसिंग का कंपैरिजन है। और ये जो टूल है ये चलाया जा रहा है बाय इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो कुछ रियलिस्टिक सेविंग एस्टिमेट्स आपको दे सकती है।
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
4: HBO Max is the all-killer, no filler.
5: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
4: Exactly.
5: Right, we'll see. What are they called?
4: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another. And then there's Friends, The Big Bang Theory.
5: Whoa, okay, I get it. Fair call.
4: HBO Max, all killer, no filler. Stream now.
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
9: Get the kids creating these school holidays with awesome arts and crafts deals at Warehouse Stationery. Like 25% off Crayola, 20% off Elmer's slime kits and glue, plus loads more deals at Warehouse Stationery. Conditions apply.
10: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support, and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.
0: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
11: Sun Tours के successful March 2026 Best of India Tour के बाद अब bookings open है for Best of India September 2026 Tour. Delhi की shopping, Agra का Taj Mahal, Jaipur Amer Fort और Elephant Ride, LP में houseboat का experience और आमचे Mumbai की Bollywood Studios visit with all buffet meals, rides और 5-star accommodation. All for just $8,500 per person. Contact Anil on 0800 for Sun Tours. That's 0800 478686. Limited spaces.
12: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
13: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: तो टाइम आ चला है जहां पर मुझे आपके साथ पहली बात तो विनर का नाम अनाउंस करना है. मोनिका थापर 1463 आपने जीत लिया है कॉमेडी नाइट्स विद कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर. 18 जुलाई को आप ज़रूर जाएंगी ये देखने के लिए. अब बारी आ रही है आइकॉनिक एक गाना कोई मैं बजाने वाली हूँ करण औजला का, और ये आपको इस गाने का टाइटल मुझे बताना है कि क्या हो सकता है. करेक्ट एंट्रीज का नाम ड्रॉ में चला जाएगा टू विन अ डबल पास. के ए लिखना है करण औजला का, शॉर्ट फॉर्म 5599 पे, और आपको गाना गेस करना है, अपना नाम लिख के मुझे बता देना है. ये ड्रॉ 6 जुलाई को ब्रेकफास्ट शो में होने वाला है. अगर आप ये टिकट्स खरीदना चाहते हैं जो करण औजला 25 अगस्त को परफॉर्म करने आ रहे हैं द स्पार्क अरेना, बी देयर एंड बी राइट नाउ देयर टू अंडरस्टैंड कि गाना कौन सा है. के ए लिखे एंड गाना आइडेंटिफाई करें. के ए लिखने के बाद गाने का नाम और अपना नाम हम तक लिख के भेजें. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.

देखो कितने कभी कभी आता होता है ना, आपको ऐसे हिंट्स हम लोग दे देते हैं और वो हिंट्स आपके लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। अभी मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट सम काइंड ऑफ अ स्मॉल टिप। अब ये टिप मैं आपको देना चाहती हूँ जहाँ पे हमारे पास फ्रिटाटास हम कैसे बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स होते हैं चॉप करे हुए, या मीट पड़ा होता है, पास्ता पड़ा होता है, इनको लेके कुछ एक्स्ट्रा एग्स के साथ आपने फेंट के आपने इन्हें खाली बेक करने लगा दिया, एक आपका फ्रिटाटा एकदम से हो जाएगा तैयार।

तो चलिए बस इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है हम फार, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, ठंड का एक मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। थैंक यू सो मच, आपका कॉल आया था, आप विश कर रहे थे मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ आई एम हियर वेरी मच। बस ये थोड़ा ठंड का मौसम है, थोड़ा पर्सनल काम है, इसलिए दिस इज़ द राइट टाइम जब जाके मैं छुट्टी ले सकती हूँ, लेकिन डेफिनेटली इस छुट्टी के दौरान मैं हम के म्यूज़िक स्टेशन को रोवा ऐप के ज़रिए ज़रूर सुनूंगी। वैसे रोवा ऐप की अगर मैं बात करूँ, आज मैंने जो टिप दी है अबाउट यू नो द गेस्ट कमिंग इन, मैंने उसके बारे में वीडियो भी अपलोड किया है, डेफिनेटली इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ साथ यहाँ से अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। बिग थैंक यू टू कशिश फूड्स जिनके सौजन्य से कशिका आपका साथ निभाने के लिए मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के दरमियान आ जाती है। और मैं कशिका अब यहां से साइन ऑफ कर रही हूं स्टूडियो से, केतन आ रहे हैं आपका साथ निभाने के लिए। लुक आफ्टर योरसेल्फ, लीविंग यू बिहाइंड विद द एवरग्रीन सॉन्ग।